10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: சேமார் தமிழ் எஃப்எம் 101.3.
1: இப்பொழுது நேரம் 4:41.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूँ शिवानी आपके साथ, मेरे साथ हैं आमिर, और आमिर और शिवानी के साथ शुरू हो चुका है लवी डवी शो। मंडे की बड़ी खूबसूरत सी सुबह है और उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मदर्स डे आपने सेलिब्रेट किया होगा। वैसे तो हर दिन ही मदर्स डे होता है, जब हम माँ की बात करते हैं, जब हम मॉम की बात करते हैं, जब हम मम्मी की बात करते हैं, तो एक ही दिन में उसको डेफिनेटली नहीं समेटा जा सकता, लेकिन बस एक रिवायत है, एक स्पेशल हम करते हैं। संडे एक अपने आप में ही स्पेशल डे होता है, जिसमें अमूमन फैमिली के सारे मेंबर्स एक साथ होते हैं। हम बड़े अच्छा सा वक्त गुजारते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ ख़ास करते हैं। ज़िंदगी जो है ना दोस्तों, उसके हर एक पल, हर एक लम्हा बहुत ही बेशकीमती होता है, प्रेशियस होता है, और उन्हें बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। थोड़ा भी मौका मिले, थोड़ा भी बहाना मिले इन्जॉय करने का, उसको डबल ट्रिपल और उससे भी ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड्स में एंजॉय करना चाहिए, है ना। मौसम की बात कर दें तो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वक्त, क्लाउडी वेदर कंडीशंस, और शाम तक का मौसम आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 12 डिग्रीज के आसपास आपको मिलेगा। और ये तो सन भी आपको मिलेगा, सुहावना मौसम भी मिलेगा, यानी कि धूप छांव, हाइड एंड सीक सन और बादलों के बीच चलती रहेगी और चलता रहेगा लवी डवी शो 9 बजे से 11 बजे तक। और आपको बता दें, हमसे रابطे का नंबर है 416-303-3639। नंबर एक बार फिर से बता दूं आपको, 416-303-3639। डिजिटल मीडिया कोर्स 23 मई से शुरू हो रहा है, बहुत कम सीटें बची हैं। पूरी जानकारी हासिल करने के लिए भी यही नंबर है, 416-303-3639। कुछ दबी हुई सी ख्वाहिशें, कुछ मंद मुस्कुराहटें, कुछ खोए हुए से सपने तो कुछ अनसुनी आहटें, कुछ सुकून भरी यादें तो कुछ दर्द भरे लम्हात, कुछ थमे हुए तूफान तो कुछ मध्यम सी बरसात, कुछ अनकहे अल्फाज तो कुछ ना समझ इशारे, कुछ ऐसे मझदार हैं जिनके मिलते नहीं किनारे, कुछ उलझने हैं राहों में, कुछ कोशिशें बेहिसाब, कुछ उलझने हैं राहों में, कुछ कोशिशें बेहिसाब, बस इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: CMRFM 101.3, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं हूं शिवानी आपके साथ, मेरे साथ हैं आमिर, और बहुत इंपॉर्टेंट से आज टॉपिक पर हम बातचीत आपसे करने वाले हैं। आमिर, अगर हम बात करें आज के जमाने की, तो किसी भी चीज में अगर हम देखते हैं कि लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, किसी भी फील्ड में किसी एक चीज से काम नहीं चलता
1: जी।
4: हमें अपना जो होराइजन है वो एक्सपेंड करना पड़ता है, चीजें और देखनी पड़ती हैं। ऐसे ही हम अगर हम अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं या अपने आप को किसी भी हवाले से प्रमोट करना चाहते हैं, ब्रांडिंग के लिहाज से प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हो जिनकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसमें मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे इदारे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जरिए हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल मीडिया, एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चलन में है, बहुत पॉपुलर है, और हर कोई चाहता है कि इससे फायदा उठाया जाए। ये जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, इमेजेस हैं, वीडियोज हैं, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इसमें अगर हमें महारत हासिल हो जाए और बहुत आसानी से हो जाए, और किसी ऐसे जीनियस और एक्सपर्ट से हो जाए जिसने साल दर साल इसी पे काम किया है, तो बस ये सोच लीजिए कि आप जो सोच रहे थे वो आपके लिए पूरा होने जा रहा है। अगले महीने कोर्स शुरू होने वाला है। आमिर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन।
1: जी शुक्रिया बहुत बहुत, आपको भी सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच,
4: प्लेजर। आमिर, जो आपके जो कोर्स चलते हैं डिजिटल मीडिया के, और ये जो प्रोग्राम चलते हैं, जो कोर्सेज चलते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से ये सिक्स या सेवन्थ सेशन है,
1: जो सातवां
4: जो अगले महीने से शुरू होगा, तो क्या है ये कोर्सेज, कैसे हमारे लिसनर्स इसका फायदा उठाना चाहते हैं? क्योंकि लगातार हमारे पास कॉल्स आते हैं और उन्होंने एक ह्यूज डिमांड पे हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 23 मई यानी अगले महीने की 23 तारीख को ये कोर्स शुरू हो रहा है। ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन कोर्स है, दोनों चीजें कवर करेंगे, मार्केटिंग भी और प्रोडक्शन भी। इसके जरिए, इसके माध्यम से, इसके सोर्स से ये कंप्लीट करने के बाद लोग अपना कारोबार खुद प्रमोट कर सकेंगे। अब मार्केटिंग पे महीने बाद हजारों डॉलर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल बी इन अ पोजिशन टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल ऑडियंस। जहां तक ले जाना चाहे अपने ब्रांड को ले जा सकते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है, सारी जिंदगी काम आने वाला हुनर। और उसके लिए नंबर ये रहेगा 416-303-3639।
4: जी अमेरिका, यहाँ सवाल आता है कि अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें, एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं बात करूं, मुझे भी इतना ज्यादा इसमें फ्लेयर नहीं है, तो अगर मैं खोलने बैठती हूं तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं जो जिसमें से कभी कभी ऐसा लगता है जिसने नहीं पढ़ा है कि ये सब चीजें हम कैसे कर पाएंगे। किसी को दे दिया जाए वो हमारे लिए कर दे, लेकिन बात यही है कि आजकल के टाइम में इतना बजट हर महीने लगाना, और तो क्या जब हम आपका ये कोर्स सीख लेंगे तो क्या हर एक जो छोटे छोटे सी चीजें हैं वो सब को सब आप पढ़ाते हैं उसमें?
1: बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इस सवाल को दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहला हिस्सा तो ये है कि लोग करें काम, हम क्यों करें? ये इतना छोटा सा काम है, या कैंपेन लॉन्च करनी है, या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे वीडियो बना के डालनी है, तो मैं किसी भी अपने सब ऑर्डिनेट से, किसी जूनियर से कह दूं वो बना के डाल देगा, काम हो जाएगा। एक बात याद रखिए, अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे भी काम कर रहे हैं तो काम करवाने के लिए भी आपको काम आना जरूरी है।
4: राइट।
1: आप करवाएंगे कैसे जब आपको खुद ही नहीं आता, तो आप उसकी निटी ग्रिटी, उसकी टेक्निकल डायमेंशंस या टेक्निकल मामला उसके आप जानते ही नहीं। एक तो अगर आपने काम किसी से करवाना है तब भी ये कोर्स आपके लिए है, और दूसरी बहुत अहम बात कि ये हम बहुत बुनियादी सतह से शुरू करते हैं। आपने कहा कि कहां से शुरू किया जाता है, ये समझ लीजिए कि डिजिटल मीडिया की ABC से शुरू करते हैं,
4: कंप्यूटर ऑन करने से शुरू किया जाता है।
1: अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना आता है तो ये कोर्स आपके लिए है। कोई उम्र की हद नहीं है कि किस उम्र से ताल्लुक हो आपका। मेरे पिछले बैच में 72 साल की एक शख्सियत थी, उन्होंने भी ये कोर्स किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया एज कंपेयर टू अदर्स। ये नंबर मिलाइए, अगले महीने की 23 तारीख को ये कोर्स शुरू हो रहा है, वीकेंड ओनली, सैटरडे 1 till 6, संडे 1 till 6। यह रहा नंबर 416-303-3639। आप कोर्स में एनरोल कराइए, उम्र भर का स्किल सीखिए, सिर्फ एक महीना, और उस एक महीने में भी 8 दिन आपको आना है। सैटरडे 1 till 6, संडे 1 till 6, 416-303-3639।
4: क्या बात है आमिर, कुछ चलते चलते कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि आप क्या क्या इसमें पढ़ाते हैं, और हर हफ्ते में आपने कोर्सेज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है, और साथ में जो कंटेंट लिखते हैं, टैग लाइन्स लिखते हैं और जो पंच लाइन लिखते हैं, बड़ा आजकल बड़ा जरूरी होता है कि लोग कहते हैं वन लाइनर में हम अपनी चीज बता सकें, सोचते हैं, लेकिन वो बात वही होती है कि लोग एक बस शुरुआत करने की देर होती है, तो वो भी शामिल करते हैं आप अपने कोर्स में।
1: बहुत अच्छा सवाल है, हम बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक से शुरू करते हैं। पोस्टर कैसे बनाना है, फेसबुक पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, उसका आर्टवर्क कैसे करना है, उसके बाद बेसिक प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, उसके बाद वीडियो कैसे बनानी है, आप आउटडोर वीडियो की बात करें, इनडोर वीडियो की बात करें, आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे लगा सकते हैं, बना सकते हैं और उस पर कंटेंट डाल के पैसा बना सकते हैं, वो भी सिखाते हैं। एडिटिंग सबसे बड़ा हिस्सा है इसका, जो भी दुनिया की कोई भी रील बनती है उसको एडिटिंग की जरूरत बहरहाल रहती है, तो हम एडिटिंग भी सिखाते हैं। फिर पोस्ट प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिखाते हैं कि आपने उस वीडियो को वायरल कैसे करना है, फॉलोइंग कैसे बढ़ानी है, सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ानी है, स्पॉन्सर्ड एड्स क्या होते हैं, विदाउट स्पॉन्सरशिप कैसे आप एड्स डाल सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट फंडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट फंडिंग देती है आपको, आइडिया जनरेशन क्या होती है, आप ट्रीटमेंट कैसे लिखते हैं, पेपर वर्क कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, कैनेडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन सा पेपर वर्क और कौन कौन सा लॉ इन्वॉल्व है। इस सब के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए 416-303-3639। नंबर दोबारा बता देते हैं 416-303-3639।
4: बहुत बहुत शुक्रिया आमिर,
1: थैंक यू।
2: क्या आप सुन रहे हैं, इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा, कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
5: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
6: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
5: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 4378296023। इट्स 4378296023। मास्टर धनिक महाराज।
3: ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 16-17 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। 18 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ।
4: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 12942 ਹਾਰਡਲੇਕ ਰੋਡ ਕੈਲਡਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲਏ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬੀਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 6474481000 ਸੇਵਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ seva2022@yahoo.com ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5: 927 दिस इज लवी डवी शो शिवानी और आमिर के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी जो नींद है, आप सभी मंडे की सुबह में अपने अपने काम पर निकल चुके होंगे, निकलने वाले होंगे, या फिर अगर मंडे ऑफ लिया है तो शायद अभी सो भी रहे होंगे। सोना बड़ा ज़रूरी है, नींद पूरी करनी बेहद ज़रूरी है। अगर नींद हमारी पूरी नहीं होती है, स्लीप डिसऑर्डर के हम शिकार होते हैं, तो ना सिर्फ स्लीप रिलेटेड बल्कि दूसरी बॉडी में जो और सारे ऑर्गन्स हैं वो भी काम करने में थोड़ी सी अनअवेलेबिलिटी शो कर देते हैं, लिहाजा हमें और बहुत सारी होस्ट ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आने लगते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट प्रॉब्लम्स। डीप स्लीप के फ़ायदे हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि अगर जो सबसे अच्छी नींद होती है बिटवीन द आवर्स ऑफ 10 PM एंड 2 AM, रात में 10 से सुबह 2 बजे तक, हमारी जो बॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन। और हम सभी जानते हैं मेलाटोनिन ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स, जिसको हम HGH कहते हैं, विच रिपेयर सेल्स एंड प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग। सो मेलाटोनिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। इट गोज अराउंड एंड मॉप्स अप फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डे एंड प्रिवेंट्स सेलुलर एंड DNA डैमेज। और ये जो मेलाटोनिन है जो स्लीप के लिए, अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके सप्लीमेंट्स हमें ओवर द काउंटर भी मिलते हैं, लेकिन ये हमें नींद से भी मिलते हैं। और अगर 3-4 घंटे की डीप स्लीप हम लेते हैं, प्रेफरेबली जो टाइम बताया गया है स्पेशलिस्ट ने वो रात में 10 से सुबह 2 बजे के बीच में, तो इस दौरान तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर 10 बजे के बाद आप थोड़ा सा लेट सो रहे हैं, तो जब भी सोएं आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। उस सारी चीज़ों की कोशिश ज़रूर आप कीजिए जो अच्छी नींद आपको देने में मददगार साबित हो। और इसी के साथ 4163033639 इज़ द नंबर टू कॉल, 4163033639। और कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर। डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स का, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट कीजिए, या किसी को अगर हायर भी कर रही हैं तो ये ज़रूर आपको काम ज़रूर आना चाहिए, तभी आप जिसको हायर करते हैं उनको आप बता पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आप प्रमोट कर सकते हैं खुद। बेसिक से ये कोर्स शुरू होता है, सिर्फ आपको कंप्यूटर अगर ऑन करना आता है या फिर वो भी भी नहीं आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप बस एक इरादा लेकर आइए कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तो ये जो कोड बहुत आसानी से सिर्फ एक महीने में, 4 महीने के 8 दिन आपको आना है, सैटरडे और संडे, कन्वीनियंटली सैटरडे 1 से 6 बजे तक दोपहर में, संडे भी 1 से 6 बजे तक। और इसमें पोस्टर क्रिएशन, आर्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, वीडियो मेकिंग, और इसके बाद आउटडोर और इनडोर वीडियोस कैसे बनाते हैं, लाइटिंग का क्या ख्याल रखा जाता है, टैग लाइन्स कैसे लिखी जाती हैं, आपको गवर्नमेंट से जो फंडिंग रखी हुई है आपके लिए कैसे, कौन से पेपर वर्क से आप उसको हासिल कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड क्या होते हैं, और जो स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं होते हैं वो कौन कौन से ऐड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप महज 1 महीने में, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आकर सीख सकते हैं। नंबर घुमाइए 416-303-3639, ये है लवी डवी शो, और अगला गाना आपके लिए।

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
1: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
7: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
6: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
7: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
8: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 License number 12374.
9: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
10: बड़े मुख्तसर से हरूफ में कोई गहरी बात सुना गया। बड़े मुख्तसर से हरूफ में कोई गहरी बात सुना गया। किसी ख्वाब सा कोई शख्स था जो सहर से पहले चला गया। हमें आसमां से गिला नहीं, तेरी रहमतों पे यकीन है। जिन्हें जिंदगी ने शिकस्त दी, किसी मौत से ने बचा लिया। किसी मेहरबान की दुआओं से ये सफ़र नसीब हुआ मुझे। जिन्हें रहबरी का गुरूर था, उन्हें रास्तों ने मिटा दिया। सदा हंसते रहने का हौसला तेरी आरजू ने अता किया। बड़े गहरे जख्म थे वक्त ने जिन्हें रफ्ता रफ्ता भुला दिया। तेरी दोस्ती की ये पेशकश बड़ी दिल फरेब लगी मगर, तेरी दोस्ती की ये पेशकश बड़ी दिल फरेब लगी मगर, ये जो एतबार का वस्फ था कहीं दिल से दूर चला गया। कोई वक्त था कि ये नाम भी बड़ा मोतबर था जहान में, वो जो तेरे इश्क का दौर था हमें बाकमाल बना गया।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639।
4: डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ। 416-303-3639। तो आमिर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में।
1: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए। किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे। हम आपको मेथडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं। आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है। ये 23 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 ही हफ्ते बाकी बचे हैं। इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में। ये रहा नंबर 416-303-3639। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर। कोर्स कीजिए 416-303-3639।
4: जी, और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है, इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्प्लिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाएं। कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना रहे, किसी की हेल्प की जरूरत ना रहे। इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिजाइन करना है, उसका आर्ट वर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्टगेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के एतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए। नंबर मिलाइए, 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास इसके लिए। 416-303-3639।
4: जी, 416-303-3639।

31 साल बाद वो उस स्टेशन पर पहुंचे जहां दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ का क्लाइमैक्स शूट हुआ था। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों, ये जो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं इंडियन सिनेमा की, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी हसीन हो जाती हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्हीं में से एक है। हाल ही में इस फिल्म के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से एक बहुत बड़ी मांग भी कर डाली। क्या था ये वीडियो? 32 साल के लंबे आपके बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आपटा रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचे। ये वही हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है जहां ये इस फिल्म का मशहूर क्लाइमैक्स शूट हुआ था, जिसमें शाहरुख खान चलती ट्रेन से हाथ बढ़ाकर काजोल यानी सिमरन को खींच लेते हैं। अनुपम खेर ने अपनी इस यात्रा का, अपनी इस जर्नी का एक्सपीरियंस, अनुभव, तजुर्बा शेयर करते हुए लिखा कि 30 सालों बाद उसी जमीन पर कदम रखना मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि जब वो आपटा रेलवे स्टेशन पर खड़े थे तो उन्हें बिल्कुल भी उनको महसूस नहीं हुआ कि फिल्म की शूटिंग को इतना लंबा वक्त बीत चुका है। वक्त उनके लिए मानो ठहर सा गया था। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि जब 1995 में वो इस फिल्म की, इस सीन की शूटिंग कर रहे थे, तब यूनिट के किसी भी मेंबर ने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि ये जो सीन है ये इंडियन सिनेमा के सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे मेमोरेबल और यादगार पलों में से एक पल हो जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, उस वक्त शूटिंग करते हुए कभी सोचा भी नहीं था कि शाहरुख खान और काजोल का वो सीन इंडियन सिनेमा के सबसे यादगार पलों में शामिल होगा। लेकिन शायद ज़िंदगी की खूबसूरती भी यही है, आपको उस पल की वैल्यू का एहसास बहुत बाद में होता है। कितनी सही बात बोली है। उन्होंने सरकार से एक मांग भी की। उन्होंने कहा, मेरी दिल से इच्छा है कि महाराष्ट्र सरकार इस जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करे। दुनिया भर की फिल्मों की एक ऐसी लोकेशंस लोगों के लिए यादों और फीलिंग्स का एक हिस्सा बन जाती हैं। हमारे यहाँ भी सिनेमा की इस विरासत को उसी सम्मान के साथ सहेजना चाहिए। जादू सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, कुछ जगहों में भी होता है। यश चोपड़ा जी की गर्मजोशी, सादगी, उदारता, उनकी काइंडनेस, रिश्तों को बनाए रखने के उनके एहसास और उनकी पंजाबी झप्पियों को बहुत मिस किया। बताते चलें कि 1995 में आदित्य चोपड़ा की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आज भी उतनी ही नई और उतनी ही रेलेवेंट, प्रासंगिक लगती है जितनी 30 सालों पहले लगती थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का क्रेज हर जनरेशन के लोगों के सर चढ़कर बोलता है और हमें बैक टू मेमोरी और डाउन द मेमोरी लेन ले जाता है। कोयल कूके हु कुठाए, घर आ जा परदेसी। दिस इज लवी डवी शो, 416-303-3639।

0: This is Lovey Dovey Show. मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिस्टनर्स. और ये है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स. जाना पहचाना ये कोर्स है. अरसे से ये जो लवी डवी शो रेडियो टोरंटो कनाडा की जानिब से आपको दिया जा रहा है. कितने ही ऐसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अपना अपना बिजनेस जो है इससे करने के बाद शुरू कर चुके हैं, जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपना बिजनेस अब खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं. हायरिंग के लिए किसी को हायर करके जिंदगी भर पेमेंट करने से अच्छा एक छोटे अमाउंट देके आप जिंदगी भर के लिए अपना खुद प्रमोशन कर सकते हैं ए टू जी. और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डिजिटल मीडिया कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आफीफ अली. आफीफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: Good morning. I'm well. How are you?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, all good. Thank you so much for asking. और डिजिटल मीडिया कोर्स के हवाले से सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स जो नए नए लिसनर्स रोज जुड़ते हैं तो सबसे पहले ये हमसे जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स क्या है.
1: ओके, सो ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स है विच इज कल्मिनेशन ऑफ काफी डिफरेंट जो है ना फील्ड्स ऑफ मीडिया. इसमें कंटेम्प्रेरी मीडिया भी आ जाती है जैसे फिल्म एंड टेलीविजन हो गई एंड सोशल मीडिया भी आ जाती है. राइट, तो इसमें हम सिखाते हैं काफी चीजें.
0: अच्छा.
1: सबसे पहले आपको कंटेम्प्रेरी मीडिया में सिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, कैमरा कैसे यूज करना है, उसके बेसिक्स, ISO वगैरह क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है. राइट, उसके बाद अगर हम डिजिटल साइड पे आए तो हम पढ़ाते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सच एज कि आपको अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वर्टिकल फील्ड मोर ऑफन, तो उसमें कैमरा जो है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसकी डिफरेंट चीजें सिखाते हैं. बहरहाल ये सिखाते हैं कि उसमें आप किस तरह रील्स बना सकते हैं क्योंकि टाइम स्पैन भी छोटा होता है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको अपना मैसेज देना है, वो आप कैसे करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं. उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग सिखाते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स होते हैं आपको, फिर सिखाते हैं कि पोस्टर रील्स कैसे बनाते हैं, काफी सारी चीजें. और उसके बाद आखिर में आता है कि एडिटिंग, आखिर में तो नहीं लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस का, वो कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है. राइट
0: जी.
1: और एडिटिंग के लिए हम सबसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोबी प्रीमियर प्रो, वो सिखाते हैं.
0: एंड
1: उसके बाद हम, जब आपका एक वीडियो बन गई या आपका एक प्रोडक्ट बन गया तो आपने वो अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं इस कोर्स में. एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइक 4 वीक्स का कोर्स है,
0: ठीक है,
1: सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 1 PM to 6 PM.
0: जी, 1 PM to 6 PM, महज 4 हफ्तों में, वो भी सैटरडे और संडे जब मसरूफियत नहीं होती है, उसमें आप ये आइए कोर्स कीजिए और सिर्फ 4 हफ्तों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे. जिंदगी भर के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो आप खुद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं. कंटेंट क्रिएशन और जो पंच लाइन होती है, जो टैग लाइन होती है, वो सब भी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फंडिंग.
1: जी बिल्कुल, पंच लाइन, टैग लाइन, ये भी हमारे जो राइटिंग के अंदर आता है ना उसमें आ जाता है.
0: अच्छा, ठीक है.
1: कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ब्रांड है तो आप उसकी जो है ना एक टैग लाइन क्या बनाएंगे या फिर आपके एड की पंच लाइन क्या होगी, ये सारा भी सिखाया जाता है. एंड फंडिंग जहाँ तक आ जाते हैं तो फंडिंग भी सिखाते हैं क्योंकि कैनेडा में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को फंड करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सारा सिखाया जाता है.
0: जी बिल्कुल, और उसके लिए नंबर एक ही घुमाना है आपको, एक छोटा सा अमाउंट, वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू व्हाट यू विल बी टॉट इन द कोर्स, बहुत रीजनेबल अमाउंट है जिंदगी भर के लिए, सिर्फ वन टाइम फी है ये. 416-303-3639, आई रिपीट द नंबर 416-303-3639. हफीफ, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
1: या मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज, ये जो कोर्स है ये हमने बनाया इसलिए है कि वो लोग जो خود اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہے یا پھر وہ خود اگر فار ایگزامپل اگر ان کو شوق ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک انفلوئنسر بننا ہے یا پھر ان کو ویڈیوز بنانے کا شوق ہے تو یہ اسپیشلی ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے.
0: Amazing.
1: تو میک شیور یو کم ٹو دس کورس اینڈ جب آپ آئیں گے آپ کو خود سیکھیں گے, آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کورس دینے میں.
0: کیا بات ہے, تو بس مزے میں پروفیشنل بنیے اور بہت جلدی سے چار ہفتوں میں پروفیشنل بن جائیے اس کورس کو کر کے. 416-303-3639. حفیظ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, پلیجر ہیونگ یو ود اس. تھینک یو
1: سو مچ.
2: کیا آپ سن رہے ہیں اسی طرح جی ٹی اے میں لاکھوں یہ آواز سن رہے ہیں.
3: ریڈیو ٹورنٹو کینیڈا پر ایڈورٹائز کرائیے, اپنے کاروبار کا دائرہ بڑھائیے,
2: اس آواز کو اپنے بزنس کی آواز بنائیے. ریڈیو ٹورنٹو کینیڈا پر اپنے بزنس کی پروموشن کروائیے.
4: بک یور ایڈورٹائزمنٹ سلاٹس ود ریڈیو ٹورنٹو کینیڈا, کال 416-303-3639. اٹس 416-303-3639.
0: جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. میں گزرے پل کو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. آپ سبھی کے دوستوں کے نام یہ کچھ لائنیں. جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. میں گزرے پل کو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. اب جانے کون سی نگری میں جا کر آباد ہے مدت سے. میں دیر تلک رات جاگوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. کچھ باتیں تھیں پھولوں جیسی, کچھ لہجے خوشبو جیسے تھے. کچھ باتیں تھیں پھولوں جیسی, کچھ لہجے خوشبو جیسے تھے. میں سارے چمن میں ٹہلوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. وہ پل بھر کی ناراضگی, وہ پل بھر کی ناراضگی, وہ مان بھی جانا پل بھر میں. میں خود سے جب بھی روٹھوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह 500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584
5: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
6: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
7: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
8: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
7: क्या वो मदद करेंगे?
8: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे, इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
9: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
8: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
9: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
10: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
11: पंजवां महान 3 दिन का कीर्तन दरबार, मई 16-17 दिन शनिवार एतवार दोपहरे 3 बजे लेके रात 10 बजे तक, मई 18 दिन सोमवार 12 बजे तो लेके शाम 7 बजे तक।
12: ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड 12942 हार्डलेक रोड कैल्टन विखे करवाया जा रहा है। पंथ दे सरमौर रागी जथे पदम श्री भाई साहब हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, संत अनूप सिंह जी ऊना साहेब वाले, भाई अनंत वीर सिंह जी एले वाले, भाई साहब जगजीत सिंह जी बबीहा दिल्ली वाले, प्रोफेसर परमजीत सिंह जी पटियाले वाले, भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल पंजाबी विरसा रेडियो दे सिंह हरजीत नूं कीती जा सकती है 647-448-1000। 647-448-1000। सेवा भेजन वास्ते सेवा2022@yahoo.com ते अपनी सेवा भेज सकते हो।
0: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 License number 12374
4: CMRFM 101.3 पर यह है लवी डवी शो विद आमिर एंड शिवानी। नंबर टू कॉल 416-303-3639 और बड़ी जल्दी 23rd ऑफ मई से डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स शुरू हो रहा है। बहुत कम सीटें बची हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट पूरी तरीके से आप कर सकेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस को आप प्रमोट करना चाहते हैं, खुद अपने आप अपने घर का चाहे वर्चुअल टूर आप पोस्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं अपने तरीके से, क्योंकि अपना जो काम होता है ना, वो अपने बेबी अपने बच्चे की तरह होता है। हमें हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए। और अगर अपने ख्यालों को अपने थॉट्स को हम खुद पोस्ट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसकी फील ही अलग होती है, उसका रिजल्ट ही अलग होता है। ये सब आप कुछ कर पाएंगे बड़े आसान तरीके से सिर्फ 4 हफ्ते में, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, सैटरडे संडे 1 बजे से 6 बजे तक, सैटरडे 1 to 6 PM, संडे 1 to 6 PM। यानी ये 1 महीने का कोर्स है जिसमें आपको 8 दिन अटेंड करने हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। इसमें आपका बेसिक से शुरू होता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना आता है तो ये समझ जाइए कि ये कोर्स आप ही के लिए है। वो भी नहीं आता, दिल में बस एक थॉट है कि हमें ये करना है, तो भी ये कोर्स आप ही के लिए है। ABC से शुरू होता है, बेसिक से शुरू होता है और मोस्ट एडवांस लेवल पर जाकर आपको प्रोफेशनल बना देता है महज 4-8 दिन अटेंड करने के बाद। और पोस्टर क्रिएशन से लेके आर्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, आपका वीडियो मेकिंग जिसमें आपका इंडोर आउटडोर शामिल है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, अपने बिजनेस के लिए आप टैग लाइन कैसे लिख सकते हैं, कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने लाइटिंग का क्या इफ़ेक्ट है, आप कौन किस तरीके की जो लाइटिंग है वो आपकी प्रोडक्शन पे फ़र्क डालती है, असर डालती है, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, एडिटिंग की पूरी आपको नॉलेज दी जाती है और एड्स के बारे में पूरी बात की जाती है कि जो विदाउट स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं या जो स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं, पेड ऐड होते हैं और अनपेड ऐड होते हैं, वो क्या होते हैं। यानी A to Z आप प्रोफेशनल बन जाएंगे और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, रील्स बनाना हो, टिकटॉक हो, एवरीथिंग में आप प्रोफेशनल होंगे महज 1 महीने में, यानी कि 4 हफ्ते में। हर हफ्ते में आपको सिर्फ 2 दिन आना है। कन्वीनियंटली आपके लिए ये क्लासेस रखी गई हैं 1 बजे से 6 बजे तक सैटरडे, 1 बजे से 6 बजे तक संडे, और महीने के 8 दिन में आपको ये प्रोफेशनल बनाएगा ये कोर्स। 23 मई से शुरू हो रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 416-303-3639 और अगला गाना आपके लिए, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, खुददार से। एंजॉय दिस ट्रैक।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
4: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
3: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
5: लवी डवी शो 416-303-3639। दोस्तों, अगर आप भी वज़न से परेशान, बढ़ते वज़न से परेशान हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, अराउंड द स्टमक जो हमारा फैट होता है उसको कम करना चाहते हैं, तो फिर से बात वही आती है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए, बहुत वॉच व्हाट यू ईट, ये एक टैगलाइन है जो हमेशा अपने साथ रखना चाहिए 24/7 को, इस टैगलाइन को। और इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो होम रेमेडीज़ होती हैं, हमारे जो साउथ एशियन किचन में जो स्पाइसेस होते हैं, वो खुद ही अपने आप में इतने इफ़ेक्टिव होते हैं, टेस्ट, खाने के टेस्ट को तो इन्हांस करते ही हैं, हमारी जो हेल्थ है उसमें भी बहुत सारा फ़ायदा हमें देते हैं। और आज हम बात करेंगे कैसे इन्ग्रीडियंट्स का जो खाने के बाद एक माउथ फ्रेशनर के तौर पर हमें मदद करती है और हमारा जो सेहत है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा करती है अच्छी सेहत में। हम बात कर रहे हैं फेनल सीड्स की, जिसको हम सौंफ कहते हैं। अगर आप इस समय में चाहते हैं कि वज़न हमारा बिल्कुल कंट्रोल में रहे, अच्छी नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, छोटे छोटे एफ़र्ट्स भी मायने रखते हैं, चाहे वो एक पानी का गिलास ही क्यों ना हो, पानी का एक कप ही क्यों ना हो, लो कैलोरी जो फूड है, अगर आप अपने वज़न को वॉच कर रही हैं तो लो कैलोरी फूड तो डेफिनेटली येस है। हेल्दी लाइफ स्टाइल भी बड़ी ज़रूरी है। और कहते हैं कि जो सौंफ होता है वो स्किन को, हमारी स्किन में शाइन लाने में मदद करता है, और इसके अलावा हमारे जो हंगर है, जो अननेसेसरीली जो हम बीच बीच में खाते रहते हैं, उनको कर्ब करता है, उसको दबाता है। क्योंकि जो सौंफ के बीज होते हैं, जो फेनल सीड्स होती हैं, वो उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। हमें सुबह बहुत जल्दी हंग्री होने से, भूख लगने से हमें रोकता है, जिससे हम नेचुरली फुलनेस फील करते हैं और हम खाने पे कंट्रोल रख सकते हैं। भूख लगने की जो पॉसिबिलिटी जब कम हो जाती है, तो हम अपनी डाइट में अपने आप ही अनहेल्दी चीज़ें शामिल कम करते हैं। और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है फेनल सीड्स, एक नेचुरली डिटॉक्सिफायर होता है, इसलिए खाने के बाद हम इसको जब खाते हैं तो हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। फैट हटाने में मदद करता है, इसके अलावा स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। और बनाना भी इसके लिए बड़े आसान है, आप इसको रात में कुछ 2 या 3 चम्मच सौंफ लीजिए, 2-3 स्पून्स ऑफ फेनल सीड्स लीजिए, इसको एक ग्लास पानी में भिगा लीजिए और मॉर्निंग में आप इसको पी सकते हैं। बॉयल करके भी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको स्क्रब करके भी पी सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट उसका बहुत सारा असर पानी में आ जाता है और आपके बॉडी में कूलिंग इफेक्ट भी देता है, स्पेशली इन समर। तो क्यों ना इसको डेली डाइट का हिस्सा बनाइए, जैसे आपने लवी डवी शो को बनाया हुआ है। आमिर और शिवानी के साथ 416-303-3639। 3639.

0: Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
1: डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ, 416-303-3639. तो आमिर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में. 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में.
2: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है. डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए. किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे. डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे. हम आपको मेथोडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है. स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं. आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है. कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है. ये 23 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 ही हफ्ते बाकी बचे हैं. इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में. ये रहा नंबर, 416-303-3639. नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है. कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं, या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर. कोर्स कीजिए 416-303-3639.
1: जी, और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है, इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्प्लिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है. ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाएं. कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना रहे, किसी की हेल्प की जरूरत ना रहे. इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिजाइन करना है, उसका आर्ट वर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्टगेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के एतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू. राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है. ये रहा नंबर मिलाने के लिए, नंबर मिलाइए. 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास इसके लिए. 416-303-3639.
1: जी, 416-303-3639.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
6: ਫॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com or call 416-922-5263। Kanda Optical, the name you can trust।
7: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
8: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।

गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। बस एक मोती सी छब दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा ए शाम बनकर आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। खुशी की रुत हो या गम का मौसम, नज़र उसे ही ढूंढती है हरदम। वो बूए गुल था या नगमाए जहाँ, मेरे तो दिल में उतर गया वो। कुछ अब संभलने लगी है जा भी, बदल चला दौरे आसमां भी, जो रात भारी थी टल गई है, जो दिन कड़ा था गुजर गया वो। बस एक मंजिल है बुल हवस की, हजार रस्ते हैं अहले दिल के, यही तो है फर्क मुझ में उसमें, गुजर गया मैं ठहर गया वो। शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ, जो काफिला मेरा हम सफर था, मिसाले दर्द सफर गया वो। वो मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, ये आज क्या उसके जी में आया कि शाम होते ही घर गया वो। वो जिस किशाने पे हाथ रखकर सफर किया तूने मंजिलों का, तेरी गली से न जाने क्यों आज सर झुकाए गुजर गया वो।

लवी रवि शो, और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहेंगे 23 मई से डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स शुरू हो रहा है। इसका हिस्सा बनने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 4163033639, और बहुत ही कम सीटें बची हैं दोस्तों। अपने बिजनेस को आप खुद प्रमोट करने कर सकेंगे, A to Z सब कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, और वो भी महज एक महीने में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। जिंदगी भर का ये जो हुनर है, ये जो स्किल सेट है, ये आपके पास होगा। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अपनी आप लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कन्वीनियंस के साथ, आसानी के साथ आप प्रमोट कर सकेंगे। बेसिक से ये कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। महज अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना आता है तो ये कोर्स आप प्रोफेशनल तरीके से कर एक प्रोफेशनल बन सकते हैं जिंदगी भर के लिए। एक महीने का टाइम है ये कोर्स में, एक महीने का ये कोर्स है इसकी, एक महीने में ये पूरा प्रोफेशन आपको बना देगा। और एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आपको आना है, वो भी कन्वीनियंट इस पर, सैटरडे और संडे 1 बजे से 6 बजे तक, सैटरडे 1 बजे से 6 बजे तक, संडे, यानी कि एक महीने का ये पूरा ड्यूरेशन है, जिसमें हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आपको पढ़ाया जाएगा, 1 से 6 तक सैटरडे, 1 से 6 तक संडे, यानी कि महीने में सिर्फ 8 क्लासेस होंगी, और यानी 40 घंटे का ये कोर्स है। इसमें पोस्टर क्रिएट करना, आर्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, वीडियो मेकिंग, यूट्यूब चैनल बनाना, एडिटिंग करना, पंच लाइन लिखना, कंटेंट क्रिएट करना, फंडिंग के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एड, स्पॉन्सर्ड एड, पेड एड, अनपेड एड क्या होते हैं, कैसे आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। एक छोटे से अमाउंट में जिंदगी भर का हुनर आपके पास होगा। नंबर टू कॉल 4163033639, 4163033639। और इसी के साथ आमिर और शिवानी को दें इजाजत, कल तक के लिए होती है मुलाकात। नमस्कार।

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर it deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 46 1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: listen to us, around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स the care it deserves.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 9046-1000 for Midland and Sues and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Listen to us, around the universe. www.cmr.fm.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती है बिल्कुल अनलिमिटेड। बाहर का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक 8 और मैक्सिमम टेम्परेचर्स आज तकरीबन 12-13 डिग्री तक ही रहेंगे। मिनिमम टेम्परेचर नाइट विल फॉल डाउन टू 2 डिग्रीज। टुमारो 13 and 6, वेंसडे 14 and 7 विद अ बिट ऑफ रेन, एंड राइट नाउ इट इज 12:07। 12:15 की हमारी हेडलाइंस बिल्कुल रेडी है। नए हफ्ते में कदम रख दिया है, May 11th, और बुल्ला की जाना मैं कौन रवि शेरगिल की आवाज़ में प्यारे से गीत से दिन की शुरुआत कर ली है। इसके अलावा आपकी रिक्वेस्ट्स को हम 2 बजे तक प्ले करते रहेंगे। एंड जब वीकेंड होता है तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ एक्शन। टोरंटो GTA में तो काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी इवेंट्स अब शुरू हो गए हैं होने। अगला कमिंग मंडे जो है इज़ विक्टोरिया डे, सो ऑब्वियसली दैट इज़ दैट फर्स्ट लॉन्ग वीकेंड दैट एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू। लेकिन इस पिछले वीकेंड टोरंटो FC की ज़बरदस्त गेम, और जितने लोग भी मेसी के फ़ैन थे डेफिनेटली पहुँचे हुए थे, 40-45 हज़ार लोग यू नो वर देयर टू इंजॉय, you know, it's like almost like a pre-FIFA World Cup wala scenario ban chuka tha. Hantavirus se ek person isolate kar raha hai Peel region mein after having contact with confirmed hantavirus case. Aur Peel public health ka kehna hai ki person isolation mein is a visitor and currently has no symptoms. And isko lekar ab jo hai kafi ek sort of dar bhi hai, aur ise COVID-19 ke saath कहीं कहीं बताया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। ऑल द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड दैट इट इज़ नॉट एज सीरियस एज दैट एंड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जिसकी चिंता होनी चाहिए हमें। बट ऑब्वियसली देर आर पीपल दैट आर आइसोलेटिंग। मैन सीरियसली इंजर्ड आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय अ व्हीकल नियर वेस्टर्न रोड और लॉरेंस, टोरंटो में ये खबर आई है सामने। एंड हेल्थ की तरफ से एक नई स्टडी है ऑन विमेन इन ओंटारियो, फाइंड्स एंडोमेट्रियोसिस क्रिएट्स हायर रिस्क ऑफ डिलीवरिंग बेबीज, एंड समर रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स नाउ लिस्टेड टोरंटो सिटी के वेबसाइट पर। रजिस्ट्रेशन जो है 5 जून से ओपन होती है, बट यू कैन गो एंड चेक आउट द प्रोग्राम्स दैट दे आर ऑफरिंग फॉर दिस कमिंग समर। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, एंड द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जो कि 30+ लोकेशन से 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयां आपको सर्व करते हैं ऑल अक्रॉस GTA एंड बियॉन्ड GTA। एंड वेदर बिलो सीजनल टेम्परेचर होगा आज, बट इट विल फील ब्राइट एंड फ्रेश। फोरकास्ट में हाई, जैसे मैंने पहले कहा, विल बी अबाउट 12 to 13 degrees. Toronto falls short of series sweep with 6-1 loss against Angels. Jays open series with Rays today. बहुत ही एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेंगे। 12:15 की हेडलाइंस लेकर हम बिल्कुल रेडी हैं, और तमिलनाडु की राजनीति गरमाई, और लेकिन जो होना था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। चीफ मिनिस्टर बन गए हैं अब नए, और DMK और TVK हैं आमने सामने, और देखते हैं आने वाले दिनों में विजय क्या काम करते हैं तमिलनाडु के लिए और किस तरह से उनकी सांठगांठ होती है केंद्र सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ। और ऑब्वियसली सेम गोज़ फॉर पश्चिम बंगाल, जहां पर नई सरकार BJP की बन चुकी है। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वील बी राइट बैक।
1: मॉर्गेज का कोई भी काम, याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940, 6478631940।
2: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर everything automotive. चाहे हो डेली commute या weekend escape, हमारा प्रॉमिस will always remain the same. हर जर्नी को बनाए खास, Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें wayneautogroup.com.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
2: अच्छी याद है, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
1: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
3: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448।
4: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
5: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
6: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज, विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। विजिट donvalleynorthhyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
7: मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। खुशियां मिल जाएंगी एक दिन, रोते रोते ही सही। कमजोर दिल के हैं वो जो हंसने की सोचते ही नहीं। पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखे हैं अंधेरी रातों में। ना समझ है वो जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं।
8: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

0: Welcome back, friends. Other headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Don Valley, North Hande, Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Homeo Care, McVean Dental Care, Win Lifetime Trading. Shuru karte taza tareen headlines. Elon Musk versus OpenAI lawsuit mein Microsoft CEO Satya Nadella bhi testify karenge. Iran ne shaks ko di phansi as he was convicted of spying and leaking secrets to Mossad and US. Spain ke Canary Islands mein evacuation shuru hua for hantavirus hit cruise ship, a rare disease which usually spreads among rodents. World Health Organization chief ka kehna hai ki hantavirus is not another COVID-19 pandemic. Hantavirus fears ke baad Caribbean cruise norovirus outbreak mein 100 se zyada log hue bimar. Denver International Airport mein unidentified shaks enter hua by jumping over a security fence. Person gets killed on the US runway. $2.5 million fraud case mein US to revoke citizenship of Indian man Debashish Ghosh, 62 years old. Report ke anusar Israel built and defended a secret base in Iraq for Iran war. Aur Russian President Vladimir Putin ne Russia war with Ukraine par kaha coming to an end. UPS ke naye rule ke tahat handguns could soon be mailed in the US for the first time in 100 years. Israel ke Iron Dome ne Iran, Hamas aur Hezbollah se 99% missiles ko intercept kiya. और लोकल समाचारों में स्कारब्रो में हुए टू व्हीकल क्रैश में मोटरसाइकिलिस्ट मारा गया. इटोबिको हिट एंड रन मामले में महिला हुई जख्मी, ड्राइवर अरेस्टेड. डीवीपी ऑल वीकेंड रहा क्लोज ड्यू टू मेंटेनेंस. एंड ओशवा में पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग अ होमसाइड. स्टडी के अनुसार सिटी बर्ड्स मोर स्केर्ड ऑफ विमेन देन मेन. एंड कार एंड फ्रेट ट्रेन कलाइड इन स्कारब्रो. टोरंटो होम फॉर सीनियर्स में लगी आग की जांच जारी है और टोरंटो हाईराइज से गिरने के बाद टॉडलर की हुई मौत. भारतीय समाचारों में ब्लूमबर्ग एनालिसिस के अनुसार पीएम मोदी ने रास्ता बना लिया है टू कीप पावर वेल बियॉन्ड 2030. इलेक्शंस में मिली बड़ी जीत के बाद विजय ने एक्स चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन से की मुलाकात. और वंदे मातरम वर्सेस तमिल एंथम, विजय की चीफ मिनिस्टर ओथ के पहले डीएमके वर्सेस टीवी के बैटल को हवा दी. वंदे मातरम को जनगण मन और तमिल स्टेट सॉन्ग से पहले प्ले किया गया. टीवीके ने कहा म्यूजिक वाज द गवर्नर्स कॉल. डीएमके रिफ्यूज टू रिलेंट. बोले टीवीके का झुकाव बीजेपी की तरफ दिखता है, ये बात अब साफ हो गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टीचर के खिलाफ उर्दू पोएम वाले मामले में कहा लिटरेरी एक्सप्रेशन इज नो क्राइम. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर विजय सेकेंड richest MLA in assembly owns assets worth 648 crore rupees. Last financial year mein Vijay declared income was 184 crore rupees. Bengal ke baad BJP preps for Uttar Pradesh. Cabinet reshuffle ke saath goes for social reset. Dusri aur पंजाब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को स्लैम किया आफ्टर अलेज्ड अटैक ऑन लीडर्स एंड बीजेपी ऑफिसर्स. पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट अश्वनी शर्मा का कहना है कि ये तो आम आदमी पार्टी की खुलेआम गुंडागर्दी है. मदर्स डे मैसेकर, उत्तर प्रदेश के एक शख्स ने जमीन विवाद को लेकर मां और भाई को मारी गोली, खुद फरार हुआ. नो बैरियर नो ट्रैफिक जैम, दिल्ली NCR का नया फास्ट एक्ट टोल सिस्टम टेक्स इफेक्ट. सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस केस में बेल देने से इनकार किया और कहा कैंट ट्रीट वाइफ लाइक एन एनिमल. दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से, पाकिस्तान ने बन्नू अटैक पर अफगान रिजीम को जिम्मेदार ठहराया. वॉर्न्स ऑफ डिसाइसिव रिस्पॉन्स. 15 पुलिस वाले शहीद हुए थे, टेररिस्ट ने पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया था. मार्काए हक सेरेमनी के दौरान प्रियम शरीफ ने कहा हिस्टोरिक मिलिट्री रिस्पॉन्स फोर्स्ड इंडिया टू सीक सीज फायर. इस्लामाबाद में प्रेजिडेंट जरदारी और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी इवेंट को अटेंड किया. एंड दूसरी ओर मिड ईस्ट में लास्टिंग पीस एफर्ट्स के लिए पाकिस्तान और कतर ने डायलॉग को सपोर्ट किया. दोनों मुल्कों ने के प्राइम मिनिस्टर्स ने पीस इनिशिएटिव्स के प्रोग्रेस को रिव्यू भी किया. डॉक्टर सारंग मर्डर केस में पत्नी को अरेस्ट किया गया. डॉक्टर को अनआइडेंटिफाइड लोगों ने गोली मारी थी ऑन 21 अप्रैल. पत्नी के अलावा पुलिस ने एक और शख्स को हिरासत में ले लिया है. PTCL का कहना है कि इंटरनेट यूजर्स में फेस डीग्रेडेड कनेक्टिविटीज. सबमरीन केबल पर स्केड्यूल मेंटेनेंस वर्क 11 से 18 मई तक चलेगा. दूसरी ओर मार्काए हक एनिवर्सरी पर CDM मुनीर ने दी वार्निंग और कहा फ्यूचर अग्रेशन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा. एंड मई कॉन्फ्लिक्ट में दुश्मन ने हार देखी है. पाकिस्तान शोड यूनिटी एंड स्ट्रेंथ. टोबा टेक सिंह में पंजाब MPA के रेजिडेंस पर हुए हमले में 4 लोग मारे गए. प्राइम मिनिस्टर ने जांच के ऑर्डर दिए. पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अटैकर्स के फॉरन अरेस्ट के ऑर्डर्स दिए. सिंध गवर्नमेंट ने स्कूल्स के लिए समर वेकेशंस का ऐलान किया फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई. दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से बांग्लादेश के खिलाफ टी20s के लिए स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल को सिलेक्ट नहीं किया गया. इंडिया रिटेन्स द टॉप स्पॉट इन आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग. पाकिस्तान ड्रॉप्स. एंड विराट कोहली, रोहित शर्मा ने एमएस धोनी के जाइगेंटिक आईपीएल रिकॉर्ड को इक्वल किया इन द सेम गेम. बोथ नॉच्ड अप देयर 278th आईपीएल गेम, मैचिंग चेन्नई सुपर किंग्स लेजेंड एमएस धोनी फॉर द मोस्ट अपीयरेंसेस बाय अ प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री. और बैक स्पैज्म के चलते हार्दिक पांड्या नॉट पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 अगेंस्ट आरसीबी. बॉलीवुड खबरों से, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने कृष्ण अवतारम की स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड की. डिक्लेयर्स इट टैक्स फ्री इन उत्तर प्रदेश. सोनम कपूर और पति आनंद आहूजा नेम देयर सेकंड चाइल्ड रुद्रलोक. कियारा आडवाणी का कहना है कि प्लास्टिक सर्जरी रूमर्स को मैं ऑलमोस्ट बिलीव करने लग पड़ी थी. आई से दैट आई इग्नोर इट, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ. ट्रोल्स हमें कुछ हद तक अफेक्ट जरूर करते हैं, बोली कियारा आडवाणी. अर्जुन रामपाल ने बताया कि हाउ धुरंधर टीम इज हैंडलिंग सक्सेस. उन्होंने कहा कि डायरेक्टर आदित्य धर इज गोइंग टू टेम्पल्स एंड थैंकिंग गॉड. नीतू कपूर ने किया खुलासा ऑफ फास्टिंग व्हेन ऋषि कपूर्स फिल्म्स डिडंट वर्क. शी सेड वुड गो टू टेम्पल्स, गुरुद्वारा एंड चर्चेस. शाहिद कपूर की माँ नीलिमा ने अपनी 3 फेल्ड मैरिजेस पर कहा, आई मैरिड टैलेंटेड मैन हु हैड नो मनी. ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. गीत संगीत का कारवां चलेगा, आपकी रिक्वेस्ट प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर को ले लेते हैं. आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
1: जी कैसे हैं आप? ठीक हैं?
0: जी जी जी, आप सुनाइए.
1: बस टैरिफ का मुद्दा बिल्कुल खत्म हो गया है या अभी कुछ है उसमें?
0: नहीं, इट्स इन द वर्क्स. वो मीटिंग्स अभी कुसमा को लेकर सारी मीटिंग्स जो है चलनी है.
1: अच्छा, क्योंकि टैरिफ का मामला अभी अटका हुआ है और अभी ये. अच्छा, एक बात बताएं, इंडिया में गैस प्राइस जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है नहीं हुई, जैसे पाकिस्तान में हो गई और आसपास मुल्कों में हो गई?
0: नहीं.
1: और अगर नहीं हुई तो क्या स्टेप था इनका जो इस वजह से इन्होंने थोड़ा कंट्रोल रखा, क्या हुआ क्या था?
0: नहीं, इंडिया में भी ऑब्वियसली गैस प्राइसेस हैव गॉन अप. ऐसी तो बात नहीं है कि गॉन अप नहीं हुआ है. एंड बट ड्रास्टिकली इस पॉइंट पे तो हर जगह है. अब तो पीएम मोदी ने कुछ ऐलान भी किए हैं कि भाई चीज़ों को ध्यान से इस्तेमाल किया जाए. एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ द गैस प्राइसेस आर प्राइसेस रिमेन ऑन फ्रीज फॉर पेट्रोल एंड डीजल इंडिया के कुछ इलाकों में. दो रिसेंट हाइक्स हैव इम्पैक्टेड ओवरऑल जो फ्यूल कॉस्ट है उसको इम्पैक्ट डेफिनेटली किया है. जहाँ पे डोमेस्टिक एलपीजी की बात है वो 913 से कहीं कहीं 930 रुपये भी जा चुका है. चेन्नई में या दिल्ली में आई थिंक इट्स अबाउट 913 रुपीज. सो या prices have been definitely affected.
1: इससे पता चलता है कि अगर आदना हरमुस को अगर कोई भी ब्लॉक चौक करे किसी वक्त में
0: जी,
1: तो पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी और कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं है किसी कंट्री में
0: जी
1: कि वो जाके इस चीज को रुकवा सके कि भाई ये तो पूरे मुल्कों के लिए प्रॉब्लम हो जाता ना. अभी देखे ना, इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है और दोनों का ऑयल वहां से आता है. दोनों इस पोजीशन में ही नहीं है कि उसको खुलवा सके. अब ईरान जैसा मुल्क जो है जिसके पास ना एटॉमिक पावर है ना इतनी इतनी फौज है कि वो हर चीज को चौक कर ले, लेकिन उसकी देखो या इसी तरह से होगा. फिर इतने हथियार बनाने की, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? फिर बस दुआएं करो बस और कुछ भी मत करो.
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का. एंड इस सिचुएशन में तो आम इंसान जो है दुआएं कर सकता है, क्योंकि क्या ट्रम्प सोच रहे हैं या अभी भी ट्रम्प का जो बयान आया है कि वॉर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है एंड सिचुएशन जो है बिल्कुल अंडर कंट्रोल आ गई है. अब कंट्रोल आई है, एक दिन ट्रम्प ये बोलते हैं एंड देन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ ट्रम्प के बयान खुद भी जो है बिल्कुल बदल जाते हैं. सो इट्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली बिलीव व्हाट ट्रम्प इज सेइंग. बट यस, एट द एंड ऑफ द डे सारा डिसीजन जो है वो US व्हाइट हाउस ट्रम्प के हाथ में ही है एंड दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू रिमेन फॉर नाउ. चलिए ऐसे करते हैं, ब्रह्मचारी एक और कॉलर है उन्हें लेते हैं. जी आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
2: जी ये ट्रम्प कभी सच्चा बोलता है कभी बोला आपने देखा कभी सच्चा बोलता है? सुबह क्या बोलता है, रात को क्या बोलता है, सब झूठ बोलता है, कभी सच बात बोलता ही नहीं है.
0: बिल्कुल.
2: एक आपके घर के बाहर आके आपका दो नॉक करेगा, बोलता है कि आपके घर में घुस जाएगा, कब एक्सेप्ट करेगा, गुंडा आएगा.
0: जी जी
2: गुंडागिरी करता है ना कि गड़बड़ जाए।
0: बिल्कुल जी, अब गुंडागर्दी है, अब क्या कोई
2: दुनिया में चुप है, जो एक बंदा सता रहा दुनिया में, दो बंदा सब पूरी दुनिया चुप बैठी है, सब कंट्री
0: जी
2: तो इसको ही मार लो ना, सारे को खत्म करो, अमेरिका को नाम और इकतार को इसका खत्म करो।
0: नहीं चलिए, ऐसे तो खत्म वतम नहीं होता, ये तो इट्स अ सुपर पावर,
2: उसको मारो खत्म करो।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं देखिए, मारो खत्म कर दो ये सब तो एक यू नो आप घर बैठे ऐसी बातें कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है कि ना ही यू नो इन एक आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप की कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिनसे यू नो ऑब्वियसली कनाडा अग्री नहीं करता, हम रेगुलर बेसिस पे उनकी पॉलिसीज के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही वो चुने गए हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप है। हाँ कुछ काम ज़रूर मीडिया के ऊपर और ख़ासकर एबीसी न्यूज़ के ऊपर जिस तरीके से ट्रंप बयान देते हैं और उन्हें यू नो फेक न्यूज़ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ ओपनली कहते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें जो है डेमोक्रेटिकली ठीक नहीं दिखती या लगती, लेकिन यह कि एट द एंड ऑफ द डे देयर आर पीपल दैट हैव इलेक्टेड ट्रंप और उन्हें व्हाइट हाउस में पहुँचाया है, अब क्या कह सकते हैं, दैट्स व्हाट इट। अशोक जी आप ऑन एयर हैं, प्लीज़ गो अहेड।
3: नमस्कार, मैं अशोक बोल रहा हूँ
0: जी। नमस्कार जी, नमस्कार।
3: आपके समाचार सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा
0: जी।
3: अभी हाल में ही मोदी जी ने कल रात को ही अपील की है भारतीय पब्लिक से कि वर्क फ्रॉम होम करें, डीजल की खपत कम करें,
0: बिल्कुल
3: विदेशी यात्रा टालें, मेड इन इंडिया वस्तु खरीदें और सोना कम खरीदें। इसके पीछे सर बहुत बड़ा संदेश है कि क्या कोई विपत्ति आने वाली है
0: जी। बिल्कुल,
3: तो जो लोग बोलते हैं तो ये भारत सरकार की तैयारी है पहले से ही, क्योंकि इन सब कामों में विदेशी मुद्रा बहुत खराब खत्म होती है।
0: जी जी बिल्कुल।
3: एक श्रोता बोर्डर पूछा था, उन्होंने क्वेश्चन, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत गवर्नमेंट ने अब्सॉर्ब कर ली थी, बढ़ने नहीं दिया, गैस की कीमत भी बढ़ने नहीं दिया
0: जी,
3: तो ये उस बात का फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। प्री है, हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। नकारात्मक युद्ध का नकारात्मक प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: आपको याद होगा चाइना वार के टाइम पे लोगों ने, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने भी अपने मंगल सूत्र गिरवी दे रख दिए, दान में दे दिया था।
0: बिल्कुल,
3: आम पब्लिक ने भी दिया था। फिर चंद्रशेखर जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 44 टन सीना, भारत की साख बचाने के लिए बैंक ऑफ लंदन को गिरवी रख दिया था। तो इन सबको देखते हुए पहले से ही गवर्नमेंट ले लेती है कि क्या करना चाहिए और उस वजह से फिर वो आगे बढ़ते हैं। पर इतना निश्चित है प्रधानमंत्री की अपील से कि कुछ वो संदेश देना चाहते हैं, कुछ संकेत देना चाहते हैं ताकि लोग सावधान हो जाए।
0: जी बिल्कुल सही बात जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जो मोदी साहब ने कहा है, नॉट ओनली कि क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे, इवन एट द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि इवन दो सब्सिडी दी जाती है इंडिया में, इवन दो पेट्रोल डीजल पर फ्रीज लगा दिया जाता है क्षेत्रों में, पॉइंट ये है कि उसका अगर वो पीछे से हाई प्राइस पे आ रही है, वेदर वो पब्लिक को डायरेक्टली उसका असर नहीं दिख रहा, गवर्नमेंट को दिख रहा है, गवर्नमेंट को वो वाली ऑयल जो है वो महंगा खरीदना पड़ रहा है, सो कहीं ना कहीं समवेयर और दी अदर उसका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आगे जाके पब्लिक को दिख जाएगा, और वो चीज़ शायद उस चीज़ पे भी इशारा मोदी साहब ने किया है। चलिए, मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में ब्रह्मचारी फिल्म का गीत है, फिल्माया ऑन शमी कपूर एंड मुमताज़, इन्जॉय करें, आप ही की रिक्वेस्ट है।

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
0: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा पिनाक ओझा जी. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं. मेजर इंटरसेक्शन इज नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड. द क्लिनिक इज ओपन 6 days a week फॉर योर कन्वीनियंस, मंडे टू सैटरडे, 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग. वॉक इन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, और या फिर फोन पर कंसल्टेशन करें. दवाई आपको शिप कर दी जाती है ऑल अक्रॉस US कैनेडा. 647-760-2779. मीता जी, आपका स्वागत है.
3: थैंक यू सो मच सनी जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लिसनर्स.
0: जी आपको भी गुड आफ्टरनून. मीता जी, आज स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में किस टॉपिक को लेकर करेंगे बातचीत?
3: जी सीलियाक डिजीज के बारे में आज बात करेंगे. सो सीलियाक जो है ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें ग्लूटेन वाली चीजें खाने के साथ बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है. अब ग्लूटेन जो है ये प्रोटीन है, वीट में पाया जाता है, और जो ग्रेन्स होते हैं कि बार्ली हो गया, राई वगैरह में ये पाया जाता है. अब इंटॉलरेंस जो होता है वो डिफरेंट चीज है कि जब भी आपको किसी चीज की इंटॉलरेंस है तो उसमें ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है. तो इसको आप एक तरह की एलर्जी कह लें जिसमें इम्यून सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है. अब जो हम खाना खाते हैं उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्सॉर्ब होते हैं, जिससे हम कहते हैं ना कि बॉडी को लगना. तो ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को लगते हैं. लेकिन व्हेन यू हैव अ सीलियाक डिजीज तो इसमें क्या होगा कि आप ग्लूटेन वाली चीजें खाते हैं तो उसके साथ आपका बॉडी रिएक्ट करने लगता है, जिस करके स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की लाइनिंग डैमेज हो जाती है. वो छोटे छोटे बाल की तरह वहां पे विलाई होते हैं जहां से न्यूट्रिएंट्स सारे एब्सॉर्ब होते हैं. तो वो डैमेज होने से क्या होगा कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स, आप अच्छे खाना पीना भी अच्छा लेते हो, वाइटमिन सप्लीमेंट्स भी लिए जा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद ये आपकी बॉडी ले नहीं पा रही है क्योंकि ये विलाई डैमेज हुए हैं. तो उस करके क्या होगा कि आपके बच्चे हैं या आप जिनको ये प्रॉब्लम है, एनीमिक होने लगते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी करके एनीमिया होना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी करके ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाती है, आर्थराइटिस वगैरह ट्रिगर हो जाता है. और जिन बच्चों को सीलियाक है तो उनके ग्रोथ पे इफेक्ट आता है कि उनकी हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ पाना, प्यूबर्टी लेट आना या वेट नहीं बढ़ रहा है, उनके बोन्स भी कमजोर रह जाते हैं. एंड कई बार दे फील के जिनको सीलिया के टायर्डनेस है बॉडी में, वीकनेस है विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन, उनको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में आप कह लो कि चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है. और फिर मोस्टली टमी के सिम्टम, डाइजेशन रिलेटेड सिम्टम्स के गैस, ब्लोटिंग ज्यादा होना, फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल पेन्स होते रहते हैं कि कुछ भी खाया पिया तो उसके साथ ही पेट में दर्द होना या रंबलिंग सी है, पेट में गैस जैसे मूव हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डायरिया हो जाना या फिर ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, स्टूल के साथ इवन ब्लड जाना, तो ये सारी चीज़ें तो होती ही है टमी वाले सिम्टम्स। तो उसके अलावा डेफिशिएंसी के साथ एनीमिया, जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, कैल्शियम की डेफिसिट करके आपको नमनेस, टिंगलिंग सी फील होती है, हाथ आपके सुन्न है, पैर आपके ठंडे रहते हैं, माउथ में अल्सर्स रिपीटेडली होते रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑल दोज सिम्टम्स, ये सारे सीलिया करके आप फील कर सकते हैं। अब सीलियाक डिजीज टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, कि जिनकी मदर को फादर को ये है तो बच्चों में होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाती है, और उनको बताया जाता है कि लाइफ टाइम के लिए उन्होंने ग्लूटेन नहीं लेना है। तो यहाँ पे ये जो ट्रीटमेंट है इट कैन हेल्प, एंड काफ़ी बच्चे जब भी आप छोटी एज में ये स्टार्ट कर देते हैं ना तो रिकवरी होने की पूरी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो छोटी एज में अगर बच्चों को ये डायग्नोस हुआ है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, हाँ लेना होगा कुछ टाइम क्योंकि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, साल दो साल तीन साल ट्रीटमेंट चल सकता है, लेकिन फिर लाइफ टाइम के लिए समझौता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और एडल्ट्स में जिनको ये है, काफी बार उनके लीवर के एंजाइम्स हाई चले जाते हैं और प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होती है, तो उनके सिम्टम्स आप मैनेज कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, एंड फिर अल्टीमेटली ये जो सारी डेफिशिएंसीज हैं वो कम होके प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा जिस करके उनका ग्रोथ प्रॉपर होगा और फिर और जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको रोक सकते हैं। सो सीलियाक डिजीज की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की फूड की एलर्जी है, नट्स एलर्जी है, या आजकल जो सीजनल एलर्जीज चल रही हैं, नेजल एलर्जीज, जब भी किसी चीज़ की आपको एलर्जीज होती है, एक तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करता है, रनी नोज, स्नीजिंग है, स्टफी नोज, साइनस की प्रॉब्लम, एंड देन दूसरा ये आपके टमी को इफेक्ट करेगा। सो जो हमने डाइजेशन के सिम्टम्स देखे ये इसके साथ आ सकते हैं। एस्थमा भी ये ट्रिगर कर सकता है या हेडेक भी ट्रिगर कर सकता है, और जो नेक्स्ट फॉर्म में आएगा वो है आपकी स्किन पे कि एक्जिमा हो जाना, हाइव्स हो जाते हैं, रैशेस हो रहे हैं। सो किसी भी तरह की एलर्जी से परेशान है या फिर सीलियाक डिजीज डायग्नोस हुआ है, कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए काव्या होम्योकेयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर करें, और मसाज थेरेपी के बॉडी में कहीं पे भी पेन्स है, नेक पेन, बैक पेन, आर्थराइटिस है, ज्यादा सरदर्द से परेशान है, स्ट्रेस में रहते हैं, तो इन सारी कंसर्न के लिए दोनों का जो कॉम्बिनेशन है आपको काफी हेल्प करेगा। सो फील फ्री टू कॉल मी।
0: बिल्कुल दोस्तों, बता दें काव्या होम्योकेयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा पिनाक ओझा जी, 10 कॉट्रेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड वाला मेजर इंटरसेक्शन है। मंडे टू सैटरडे द क्लिनिक इज ओपन 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM। नंबर टू कॉल 6477602779, 6477602779, एंड ऑल अक्रॉस US कैनेडा दवाई शिप भी की जाती है। काव्या होम्योकेयर, मीता जी बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच सनी जी।
0: थैंक यू जी। 6477602779 एक कॉलर है, उन्हें लेते हैं। आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो, ओके, कॉल बैक करें 4165930055। हर दिल जो प्यार करेगा वॉज द फिल्म, सोनू निगम की आवाज में, फिल्माया ऑन प्रीति जिंटा एंड सलमान खान। और बता दें डॉन वैली नॉर्थ हांडे इज गिविंग फीफा टिकट्स, इट्स अ बैलेट दैट विल बी ड्रॉन इन द मंथ ऑफ जून, ऑफर एंड होता है 31 मई को। अगर आप बाय करते हैं हांडे फ्रॉम देम, टू नेम्स फॉर टू टिकट्स विल बी पुट इन फॉर द लकी ड्रॉ। अगर विंटर टायर्स विद स्टोरेज बाय करते हैं तो वन नेम फॉर वन टिकट विल बी पुट इन फॉर द लकी ड्रॉ। सिमिलरली विद एनी एक्सटेंडेड वारंटी परचेज, अगेन वन नेम फॉर वन टिकट विल बी पुट इन फॉर द लकी ड्रॉ। 7537 वुडबाइन एवेन्यू इन मार्कम स्टील्स, वुडबाइन वाला मेजर इंटरसेक्शन, डॉन वैली नॉर्थ हांडे, आपने रखना है याद, डॉन वैली नॉर्थ हांडे, छोले भटूरे .ca, सर्विंग फ्रॉम 4 लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन वॉन, 1 इन मिसिसागा, एंड छोले भटूरे .ca याद रखें, छोले भटूरे .ca। टेक आउट डाइन इन ऑप्शन अवेलेबल ऑन ऑल 4 लोकेशंस। एंजॉय द सॉन्ग, आते हैं वापस, आगे चलकर स्काई लेक इमिग्रेशन से मनन गुप्ता जी भी होंगे हमारे साथ।

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.

0: जोशी।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ, ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, Wayne's Auto Group इज ऑलवेज देयर। आज ही विजिट करें wayneautogroup.com।

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन जीटीए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: He's breaking through the midfield.
4: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
6: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 6476280040। दैट इज 6476280040।

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। बाहर का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। स्काईलेक इमिग्रेशन से मनन गुप्ता जी हमारे साथ है विद अ लॉट ऑफ अपडेट्स एज ऑलवेज, एंड एंड में इमिग्रेशन की अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। मनन जी, आपका स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच सनी जी फॉर हैविंग मी, और प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए प्रोग्राम को सुन रहे सभी लिसनर्स परिवारों को बहुत प्यार भरी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू सो मच
1: जी। आपको भी सबसे पहले मनन जी, ओंटारियो इज एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस फॉर फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, इसमें थोड़ी सी डालें रोशनी।
2: जी जी बिल्कुल सनी जी, ये आज सुबह की ही ब्रेकिंग न्यूज है, फ्लैशिंग न्यूज है। एक बार फिर ओंटारियो सरकार, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हेल्थ केयर एक्सेस टू ओंटारियंस, क्योंकि ओंटारियो में ऑलमोस्ट 2 मिलियन ओंटारियंस ऐसे हैं जिनके पास बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है। सो इसीलिए पिछले 1.5-2 सालों से ओंटारियो सरकार काफी इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन ले रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मेडिकल केयर, हेल्थ केयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसी कड़ी में आज जो सिल्विया जोन्स हैं, डिप्टी प्रीमियर और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, उन्होंने एक बार फिर फार्मासिस्ट की जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है, स्कोप ऑफ सर्विसेज है, उसमें एक बार फिर इजाफा कर दिया है। आने वाली जुलाई यानी कि 2 महीने बाद से फार्मासिस्ट अक्रॉस द प्रोविंस, अक्रॉस ओंटारियो, 6 अलग अलग पब्लिकली फंडेड वैक्सीन्स की सेवाएं भी एडमिनिस्टर कर सकेंगे, जिसमें टेटनस, डिप्थीरिया, RSV, शिंगल्स वगैरह के वैक्सीन होते हैं, जो आज की डेट में सिर्फ आप अपने फैमिली डॉक्टर या वॉक इन क्लिनिक या इस तरह के क्लिनिक से ही लगवा सकते थे। सो इससे क्या होगा कि जो फैमिली डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर है, जो वेटिंग टाइम है, एक तो वो कम होगा और लोगों को भी एक आसानी सहूलियत मिल जाएगी अपनी पास की फार्मेसी से इस तरह के वैक्सीन लगवाने के लिए। साथ ही साथ 9 ऐसी और एलिमेंट्स को भी अब उनके लिए दवाइयाँ जौन सी हैं वो फार्मेसिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकेंगे, जिसमें डैंड्रफ है, ड्राई आई, रिंग वॉर्म, वॉट्स वगैरह, माइल्ड हेडेक वगैरह की जो उनसी सेवाएं हैं वो भी आप फार्मासिस्ट से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। इससे पहले 19 ऐसी एलिमेंट्स इस लिस्ट में जारी की गई थी, और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में 5 और इस तरह की बीमारियों को भी आसानी से फार्मासिस्ट हैंडल कर सकेंगे। सो 33 एलिमेंट्स के लिए अब आपको डॉक्टर के ऑफिस में अपॉइंटमेंट या उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पास की फार्मेसी में जा सकते हैं। और सरकार का ये भी कहना है कि पिछले 1.5-2 सालों से जब से ये चेंजेस आई हैं, तकरीबन 2.5 मिलियन असेसमेंट्स फार्मेसीज की तरफ से की गई है, जो अपने आप में बड़ी एक अच्छी सफलता है
1: जी। और ओंटारियो लिबरल डोमिनेशन को लिबरल MP नेट में हार गए हैं, इस पे थोड़ा कुछ बताइए।
2: बिल्कुल, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोलर कोस्टर राइड फॉर फेडरल लिबरल MP नेट अर्स्किन स्मिथ, जो 19 वोटों से लिबरल पार्टी की नॉमिनेशन हार गए हैं एहसान उल हफीज के हाथों। और एक बार फिर जॉनसी आप कह सकते हैं कि जो

0: सीट खाली हुई है, डॉली बेगम जो अब लिबरल के एमपी बन गए हैं, मैं वो उधर से नॉमिनेशन लड़ू, लेकिन एक बहुत क्लियर इंडिकेशन स्कारब्रो साउथ वेस्ट के लिबरल मेंबर्स ने दे दिया है कि ड्रेसअप करने से ये मतलब नहीं है कि हम आपको वोट भी दे देंगे. सो ड्रेसअप पॉलिटिशियंस का मुझे लगता है टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है ओंटारियो कनाडा में. बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो आपका आपकी डेमोग्राफी को देखकर यू नो भेष बदल लेते हैं, लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज का उनको अंदाजा नहीं होता. सो वही हाल बयान लिबरल एमपी नेट अर्स्काइन स्मिथ के साथ हुई है, जिनको एक दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंडोर्स किया था, लेकिन वो भी वीडियो उनके किसी काम नहीं आई.
1: जी, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं मनन जी कि भाई कई बार ये जो एमपीज हैं, चाहे ये ट्रूडो के टाइम पे जो एमपीज थे या कई लोगों ने जो है फैमिली को वक्त हम ज़्यादा नहीं दे पाते ये कहकर भी अपनी सीट्स को छोड़ा था, और अब लगता है कि फैमिली को उनका बेहद टाइम मिल चुका है, सो दे डिसाइडेड टू कम बैक नाउ. सो
0: देखिए ये रोलर कोस्टर राइड, ये जब से ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जब पॉपुलैरिटी बिल्कुल ही गायब होती जा रही थी, वेपोरेट हो गई थी, बहुत सारे एमपीज ने यही बहाना लगाया था कि हमने तो फैमिली को टाइम देना है, अब हम फेडरल पॉलिटिक्स से यू नो अलविदा कह देंगे. लेकिन जब उन्होंने देखा कि उधर ट्रंप फैक्टर आ गया, पियर पॉली ने पिवट नहीं किया अपना इलेक्शन कैंपेन, उन्होंने एक बार फिर फैसला किया नहीं जी हम तो दोबारा सेवा करने के लिए तैयार हैं, परिवार को बैक बेंच पर बैठा देते हैं. उसमें बड़ा एग्जाम्पल अनीता आनंद जी हैं जो ओकविल से, वो भी थे, और शॉन फ्रेजर हैं जो पहले इमिग्रेशन मंत्री थे अब अटॉर्नी जनरल हैं. तो ये सारे उसी कड़ी में आते हैं. और इनफैक्ट ये जौन से लिबरल एमपी नेट अर्स्काइन स्मिथ है, इन्होंने भी यही कहा था यू नो, फिर इनको वजारत मिल गई, फिर इनको वजारत से बाहर कर दिया गया, मिनिस्टर नहीं रहे. सो इनका भी काफी ज्यादा लगाव सत्ता से है, लेकिन कभी एक किश्ती में बैठते हैं, कभी दूसरी किश्ती में बैठते हैं, लेकिन फाइनली स्कारब्रो साउथ वेस्ट के लिबरल वोटर्स ने नॉमिनेशन रेस में इनको कहा है कि आप अपने घर में ही बैठें तो अच्छा है.
1: एक $4.4 million के कुछ ड्रग्स सीज किए गए हैं, 3 टोरंटो एरिया रेजिडेंट्स हैव बीन चार्ज्ड.
0: जी जी बिल्कुल, ये 2 जाने टोरंटो के हैं, एक जाना मिसिसागा का रहने वाला है, उम्र इनकी 30 साल से लेकर 38 साल है, और इनको इनके ऊपर आरोप जौन से लगे हैं आरसीएमपी, ओपीपी, टोरंटो पुलिस, सीबीएसए, इन सब एजेंसीज की तरफ से, और $4.4 million की बड़ी मात्रा में ड्रग्स और इलीगल कैश इनसे बरामद हुआ है. ये लीगल मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करते थे. तकरीबन $1.5 million का कैश, सनी जी यू कैन वेल इमेजिन कि 1.6 मिलियन का कैश आपने अपने घरों में रखा हो मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके साथ साथ 153 केजीज ऑफ कोकेन, 10 किलो हेरोइन. सो ये बड़ी संख्या में इन लोगों को चार्ज किया है. 6 लोग हैं, 3 जाने टोरंटो एरिया के रहने वाले हैं और 3 जाने आउट ऑफ जीटीए के हैं. सो डेफिनेटली आरसीएमपी की एक बड़ी सफलता कही जा सकती
1: है. जी मनन जी, कनाडाज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट नियर्स रिकॉर्ड हाइज आउटसाइड रिसेशन, नॉट गुड.
0: बिल्कुल जी, इट्स नॉट अ हेल्दी साइन, स्पेशली जो हमारा यूथ है, न्यू यू नो यंग जनरेशन है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब्स करनी होती हैं टू मूव अहेड और अपना करियर बनाना होता है, उनके लिए ये कोई अच्छा सूचक नहीं है. क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स कनाडा और स्पेशली उससे स्टैटिस्टिक्स कनाडा की रिपोर्ट अभी फ्राइडे को ही आई है सुबह, लेकिन उससे पहले फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है. देखिए यूथ जौन सा 15 साल से लेकर 24 साल की इसकी उम्र है, वो एज पर फ्रेजर इंस्टीट्यूट 13.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट के से गुजर रहा है, जो बढ़कर इनफैक्ट फ्राइडे को जो रिपोर्ट आई उसमें 14.3% हो गया. सो 15% यूथ जो काम करना चाहता है उसको जॉब नहीं मिल रही, और उसका सीधा कारण जौन सा ब्लेम गेम लग रहा है वो लिबरल पार्टी फेडरल सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर है. क्योंकि लोगों का मानना है कि बहुत बड़ी गिनती में टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स और टेम्परेरी रेजिडेंट्स का कनाडा में स्वागत किया गया है पिछले 3-4 सालों में, जिसके कारण ये जौन सा एम्प्लॉयमेंट इम्बेलेंस है वो खड़ा हो गया. सो इस साल से लेकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो डाटा सामने आया है सनी जी, उसमें तकरीबन 1,10,000 जॉब्स का पलायन हो गया है. तो यू कैन वेल इमेजिन कि वेयर आवर इकोनॉमी इज हेडिंग, जब 1,10,000 फुल टाइम जॉब्स मार्केट से गायब हो जाएंगी, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यू नो वी आर नॉट इन अ रिसेशन और वी आर नॉट नियरिंग अ रिसेशन. सो डेफिनेटली इकोनॉमी इज नॉट दैट स्मूथ, दैट पॉजिटिव. वी ऑल नीड टू बकल अप एंड बी रेडी फॉर सम टफ सिनेरियोस अहेड.
1: जी, एंड कंजर्वेटिव्स प्रपोज ईआई रिफॉर्म्स फॉर पेरेंटल लीव, मनन जी.
0: अब कंजर्वेटिव पार्टी के पास देखिए और कोई मुझे लगता नहीं कोई उनके पास कोई ऐसे साधन रह गए हैं कि टू गेट पीपल्स अटेंशन, क्योंकि सरकार लिबरल पार्टी ने माइनॉरिटी से मेजॉरिटी बना ली है थैंक्स टू 4 फ्लोर क्रॉसेस फ्रॉम देयर ओन कंजर्वेटिव पार्टी. सो इसीलिए अब कंजर्वेटिव पार्टी हर

0: एक दो हफ्ते बाद कोई ऐसे जिसे कहते हैं पॉलिसीज अनाउंस कर देती है जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। और उसी कड़ी में इम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के रिफॉर्म्स की बात कंजर्वेटिव पार्टी अब कर रही है, खास करके उन लोगों के लिए जो पेरेंटल लीव पर होते हैं, कि उनको आप पॉज कर सकें योर पेरेंटल लीव अगर आपने कोई पढ़ाई करनी है, अगर आपने कोई ट्रेनिंग लेनी है, या अगर आपने कोई चाइल्ड केयर सर्विसेज देनी है, प्रोवाइड करनी है, तो यू कैन अर्न मनी। सो अगेन, अ फैसला लिबरल पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपोजिशन की किन पॉलिसीज को वेलकम कहती है, किन पॉलिसीज को सुनकर नकार देती है। लेकिन अगेन, कंजर्वेटिव पार्टी इज ट्राइंग टू मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट वन वे और दी अदर। जी
1: जी एंड अंत में आपसे, एक तो 2026 का सेंसस लेटर्स जो मेल में आए हैं, कनेडियंस अर्ज टू कंप्लीट, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट,
0: वेरी
1: डिड
0: गुड,
1: इट वाज ऑलमोस्ट लाइक मिशन अकम्प्लिश लगता है उसे कंप्लीट करने के बाद। मनन जी
0: बिल्कुल। देखिए, ये बड़ा अच्छा, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कैनेडियन आपने निभाई है। सो मैं जरूर उन सब लिसनर्स को, परिवारों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में सेंसस कनाडा की तरफ से एक येलो एनवेलप आया है, उसको ये ना सोचें वो जंक मेल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है। उसको खोलें, उसके अंदर आपके आपकी रेजिडेंस का एक पर्टिकुलर 16-डिजिट कोड होगा। उस कोड को आपने इस्तेमाल करना है census.gc.ca वेबसाइट पर जाकर, और फिर जो भी सेंसस का क्वेश्चनियर होता है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म है या लॉन्ग फॉर्म है, डिपेंडिंग अपॉन आपका घर आपका किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। किसी को शॉर्ट फॉर्म आ रहा है, किसी को लॉन्ग फॉर्म आ रहा है, लेकिन 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। आपने अपने घर में रहने वाले सब जो उनसे मेंबर्स हैं उनकी गिनती बतानी है, किस एज ग्रुप के हैं, किस एजुकेशन में है, क्या आपके घर का साइज है। सो ये बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आने वाले समय में कनाडा की जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, खास करके एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांजिट, और किस एरिया में कितनी राइडिंग्स होनी चाहिए, एमपी मेंबर पार्लियामेंट के लिए कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, जो भी सारे आने वाले समय की पब्लिक पॉलिसीज हैं, वो आपकी इस सेंसस की इंफॉर्मेशन के तहत ही सरकार प्लान करती है। इट्स मैंडेटोरी। 12 मई कल जो उनसी आने वाली है, वो एक तरह से प्रेफर्ड डेडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, सेंसस कनाडा की तरफ से, लेकिन इट्स नॉट अ फाइनल डेडलाइन। अगर आप तब 12 मई तक भी नहीं करते सबमिट, तो आपको अगले 4 से 6 हफ्तों में रिमाइंडर भी आ सकता है, रिमाइंडर लेटर भी आ सकती है। और जो लोग, वैसे तो कनाडा में सनी जी 98-99% लोग सेंसस की इन्फॉर्मेशन भरकर देते हैं, लेकिन जो कुछ एक नहीं भरते, उनको फिर $500 का फाइनेंशियल फाइन भी लग सकता है। सो अपनी जिम्मेवारी को अवश्य निभाएं। इट डजेंट मैटर वेदर वेदर यू आर अ टेम्परेरी रेजिडेंट और अ कैनेडियन सिटीजन, आपके घर में अगर वो लेटर आई है तो आपने इन्फॉर्मेशन अवश्य भरनी है। और फाइनली, अगर लेटर नहीं भी आई तो भी आप ऐसा करें कि census.gc.ca पर जाकर अपना एड्रेस टाइप करेंगे, तो आपके उस घर के एड्रेस के बेस के ऊपर 16-डिजिट कोड जारी हो जाएगा, जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी
1: जी एक कॉलर है, क्विकली उन्हें लेते हैं, फिर मनन जी से इनके जाने से पहले जो है इमिग्रेशन की अपडेट भी आप तक दोस्तों पहुंचाते हैं। आप ऑन एयर हैं, अपना सवाल पूछिए प्लीज।
2: मैं सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि वो मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि भाई हम फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हैं, तो हम रिटायर हो जाते हैं या छोड़ देते हैं। बात यह है कि आप ये मालूम करें कि फैमिली उनको टाइम दे रही है अब नहीं दे रही, क्योंकि ये भी तो होता है ना कि ये तो दे टाइम देने को तैयार है, फैमिली कहती है आप जाओ कहीं और रहो जाके, ऐसा भी तो हो सकता है ना,
1: ऐसा भी हो सकता है, क्या पता इसीलिए वापसी कर ली।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, एंड आपके सवाल में ही आपके जवाब थे। मनन जी का नंबर मैं यहाँ पर कपल ऑफ टाइम्स देना चाहता हूँ ताकि इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी जब मैटर होता है दोस्तों, तो 416-451-0040 स्काईलेक इमिग्रेशन का आपने नंबर याद रखना है। दे आर द नंबर वन कंपनी इन GTA इन कनाडा। 416-451-0040 एंड नंबर वन इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ फॉर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, एंड बहुत सही तरीके से जो है काम आपका, आपकी फाइल को देखा जाता है और सारा काम जो है मनन गुप्ता जी और उनकी टीम करते हैं। और मैं ऑलवेज़ ये कहता हूँ कि जो एक्सपर्ट है उनसे ही ऐसा काम करवाएं भाई, तो आप छोटी सी गलती बहुत वक्त और पैसा आपका बर्बाद करती है। मनन जी, व्हाट इज़ द लेटेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ इमिग्रेशन?
0: बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वेरी काइंड वर्ड सनी जी। और कैनेडियन इमिग्रेशन इज डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डेलिकेट टफ फेज। बहुत सारे लोगों के जौन से प्लान्स हैं वो आधे अधूरे छूट रहे हैं ड्यू टू द डिसरप्शन. गवर्नमेंट की पॉलिसी रातों रात बदल रही हैं. आने वाले समय में किस तरह की चेंजेस प्लान की जाएंगी उसका कोई आइडिया लोगों को नहीं लग पा रहा है. कुछ एक चीज़ें जो प्लान तरीके से आगे बढ़ रही हैं उसमें ये जरूर है कि एक्सप्रेस एंट्री के बड़े रिफॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 2027 यानी कि अगले साल की शुरुआत में जनवरी तक होंगे. हैविंग सेड दैट, हमारे पास बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स जब लेकर आते हैं, मेरी उन सबसे और जो भी लिसनर्स अभी सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज डोंट बी ओवर क्रिएटिव. वी अंडरस्टैंड कि आपके जौन सी इमिग्रेशन संबंधी की समस्याएं हैं, डिलेज हैं, फ्यूचर आपको ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा कनाडा में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी तरह के गोरख धंधे, किसी तरह के नकली फेक डॉक्यूमेंट्स को प्रोक्योर करना शुरू कर दें. यू आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ योर लव्ड वंस, क्योंकि किसी भी तरह के मिसरिप्रेजेंटेशन या फेक डॉक्यूमेंट, फेक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, फेक जॉब एक्सपीरियंस या इस तरह के फ्रेंच लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को गलत तरीके से प्रूव करना वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है. सो अगेन, डिसीजन लोगों का खुद का है, बट एज अ प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट हमारी तो आपसे यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज कंडक्ट योर सेल्फ लेजिटिमेटली एंड मेक श्योर कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसका आपके पास फुल बैकअप हो. स्काईलेक इमिग्रेशन इज हेयर टू प्रोवाइड यू 100% लीगल, एथिकल एंड प्रोफेशनल इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप सर्विसेज. आपने किसी तरह की अपॉइंटमेंट बनानी है, skylakeimmigration.com के ऊपर जाएं या फिर 416-451-0040 नंबर के ऊपर भी कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक की जा सकती है.
1: बिल्कुल, और वेंसडे को इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाले सेगमेंट में दोस्तों आप अपने सवाल भेज सकते हैं. ऑन एयर हम आपके सवाल मनन जी से पूछेंगे. immigrationsegment@gmail.com पर आप अपना क्वेश्चन भेजें. स्काईलेक इमिग्रेशन 416-451-0040. मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू जी. 416-451-0040 वन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब भी हमारे साथ होंगे बहुत जल्द. फ्री सेमिनार सैटरडे आफ्टरनून होता है 12:30 to 3:30. सीट प्लीज अपनी रिजर्व करवा लीजिए, प्लीज डोंट वॉक इन. एंड ओके, अभिजीत अलका याग्निक की आवाज में, जतिन ललित का म्यूजिक, जावेद अख्तर के लिरिक्स एंड फिल्माया ऑन रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान. द मूवी वॉज चलते चलते.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: 10 meter, बस इतना को याद रखो. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 meter ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਛੂਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 meter ਦੂਰ ਰੱਖੋ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ. esasafe.com/stoplooklive ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ.
2: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी.
3: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters. 289-748-4040 289-748-4040.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਟਗੇਜ ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ
4: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ
3: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ
3: ਯੂ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ
4: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਨੂੰ
3: 647-739-8710 लाइसेंस नंबर M200-3450
5: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है 8 साल का लंबा तजुर्बा हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है हर कदम हम आपके साथ 30 Brampton Court in Brampton 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax 289-372-3330 or acvc.info
6: At Wayne's Auto Group aap hum par rely kar sakte hain for everything automotive chahe ho daily commute ya weekend scape hamara promise will always remain the same har journey ko banaye khaas Wayne's Auto Group hamesha aapke saath over 1400 dedicated associates jo bolte hain aapki language offering 9 brands across 15 dealerships from first drive to lifetime care Wayne's Auto Group is always there aaj hi visit kare waynesautogroup.com
7: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता एक घर बनता है इरादों से जी जान मेहनत से अपने इरादों को एक नया मुकाम दें अपनी मेहनत को अंजाम दें कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन 6478661086 राज जोशी नाम ही काफी
8: वेलकम बैक फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है बाहर का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं राज जी आपका स्वागत है
9: सनी जी नमस्कार सत श्री अकाल आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को वेरी गुड आफ्टरनून सनी जी फ्रेश न्यूज है फॉर ब्रैम्पटन मेफील्ड एरिया कंट्री साइड और मेफील्ड के बीच में ब्रैमली रोड पर 9 लॉट्स कट आउट हुए हैं और अगर कोई भाई बहन इंटरेस्टेड हो तो बता दूं 32 फुट 38 फुट और 45 फुट के लॉट्स पर यहाँ होम्स बनने को रेडी हैं जस्ट अंडर 1900 स्क्वायर फुट से स्टार्टिंग एंड ऑलमोस्ट अबाउट 3000 स्क्वायर फुट के साइजेस लो 1 मिलियन से प्राइजेस स्टार्ट हैं 3 बेडरूम साथ में 4 बेडरूम और ऑप्शनल डुअल मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं कांटेक्ट कर लें डिटेल्स के लिए बहुत फ्लेक्सिबल क्लोजिंग हैं 2027 के लिए अगर कोई भी भाई बहन इस एरिया में इंटरेस्टेड हो हमें कांटेक्ट कर लें लिमिटेड स्पेस है 1 प्रीमियम 45 फुट लॉट है 3 स्पेशियस 38 फुट लॉट है और 5 32 फुट के लॉट्स हैं क्लोजिंग जनवरी 2027 की है हमें कांटेक्ट कर लें सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी और साथ ही साथ मूव इन रेडी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई भाई बहन इंटरेस्टेड हो एनहांस्ड एचएसटी रिबेट विच इज नाउ इन इफेक्ट ये अपॉर्चुनिटी 3 बेडरूम 3 बाथरूम 1 पाउडर 1 कार गैराज की अवेलेबल है फॉर 906,000 रिबेट्स के साथ स्कार्बरो में ये टाउन्स हैं बहुत लिमिटेड नंबर बचे हुए हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं जीरो क्लोजिंग कॉस्ट के साथ क्विक क्लोजिंग अवेलेबल है इनमें बहुत ही एक्सलेंट बिल्डर, और एक और अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाह रहा हूं सनी जी, ब्रॉक यूनिवर्सिटी के बहुत नजदीक ये जबरदस्त कम्युनिटी डेवलप हुई है टाउन होम्स की, थरोल्ड ओंटारियो में, फ्री होल्ड 23 फुट के टाउन होम कलेक्शन है ये, टू स्टोरी वाले, फोर बेडरूम, 1800 स्क्वायर फुट से स्टार्टिंग है, मिड 500 से, एवरीथिंग यू नीड इज राइट अराउंड द कॉर्नर, प्राइम लोकेशन है, सराउंडेड बाय कन्वीनियंस, नेचर, एक्साइटमेंट, 5 मिनट की ड्राइव है टू ब्रॉक यूनिवर्सिटी, 8 मिनट की ड्राइव टू शॉर्ट हिल्स प्रोविंशियल पार्क, और 10 मिनट की ड्राइव टू पेन सेंटर शॉपिंग, नायग्रा ट्रांजिट रूट 3 मिनट की ड्राइव पर है, फिटनेस रिक्रिएशन 5 मिनट, रेस्टोरेंट्स, ईटरीज गलोर है वो वहां पर 5 मिनट की ड्राइव पर, बहुत ही एक्सलेंट लोकेशन, हमारी तरफ से भी एक स्पेशल पैकेज है, अगर आप थॉरल्ड के इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है हमें कॉन्टेक्ट कर लें, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, अगेन इट्स 5 मिनट्स टू ब्रॉक यूनिवर्सिटी, मिड 500 से ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून
8: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, 6478661086 राज जी का नंबर है, 6478661086, बहुत बहुत शुक्रिया,
9: थैंक यू जी,
8: थैंक यू जी, एंड क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, ब्रैम्पटन जॉर्जटाउन, दो लोकेशन से सर्व करते हैं, आई एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 डेज अ वीक, और याद रखें कि नेम ब्रांड सनग्लासेस अगर आपने लेने हैं समर के लिए, सो दे हैव लाइक सम ग्रेट डील्स। दूसरी तरफ एशियंस एक पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग और टेक्सटाइल स्टोर है नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवन्यू स्कारब्रो में, और 3601 लॉरेंस एवन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23 स्कारब्रो, और खासकर ये जाने जाते हैं फॉर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स, एशियंस 416-438-6568, 416-438-6568 इज द नंबर, और शादी ब्याह के लिए आपने शॉपिंग करना है और साड़ी लहंगे सूट्स लेने हैं ब्राइडल वेयर, तो एक बार एशियंस का चक्कर ज़रूर लगाए, मेजर इंटरसेक्शन जो है मार्कम रोड और लॉरेंस एवेन्यू का इलाका है, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट इन स्कारब्रो, एंड अमेजिंग डील्स आपको एशियंस पर मिलेगी, एक बार जाएंगे तो फिर बार बार आप जाएंगे, एंड अमेजिंग डील्स के लिए ज़रूर चेकआउट करें, एंड करण औजला की आवाज में तौबा तौबा बैड न्यूज़, ये फिल्म 2024 को रिलीज हुई थी और बड़ी जो गीत जो है बड़ा जबरदस्त चला है, फिल्म तो जो थी सो थी, एक कॉलर है उन्हें लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, आप ऑनर हैं प्लीज गो अहेड,
10: करण सर हाउ आर यू,
8: गुड गुड हाउ आर यू,
10: कैन यू प्ले वन सॉन्ग, आई एम अ श्रीलंकन, आई वांट टू लिसन वन हिंदी सॉन्ग, कैन यू प्ले प्लीज फॉर मी,
8: श्योर, व्हिच सॉन्ग,
10: तुम से कसम मेरी नींद के तुम,
8: राम तेरी गंगा मैली,
10: नो सिंह अमर हिंदी,
8: या सुन साहिबा सुन, आई गॉट द सॉन्ग, आई प्ले इट आफ्टर दिस सॉन्ग, आई प्ले योर सॉन्ग,
10: थैंक यू सर,
8: यस यस,
10: थैंक यू
8: थैंक यू थैंक यू, ठीक है चलिए, धुन धुन से आपने बता दिया कि क्या सुनना चाहते, नहीं अगर कई बार होता लैंग्वेज की पकड़ हो, बट स्टिल यू नो यू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, एंड चलिए पहले तौबा तौबा करण औजला की आवाज़ में, फिर आपकी रिक्वेस्ट, लिसनर की रिक्वेस्ट को करते हैं प्ले।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940. मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी. फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक. बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी. 647-863-1940, 647-863-1940.
1: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
4: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca.
5: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से. कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hain. Dr. Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hain, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.

0: Lifetime.
1: Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
2: Welcome back, friends. एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर एंड विन लाइफटाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं. और याद रखें दोस्तों, द फ्री सेमिनार आपके लिए स्पेसिफिकली ये डिजाइन किया गया है संडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30. आपने कॉल करके अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लेनी है. प्लीज डोंट वॉक इन. 905-206-1008. इस सेगमेंट को ध्यान से सुने. बाकी मोहम्मद साहब बताएंगे कि विन लाइफटाइम ट्रेडिंग पे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है. मोहम्मद साहब आपका स्वागत है.
3: थैंक यू सो मच सनी जी. हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून जी. जी सनी जी, पिछले 18 साल से एक ही काम है हमारा कि अपनी कम्युनिटी को लिफ्ट अप करें एक ऐसे स्किल के लिए, कि एक ऐसे स्किल की तरफ जो इस वक्त दुनिया में मोस्ट इफेक्टिव, फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू मेक मनी थ्रू इंटरनेट है. देखें, हर बंदा चाहता है कि वो इजी वे से पैसा कमाए. हर बंदा चाहता है कि उसकी लाइफ चेंज हो. देखें, अब दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, हर चीज अब ऑनलाइन हो रही है. अब जितने भी दुनिया के आप डिपार्टमेंट्स उठा लें तो हर जगह पे एआई काम कर रहे हैं. आप जरा ये सोचिए और समझें कि अगर आप सख्त तरीके से, हार्ड वे से पैसा नहीं कमा सकते तो स्मार्ट वे सीखे ना जी, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए जिसमें आपको कल की फिक्र ना हो. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि अपने टैलेंट को अपनी कमाई के लिए यूज करें और जो आपका टैलेंट है उसकी वर्थ का आपको आउटकम मिलना चाहिए, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में. और हर बंदा चाहता है कि बहुत कम वक्त में उसको ज्यादा से ज्यादा कमाई हो. देखिए, हम लोगों ने ना एज अ कम्युनिटी बल्कि ये सीखा हुआ है कि जो तीन चीजें हैं ना वो हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन है. और वो आज सब एग्री करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कंफर्ट जोन. और कंफर्ट जोन कहाँ के क्या है कि जहां पे लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो उसमें से निकलना नहीं चाहते एंड दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफ. और 80% लोग, याद रखिएगा, लिटरली वो रीजन ढूंढते हैं कि अपनी लाइफ ना चेंज करें. हम इवन के वहां पे चेंज सर्टन हो, इवन वो पॉजिटिव हो, उनके लिए बेनिफिशियल भी हो ना, तो सनी जी वो चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसमें बड़े खुश होते हैं.
2: बिल्कुल.
3: सेकेंड जो सबसे बड़ा उनका दुश्मन है वो है लर्न हेल्पलेसनेस, जो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग चेंज नहीं करना चाहते इसलिए कि हमने सीखा है कि हम कर ही नहीं सकते. ये इतनी बड़ी साइकोलॉजी है सनी जी कि ये लोगों को बहुत कम को समझ आती है. और लास्ट आता है कि जो लास्ट रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में आती है कि हम हमेशा एक रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे पास ये रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा तो नहीं, ये मेरे लिए नहीं है. देखें, एक हर दुनिया में जो काम है ना वो हार्ड वे से आता है और अपने फेलियर से बंदा सीखता है. और यहाँ पे जो लोगों को, जो मोस्टली लोगों को चीज स्टॉप करती है ना, वो है what I want, what they want. और याद रखिएगा, जिंदगी में there's no such thing as what I want. You always get what you are. देखें, आपने अपनी वर्थ का लेना है. आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो ना तो आपको फैक्ट्री वर्कर जैसा ही मिलेगा. आप वहां से निकलोगे, ऊपर जाओगे, सुपरवाइजर करते करते आप ऊपर जाते हो, आप जो हो उसका मिल रहा है. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आए आके एक दफा हमारा सेमिनार अटेंड कर लें और आप बिलीव करें, आप सोचेंगे कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया. देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं ना, तो बड़ी दफा कहते हैं जी हमने बहुत जी सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, लेकिन हमारी लाइफ नहीं चेंज हो रही. प्रॉब्लम बड़ा सोचने की नहीं है, प्रॉब्लम है उस पर एक्शन नहीं लेते.
2: Exactly.
3: और सेकंड चीज क्या है कि सब लोग सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, उसी पे खुश हो जाते हैं. आज हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि घर पे बैठ के आप दुनिया, बल्कि घर आपका दुनिया में कहीं पे हो, आपको किसी का वो यानी डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपने कंप्यूटर के सामने 90 मिनट बैठना है एंड यू आर मेकिंग 1.5 आवर जो पैसा बना रहे हो, जो लोग वीक्स में बल्कि महीने में बनाते हैं. देखें, स्विमिंग सीखना चाहते हैं ना, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, जब तक आप पानी में नहीं उतरते ना, उस वक्त आप नहीं सीख सकते. तो आए आके हमारा सेमिनार अटेंड करें. माइंड ब्लोइंग. अभी लास्ट हमारा प्रेजेंटेशन हुई है, लोग बाहर बैठे हुए, यानी हमारा पूरा हॉल फुल था, वो बाहर बैठे हुए, और जब फिनिश हुआ तो कहते हैं यार हमने अपनी जिंदगी के इतने साल वेस्ट कर दिए. तो अभी मैं सबसे कहूंगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कॉल करके अभी अपनी सीट बुक कर लें. यू विल गेट कि आपने जिंदगी में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देखी होगी जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. हमारा फोन नंबर है 905-206-1008 905-206-1008, या आप जाएं winlifetime.com पे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी.
2: एक्सलेंट. दोस्तों, मोहम्मद साहब ने बड़े ब्रीफ तरीके से समझाया है व्हाट एंड हाउ, बाकी पहला कदम आपने उठाना है. और ये इन इस जिस अनसर्टेन टाइम से हम गुजर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज वो एक ही बात होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. तो हम आमदनी को, इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जानने का आपको मौका मिलेगा. फ्री सेमिनार आपके लिए डिजाइन किया गया है, हर एक के लिए, हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30. प्लीज प्लीज कॉल एंड रिजर्व योर सीट, टेक योर फ्रेंड्स अलोंग, टेक योर स्पाउस अलोंग, और जितने आपके क्वेश्चंस है उसका जवाब देंगे विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पर मोहम्मद साहब और उनकी टीम. 905-206-1008 905-206-1008. मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया.
3: अप्रिशिएट.
2: थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. 905-206-1008. जी हाँ दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट थी, मूवी है राम तेरी गंगा वैली, वो गीत हमने लाइनअप कर दिया है लता जी की आवाज़ में. और एक बार फिर से बता दें, एशियंस एक पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग और टेक्सटाइल स्टोर है, मार्कम रोड और लॉरेंस एवेन्यू पर लोकेटेड है, स्कारब्रो में 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट यूनिट 23 इन स्कारब्रो. और ख़ासकर जहाँ पर ये वो सीज़न होते हैं, यहाँ पर हमारे नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें, जितनी शादी ब्याह होते हैं वो सारे इस सीज़न से ही शुरू होते हैं, अप्रैल मई से लेकर ऑल द वे गोइंग इनटू अक्टूबर नवंबर. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि एशियंस पर पहुंचिए. साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो है, जो नए कलर्स हैं कुर्ते पजामे के, वो सब पहुँच चुके हैं उनके पास. ज्वेलरी गिफ्ट आइटम्स हैं. एंड नंबर फॉर एशियंस इज़ 416-438-6568. आप पूरी की पूरी शॉपिंग एक छत तले कर सकते हैं. एशियंस नाम आपने याद रखना है, मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू के पास, 3601 लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो. अमेजिंग डील्स उनकी चल रही हैं, शो का रेफरेंस ज़रूर दें. चलिए गीत एंजॉय करिए, फिर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी भी होंगे हमारे साथ.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज, विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीतें. विजिट donvalleynorthhyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
0: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. Some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30-plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
3: सुनते हो, मेरे भरा दी अज फ्लाइट है इंडिया तो.
4: ओ याद है पर उन्हों कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लिया वे.
3: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खाल ले इंडिया दे सुपने ना देखो. choleBhature.ca ते चलो.
5: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो. choleBhature.ca. कॉल 9054582448.
0: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.
6: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पर, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड इन चिंकूसी इन ब्रैम्पटन. 905-450-2828 इज द नंबर. टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान, सुल्तान जी सुल्तानिक डील्स लेकर पहुंच चुके हैं. 7 days a week ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज ओपन 11 AM to 7 PM. BramptonAppliances.com पर जाकर भी आप अमेजिंग डील्स का फायदा बिल्कुल ले सकते हैं. पहले टीवी सेक्शन, द मोस्ट पॉपुलर सेक्शन ऑफ ऑल, उसकी जानकारी लेते हैं, कुछ अमेजिंग डील्स आप तक पहुंचाते हैं. सुल्तान जी आपका स्वागत है.
7: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: सुल्तान जी सबसे पहले टीवी सेक्शन की मोस्ट अमेजिंग डील्स ऑफ दिस मंथ हमारे लिसनर्स तक प्लीज पहुंचाइए.
7: सनी भाई ये तो ऐसी प्राइस है जो कहीं से नहीं मिलनी और ना दोबारा रिपीट होनी है. हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर की वजह से ही ये स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस जो है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे ऑफर की गई है, जिसमें सैमसंग का 85 इंच $1800 वाला था. इवन बॉक्सिंग डे के दिनों में भी 1699 का बेचा गया, लेकिन 85 इंच सैमसंग आपको इस वीक में मिल रहा है Only 999. सिर्फ 999 में. अगर कोई भी कस्टमर सैमसंग का 85 इंच लेना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है जी, बिग स्क्रीन पे स्पोर्ट्स देखने के शौकीन जो हैं या बिग स्क्रीन पे मूवीज देखने के जो शौकीन कस्टमर हैं, उनके लिए ये बेस्ट चांस है कि सैमसंग 999 में 85 इंच ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से लिया जा सकता है. 75 इंच सैमसंग चाहिए तो आपको मिलेगा ओनली 799 में. 55 इंच 399 में और 65 इंच 599 में लोएस्ट प्राइस गारंटी है. पिकअप करना है पिकअप कर लें, तब भी सिक्स मंथ में ही पे करेंगे. डिलीवर करवाना है डिलीवर करवा लें, तब भी सिक्स मंथ में ही पे करेंगे. और जब हम बिग स्क्रीन टीवी की बात करते हैं तो ये मिस ना करें कि 98 इंच सैमसंग भी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लाइंसेस पे अवेलेबल है और लोएस्ट प्राइस $3,500 से $1,999 में 98 इंच टीवी भी आपको मिल सकता है. सिक्स मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान पे फ्री होम डिलीवरी के साथ. सिर्फ इसके लिए आपको आना है जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लाइंसेस 905-450-2828 905-450-2828
0: जी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पर सुल्तान जी लेकर पहुंच चुके हैं द मोस्ट अमेजिंग डील्स. टीवी सेक्शन के बाद अप्लायंस लॉन्ड्री सेक्शन पर भी निगाह डालेंगे और चाहेंगे कि भाई आप सबसे अमेजिंग डील्स दें नॉट ओनली फॉर आर होम्स बट इवन फॉर रेंटल प्रॉपर्टीज.
7: बिल्कुल जी, डेफिनेटली लोएस्ट प्राइस गारंटी है. अमेजिंग प्राइसेस इस वीक में दी जा रही हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे, लेकिन ये वन शॉट डील है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जी अप्लायंसेस इंडस्ट्री में मैक्सिमम 15% या 25% का डिस्काउंट चलता है, लेकिन 40% तक का डिस्काउंट हम बंडल पैकेज पे लेके दे रहे हैं अपने कस्टमर को, जिसमें 40% की अगर हम बात करते हैं तो बिल्ट इन कुकटॉप, खास तौर पे कस्टम रेडी पैनल अगर आपने बनवाने हैं, कस्टम किचन आप तैयार करवा रहे हैं तो पैनल रेडी फ्रिज या पैनल रेडी डिशवाशर जो कि एक्सपेंसिव कंसिडर किए जाते हैं, हाई वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% डिस्काउंट पे आपको मिलेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से, जिसमें बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटरटॉप फ्रिज, कस्टम पैनल रेडी के साथ और स्टेनलेस स्टील पैनल के साथ आपको ये $12,000 का किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा. मोर देन 40% का डिस्काउंट है जो ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को जी. वेरी लिमिटेड टाइम है इसमें और बड़ी लो इन्वेंट्री है, लेकिन लोएस्ट प्राइस गारंटी है. 10% डिपॉजिट दे के आप डील लॉक कर सकते हैं. डिलीवरी डेट कोई भी सिलेक्ट की जा सकती है जी, इवन सिंगल सिंगल पीस भी चाहिए तो फुल साइज 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज ओनली लेना है $2,500 वाला, $1,699 में मिलेगा. स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव लेना है जी $1,300-$1,400 वाला, $799 में मिलेगा. सिंगल पीस डिशवॉशर चाहिए ये तो 40 से ज्यादा यानी 50% पे टॉल टब की स्टेनलेस स्टील की डिशवॉशर $1,000 वाली आधी प्राइस 50% डिस्काउंट पे $499 की मिलेगी. और जो भी आप परचेज करेंगे सिक्स मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है. लॉन्ड्री सेक्शन में भी आपको टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला सिर्फ $1,099 का पेयर मिलेगा, वॉशर ड्रायर दोनों $1,099 में. लार्ज कैपेसिटी टब है जी स्टेनलेस स्टील का और आपको $1,099 का वॉशर एंड ड्रायर का पेयर मिल रहा है फ्री होम डिलीवरी के साथ. सिक्स मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी. पहुंचना है आपको बोवेड एंड चिंकूजी पे या ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है जी ब्रैम्पटन अप्लायंसेस. हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं bramptonappliances.com 905-450-2828 हमारा नंबर है जी. स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर, वॉशर नीचे ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा, फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर स्टैकेबल $2,200 वाला $1,499 में मिलेगा. $700 आप सिर्फ वॉशर एंड ड्रायर पे सेव कर लेंगे बोवेट एंड चिंकूजी पे. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 905-450-2828. मिस ना करें, सैमसंग का 85 इंच $999 में मिल रहा है फ्री डिलीवरी के साथ, सिक्स मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान. टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,099 का पेयर मिल रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से. किचन का थ्री पीस किचन बंडल, फ्रिज स्टोव डिशवाशर $5,000 वाला $2,999 में मिल रहा है. $2,000 थ्री पीस किचन बंडल पे आप सेव करेंगे. सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक 7 डेज अ वीक स्टोर खुलता है जी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. 905-450-2828 905-450-2828
0: جی بہت بہت شکریہ سلطان جی
7: تھینک یو ویری مچ جی بہت شکریہ
0: جی 905-450-2828 برامٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز

0: Unlimited Radio on CMR 101.3 FM, Monday to Friday, 12 to 2 PM.
1: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 Clear Optical by Varun Kanda.
4: Real estate is not easy business. और जो easy नहीं, उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल. ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086 647-866-1086 Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है.
5: ये वो जगह है जहाँ हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है. ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट, धर्म संस्कृति और कला का सुमेल. 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन 905-458-6808.
6: He's breaking through the midfield.
7: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री.

20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूं, तो ये तेरा वहम है, वहम। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा, झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से बिल्कुल खुश नहीं हूं और तू नाच रहा है। भक्त बोला, भगवान आप खुश हो या नहीं ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूं और नाच रहा हूं कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं झूम के नाच रहा हूं। स्टे ब्लेस्ड लेडीज एंड जेंटलमैन।

जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन सीएमआर 101.3 एफएम। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: और दोस्तों नया हफ्ता शुरू हो चुका है, तो क्यों ना आज मंडे को बर्डन नहीं ब्लेसिंग की तरह ट्रीट किया जाए। हर हफ्ता हमें दो चॉइसेस देता है, या तो वही पुरानी सोच लेकर चलो या फिर एक नए एटीट्यूड के साथ खुद को सरप्राइज करो। तो दोस्तों आज खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, लेस स्ट्रेस एंड मोर प्रोग्रेस। आज का पॉजिटिव कोट कहता है, जो इंसान हर दिन को एक्साइटमेंट के साथ शुरू करता है उसकी आधी जीत वहीं पर तय हो जाती है। तो इस हफ्ते ओवरथिंकिंग कम, स्माइलिंग ज्यादा, कंप्लेनिंग कम, क्रिएटिंग ज्यादा। तो आइए आपको थोड़ा और एनर्जाइज करते हैं पॉजिटिविटी के साथ शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर। शुरुआत करते हैं एक और फील गुड, एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग सफर। गुड आफ्टरनून।
1: The sounds of the streets.

0: जी दोस्तों, मुकाबला होना चाहिए हमारी अपने आप के साथ। अपने आप को कल से थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करें। मुकाबला कभी भी दूसरों के साथ ना करें दोस्तों। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के साथ होना चाहिए, यानी जो हम कल थे उससे आज बेहतर हो जाएं। और अगर हम ये करते रहते हैं ना, तो हमें वक्त के साथ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता रहता है। और दोस्तों, हम तो आर्टिस्ट हैं। कहते हैं जो एक आर्टिस्ट होता है कभी भी परफेक्ट नहीं होता। हम हमेशा इवॉल्व करते हैं, हम हमेशा कल से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि हमें अपने आप को बहुत बहुत बहुत सुधारना चाहिए। रादर देन चेंजिंग द वर्ल्ड, वी शुड ट्राई टू चेंज आवर सेल्व्स। और दोस्तों, इवन आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, मुझे रोजाना ऐसा लगता है जैसे मानो कि आज ये है मेरा पहला शो। और इतने डेडिकेशन के साथ आप तक प्रेजेंट करने का दिल करता है कि बस आपको लगे कि आप जब हमारे शो पर हैं हमारे साथ, तो आपका एक एक मिनट और एक एक सेकंड बहुत ही ऑप्टिमली इस्तेमाल हो और आपको भरपूर एंटरटेनमेंट दिया जाए मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। और दोस्तों, आज है मंडे, मई 11 तारीख, और ये जो मदर्स डे वीकेंड था, आई होप आप लोगों का वीकेंड अच्छे से गुजरा हो। और आई होप कि आपने अपनी मॉम्स को बहुत ज़्यादा प्रेशियस महसूस कराया हो और पूरी तरह से रिजुविनेट होकर आप आ चुके हैं वापस अपनी जिंदगी को फेस करने के लिए। और एक और खूबसूरत सा जो हफ्ता है वो आपकी नजर करने के लिए हम हैं तैयार। तो आज के शो में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी डील्स होंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारी खबरें होंगी। लेकिन सबसे पहले आज का मौसम आपको बता दें। पार्टली क्लाउडी स्काई है, 11 डिग्री सेंटीग्रेड, फील्स लाइक 8 डिग्रीज, और आज का हाइएस्ट +12 डिग्री जा सकता है दोपहर के 3 बजे, एंड ओवरनाइट लो जा सकता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपको महसूस हो सकता है 0 डिग्री। और गेस व्हाट, रात के 12 बजे जो है आप महसूस करेंगे माइनस में टेम्परेचर। जब तक ऑफिशियली समर नहीं आ जाते, मुझे लगता है तब तक माइनस प्लस का चक्कर चलता रहेगा। कल सुबह 4 बजे आप महसूस करेंगे -4 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स राइट। और फिर यू नो, बिफोर द समर स्टार्ट, थोड़ी सी हम सर्दी की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट फ्यू डेज। सिंगल डिजिट्स में टेम्परेचर और डबल डिजिट्स में भी होंगे, बट जो यूजुअल जो टेम्परेचर होता है इस वक्त का, उससे टेम्परेचर थोड़े कम रहने के आसार हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। बट टुडे इट्स अ ग्रेट डे टू हेड आउट, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी शालिनी के साथ। अगर आप कोई गाना किसी को डेडिकेट करना चाहें, कोई मैसेज किसी तक पहुंचाना चाहें, देन डू गिव अस अ कॉल ड्यूरिंग द शो ऑन द स्टूडियो नंबर 4165930055, या सीधे आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 4165697812, 4165697812 पर। छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, वापस लौटते हैं और खोलते हैं बॉलीवुड कैलेंडर का पहला पन्ना मस्ती की रेलगाड़ी पर। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200. 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga. CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स?
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
2: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल। वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली, स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर, अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar Aaye Hain. First time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: Jamming as much variety into your workday as possible.
3: Radio Resync complete.
4: Hit music.
5: Hit after hot hit.
6: This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant.
7: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर आपका स्वागत है। सीएमआर एफएम 101.3 और खुलते हैं बॉलीवुड के कुछ पन्ने, और आज बात करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की जो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि बोल्ड, कॉन्फिडेंट और आउटस्पोकन स्टाइल के लिए जानी जाती है। 90s के एरा में अपनी अलग पहचान बनाने वाली ग्लैमरस और फियरलेस पूजा बेदी, जी हाँ, उनका बर्थडे है, कबीर बेदी की डॉटर हैं, और ये उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिन्होंने अपने टाइम में बोल्ड चॉइसेस और बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से अपनी अलग पहचान बनाई थी। और ये हम लोग सभी जानते हैं कि वो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि टेलीविजन शोज, टॉक शोज और रियलिटी शोज में भी अपनी प्रेजेंस से काफ़ी छा गए। तो हालांकि फिल्मों में इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जो भी किया है वो लोगों ने याद रखा है। तो आपको लिए चलते हैं जो जीता वही सिकंदर की तरफ, जहां पर इनका जो ग्लैमरस रोल है वो आज भी याद किया जाता है। और 90s में एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इन्होंने ऐड किया था जिससे उन्हें ओवरनाइट हेडलाइंस में ला दिया, और एक्टिंग टैलेंट उनकी फैमिली में ही है, और जो रियलिटी शो बिग बॉस है उसका भी हिस्सा रह चुकी हैं, और वहाँ भी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखी। सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं और अपनी जो ओपिनियन है वो ओपनली शेयर करती हैं, तो हमेशा से ही अपने थॉट्स को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए बहुत जानी जाती हैं पूजा बेदी, और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो ऐसी अलग पहचान को डेडिकेट करते हैं आज का अगला गाना, यहाँ के हम सिकंदर, फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर।

0: यहाँ के हम सिकंदर, यह सुपर हिट गाना आपकी नजर की आज शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन सीएमआर एफएम 101.3। अ वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू हमारी तरफ से, और आज की जर्नी में हमारा साथ देने का बेहद बेहद शुक्रिया। और दोस्तों आज का दिन ऐसा है कि एक बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक मदर्स डे वीकेंड के बाद और अगला वीकेंड जो है लॉन्ग वीकेंड है, तो ये बहुत ही मज़ेदार वीकेंड है। ये वाला वीक जो है बड़ा मज़ेदार है। अभी मदर्स डे निकला है, उसके बाद आगे लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी समा का पहला लॉन्ग वीकेंड एंड एवरी वन इज सुपर एक्साइटेड कि ये वीकेंड में क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग करिए। तो अगर आपकी कोई इस तरह की प्लानिंग है तो हमारे साथ भी शेयर करें। वी वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू कि कमिंग वीकेंड में आप क्या क्या करना चाहते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप जाना चाहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। डू शेयर इट विद अस ऑन आवर शो। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है मेरे जहन में आया है, और उस टॉपिक के हवाले से मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। तो लाइन्स हम खोलेंगे और आप लोगों का पार्टिसिपेशन हमें चाहिए रोजाना की तरह आज भी। क्या होता है दोस्तों, जब वीकेंड्स होते हैं ख़ास तौर पर, तो हम दूसरों के घर जाते हैं खाने पीने मौज मस्ती के लिए, पार्टीज़ में कभी कभी लोग हमारे घर आते हैं। तो जब आप होस्ट कर रहे होते हैं कोई भी पार्टी और आपके घर गेस्ट आते हैं, तो उनकी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अनोइंग लगती है, जो वो जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं जब गेस्ट आपके घर आते हैं? तो कौन सी वो एक चीज़ है जो आप कहते हैं, सोचते हैं कि यार बीइंग अ गेस्ट यू शुडन्ट डू दैट। गेस्ट के तौर पर जब आप किसी के घर आते हैं तो एटलीस्ट ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन सी एक चीज़ है जो आपको अनॉय करती है आपके गेस्ट्स के हवाले से, तो हमारे साथ शेयर करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और शायद इससे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले कि अगली बार जब हम गेस्ट बनकर किसी के घर जाएं तो वो काम ना करें। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी डैम इंटरेस्टिंग एंड लेट्स हियर इट फ्रॉम यू कि क्या आप सोचते हैं इसके बारे में और आपका क्या ओपिनियन है, जरूर हमारे साथ शेयर करें ऑन एयर। 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर, दैट्स 416-593-0055। और यहाँ पर अगर आप एंटरटेन करना चाहते हैं अपने अपनों को अपने घर पर, अपने ऑफिसेज में, तो अच्छी अच्छी विंडोज़ एंड डोर्स आप ज़रूर लगवा लीजिए। एक तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ब्यूटिफाई होती है, उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, इंस्टॉलेशन हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी होती है। अगर आपने सॉलिड विंडोज़ एंड डोर्स लगवा लिए तो सिक्योर्ड भी हो जाती है आपकी प्रॉपर्टी और स्टाइलिश भी लगता है, सब कुछ अमेजिंग हो जाता है। एनर्जी एफिशिएंसी, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। इतना होने के बाद अगर वो चीज़ आपकी बजट में फिट हो जाए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की चीज़ हो और ऐसी चीज़ जो पूरे ओंटारियो में नंबर वन हो, इस तरह की सर्विसेज हो, तो आपको जाना होगा यश विंडोज एंड डोर्स। अनमैच्ड क्वालिटी होगी और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करेगी। तो यश विंडोज एंड डोर्स से जरूर बात करें, धर्म जी से बात करें। और आप अगर बिजनेस खोलना चाहते हैं, दे हैव फ्रेंचाइज ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल, तो कॉल कीजिएगा 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600। और आज के देओल ट्रैवल के लेटेस्ट लेटेस्ट डील्स आ चुके हैं दोस्तों, और लेटेस्ट डील्स कुछ इस तरह से हैं कि टोरंटो से दिल्ली या मुंबई आप चले जाइए इस महीने में वन वे ओनली एंड ओनली फॉर $820। नाउ टोरंटो से अमृतसर वन वे इस महीने में $960 दो बैग्स के साथ। इसके अलावा दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप लगा हुआ है $1,490, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं इस प्राइस की। और टोरंटो से बेंगलुरु सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप लगा हुआ है $1,340 में दो बैग्स के साथ। इसके अलावा टोरंटो से अमृतसर या टोरंटो से दिल्ली आप जा सकते हैं, सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप है और लिमिटेड टाइम ऑफर है दो बैग्स के साथ $1,590। दो लोकेशन से सर्व करते हैं इटोबिको एंड ब्रैम्पटन देओल ट्रैवल, 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200। आप रहिएगा मेरे अनीश शालिनी के साथ ऑन CMR FM 101.3 मस्ती की रेलगाड़ी। कुछ पुराने दौर की तरफ चलेंगे और बहुत प्यारा सा गाना है एक, जो आज के क्लासिक सॉन्ग्स के सेगमेंट में हम इंक्लूड करेंगे आफ्टर अ वेरी टाइनी सा छोटा सा ब्रेक। और हेडलाइंस होंगी 2:30 बजे, जहां पर हम लोकल हेडलाइंस भी लेंगे और इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड की हेडलाइंस लेंगे। टॉप ऑफ द आवर 3:00 वील हैव अ डिटेल न्यूज बुलेटिन, जहां पर इंडिया की खबरें होंगी, इंटरनेशनल खबरें होंगी। तो बहुत कुछ है हमारे शो में। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812 416-569-7812। गुड आफ्टरनून, आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया। न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157. That's 416-570-0157.
1: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। तो पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन उनकी सत्ता पर पकड़ उनके पिता अली खामेनेई जैसी मजबूत नहीं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भाई आखिर नहीं माने, बीजेपी में हुए शामिल। और राजस्थान में शुरू हुआ है बकरी बैंक।
2: और अब नजर डालते हैं आज की टॉप लोकल खबरों की तरफ। ब्रैम्पटन और मिसिसागा में हुए बैंक और आइडेंटिटी फ्रॉड रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। पील रीजनल पुलिस के अनुसार 43 साल के डोनेटो पेंटो और उनकी 43 साल की पत्नी न्यूजा तावारेस को 6 मई को अरेस्ट किया गया है। और पुलिस का कहना है कि दोनों ने फेक आईडीज जैसे बर्थ सर्टिफिकेट्स, क्रेडिट कार्ड्स, ओंटारियो ड्राइवर लाइसेंसेस और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके पर्सनल और बिजनेस बैंक अकाउंट्स खोले हैं। और ये दोनों जो पति हैं वो लेजिटिमेट बैंक का क्लाइंट बनकर अकाउंट्स को एक्टिवेट करता था, डेबिट कार्ड्स हासिल करता था और अलग अलग ब्रांचेस से कैश विड्रॉ करता था। और इनकी जो पत्नी है वो अलेजिडली चोरी की गई रकम जो 86,000 से ज्यादा है अपने पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करती थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद फ्रॉड पकड़ा गया और सभी विक्टिम्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने फुल रीएम्बर्समेंट दे दिया है। उधर ओंटारियो के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी केयर का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। कनेडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में 90% पेशेंट्स को डॉक्टर के इनिशियल असेसमेंट के लिए 4.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ओंटारियो गवर्नमेंट हेल्थ केयर एक्सेस इम्प्रूव करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। जुलाई से फार्मासिस्ट अब टेटनस, वॉपिंग कॉफ, डायफेरिया, आरएसवी, शिंगल्स जैसी वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर कर सकेंगे। टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मल्टी बिलियन डॉलर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू हो चुका है और ये प्रोजेक्ट रोजाना 28,000 से 30,000 तक एडिशनल पैसेंजर्स हैंडल करने की कैपेसिटी रख सकेगा। टोरंटो डाउनटाउन के यंग और कार्लटन एरिया में सीनियर रेसिडेंस में लगी आग में एक व्यक्ति की मौत हुई है। फायर फाइटर्स ने आग को कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि यूनिट में वर्किंग स्मोक डिटेक्टर्स थे या नहीं। इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब जब यूएस रिसर्च फंडिंग कट कर रहा है, कनाडा इस मौके को अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क के कनाडा लीड्स प्रोग्राम के तहत 100 इंटरनेशनल साइंटिस्ट को रिक्रूट करने का लक्ष्य रखा गया है। फेडरल गवर्नमेंट ने इसके लिए 1.7 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग एलोकेट की है ताकि कनाडा ग्लोबल रिसर्च हब बन सके। उधर ओंटारियो में हेंटा वायरस का कंसर्न बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ मिनिस्टर सिल्विया जोन्स ने कंफर्म किया है कि अब 3 रेसिडेंट्स मॉनिटरिंग में हैं, जिनमें से एक पील रीजन से है। क्रूज स्ट्रिप आउटब्रेक में अब तक 8 केसेस और 3 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो वायरस है वो पर्सन टू पर्सन इजिली स्प्रेड नहीं होता, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 हफ्ते का हो सकता है, इसीलिए मॉनिटरिंग जारी है। और अब अंत में वेदर अपडेट। टोरंटो में आज का मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा, हाई करीबन 13 डिग्रीज, और ओवरनाइट लो 2 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। फ्रॉस्ट एडवाइजरी जारी की गई है, प्लांट्स को कवर करने की भी सलाह दी गई है। वेंसडे से वार्मिंग शुरू हो जाएगी और थर्सडे से संडे तक 17 डिग्री से बढ़कर टेम्परेचर 22 डिग्रीज तक पहुंचने की है संभावना। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157. That's 416-570-0157. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
4: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
5: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: क्या आप अपने घर में लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन करवाने की सोच रहे हैं? तो भरोसा करें KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर। सेपरेट साइड एंट्रेंस, मॉडर्न वॉशरूम, प्रीमियम फ्लोरिंग, कस्टम किचन्स, फुल होम रेनोवेशन, पेंटिंग और विंडो अपग्रेड्स, हर काम प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग, कॉन्क्रीट इंटरलॉकिंग और बहुत कुछ एक ही ट्रस्टेड नाम। घर हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट, KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप आपकी पहली पसंद। कॉल मन्नत कंकवाल 6479665681, 6479665681।
2: वीरे, वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
3: भाई, चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस इसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
4: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
3: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसी सागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
4: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810, Middah Furniture.
5: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
6: Aap rishte ko chalana chahte hain ya phir ghar basana chahte hain, lena hai koi bahut bada faisla ya karna hai karobar, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023, it's 437-829-6023, Master Dhanik Maharaj.
7: Sean Express, the musical, say it loud.
1: This segment is sponsored by Win Lifetime. क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो विन लाइफटाइम लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना। फ्री सेमिनार है एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा। सीट्स हैं लिमिटेड, सीखना है अनलिमिटेड। बुक योर फ्री सीट नाउ 905-206-1008, 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। वेलकम बैक दोस्तों, आपका शालिनी फिर से वेलकम करती है मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3। और अब हम चैप्टर 2 खोलते हैं बॉलीवुड कैलेंडर का, और आपको बताते हैं कि अब कौन सी एक्ट्रेस हैं दूसरी जिनका आज है बर्थडे। उससे पहले मैं अनाउंस कर दूं फिर से, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि जब आप अपने यहाँ पर कोई पार्टी होस्ट करते हैं और जब आपके घर गेस्ट आते हैं पार्टी को अटेंड करने के लिए, गेट टुगेदर अटेंड करने के लिए, तो उनकी कौन सी वो एक बात है जो आपको अनॉय करती है और आप नहीं चाहते आपके गेस्ट वो चीज़ करें। पोलाइटली आप वो बात हमारे साथ कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम किसी के घर गेस्ट बन के जाएं तो वो गलतियां ना करें। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि वो कौन सी एक चीज़ है जो आप बिल्कुल ना पसंद करते हैं जब आपके घर आपके गेस्ट आते हैं, तो उनकी कौन सी आदत आपको इरिटेट करती है और आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए हमारे गेस्ट को, राइट? सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और आप जरूर हमारे साथ ज्वाइन करें. किसी का नाम लिए बगैर आप ये बात कह सकते हैं. आपको कोई भी गेस्ट का नाम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप इन जनरल बात कर सकते हैं. 416-593-0055 और आज भी रैंडमली हम एक विनर निकालेंगे जिन्हें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी की तरफ से $100 का गिफ्ट दिया जाएगा. बिफोर एंड ऑफ द शो हम विनर का नाम अनाउंस करेंगे. ऑलराइट, अब साथ साथ बता दें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी के बारे में, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर है कैनेडा वाइड. घर या बिजनेस के लिए आप पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग ले सकते हैं और फ्री बारबेक्यू है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड. टॉप क्वालिटी मटेरियल, स्टाइलिश डिजाइन, कंपेटिटिव प्राइसिंग है. हर सोल्यूशन मिलता है प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ. 24 वीगन रोड ब्रैम्पटन पर जाएं, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी. 416-831-4790 416-831-4790. और आज ये जो सेगमेंट है स्पॉन्सर कर रहे हैं कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी की. आपसे मैंने पूछा है एक सवाल, जब आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो कौन सी उनकी एक आदत है जो आपको अनॉय करती है. टॉक टू अस ऑन एयर 416-593-0055. और बर्थडे की बात करें तो आज किसका बर्थडे है, कौन सी और एक्ट्रेस है जिनका बर्थडे है. एक ऐसी एक्ट्रेस जो हमेशा डिफरेंट रोल्स और ऑफ बीट सिनेमा के लिए जानी जाती हैं, मेन स्ट्रीम से हटकर अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने वाली टैलेंटेड और एक्सपेरिमेंटल अंतरा माली, उनका बर्थडे है. और इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली अनकन्वेंशनल फिल्म्स के साथ और हमेशा ऐसे रोल किए जो नॉर्मली ज़रा हट के थे, बोल्ड थे और दूसरों से ज़रा हट कर थे. और इनकी जो एक्टिंग स्टाइल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रॉ और रियलिस्टिक मानी जाती है. आइकॉनिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है जैसे कंपनी, रोड, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, राइट, दैट वाज द नेम ऑफ द मूवी. और कंपनी की बात करें तो इसमें उनका जो रोल था बड़ा इंटेंस था. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मैं उनका जो ड्रीम चेजिंग कैरेक्टर था, दोनों रोल्स बड़े पावरफुल थे. और अब ये भी बता दें कि इनके जो डैड हैं वो जगदीश माली, उनका नाम है, रेनाउंड फोटोग्राफर है बॉलीवुड में. बॉलीवुड के साथ साथ इन्होंने आर्ट सिनेमा में काम किया, एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में काम किया और राम गोपाल वर्मा के साथ उनकी कई फिल्में आई हैं और उन्हें अलग पहचान दी इन्होंने. तो फिलहाल आपको लिए चलते हैं फिल्म कंपनी के इस गाने की तरफ, खलास, और इसमें संदीप चावटा का म्यूजिक है और ये बहुत प्यारा सा गाना आपकी नजर करेंगे. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3. आवाजें हैं आशा भोसले, सुदेश भोसले, सपना अवस्थी की. एंजॉय कीजिए मस्ती की रेलगाड़ी पर.

0: लास और बहुत अमेजिंग सा गाना आपकी नजर किया फ्रॉम द मूवी कंपनी. और राजू आपका कॉल आया और आपने कहा कि ये गाना पता नहीं कितने अरसों के बाद आपने सुना है और आपको पसंद आया, तो हमें ये बताने का बेहद शुक्रिया. अच्छा लगता है जब हमारी आवाज में आपकी आवाज मिलती है. तो चलिए दोस्तों, मैंने जो सवाल पूछा था दैट स्टिल स्टैंड्स द सेम कि आपके घर जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनकी कौन सी एक आदत है जो आपको अनॉय करती है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती. लेट्स टेक इट हेड ऑन. आई नो आप लोगों को कुछ लोगों के मैसेज आए हैं और लेकिन वो ऑन एयर नहीं कहना चाहते, बट दैट्स ओके. इफ यू डोंट वॉन्ट टू से डोंट से इट, लेकिन एट द सेम टाइम आप जनरलाइज कर सकते हैं उस चीज को. किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. जब कुछ चीजें हम सुनते हैं, कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं, राइट? तो जब हमें सामने वाले की फीलिंग पता होती है तो इट्स गुड टू नो अबाउट अदर फीलिंग्स एज वेल, क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने में हम इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं जो दूसरों को नहीं पसंद आती. सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो बिफोर हैंड सो दैट वी कैन मेंड आवर सेल्व्स बिफोर वी गेट इन टू एनी सिचुएशन दैट इज़ नॉट गुड. राइट, तो यही आपसे पूछने का मेरा मकसद था. तो आज भी रैंडमली एक विनर निकालेंगे और कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी की तरफ से $100 का गिफ्ट जो है स्पॉन्सर किया जा रहा है. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. लेट्स हियर इट फ्रॉम यू कि कौन सी एक आदत आपको अपने मेहमानों की पसंद नहीं आती जब वो आपके घर आते हैं, तो आपके खाने पर किसी पार्टी में. 416-593-0055. चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ. जैसे आपके घर कोई मेहमान आते हैं, आपने बहुत सारा खाना बनाया, बहुत कुछ किया, और उन्होंने ये ही नहीं कहा कि खाना बड़ा अच्छा है, या कोई भी चीज़ आपने उनके लिए ऑर्गेनाइज की उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया. दिस मे बी वन ऑफ द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर गेस्ट. तो इसीलिए जब आप किसी के घर जाएं तो एटलीस्ट उनकी जो भी वो करते हैं आपके लिए, जो भी जेस्चर्स होते हैं, उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें. आई थिंक ये वार्मथ होती है. भले ही आपको नहीं भी पसंद आया सब कुछ, लेकिन किसी ने कोशिश तो करी है. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो हम ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं जब हमारे साथ कोई आए, और वैसे ही हम भी बिहेव करने की हमें भी कोशिश करनी चाहिए व्हेन वी गो आउट. सो दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स, वन ऑफ दोज मिलियंस ऑफ थिंग्स जो आपको नाखुश करती हैं जब आपके पास कोई आता है तो आपके घर आता है. सो दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन वाज. 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर, 416-593-0055. और अब बात करते हैं आज के अगले सेगमेंट के बारे में, आज का दिन. ऑल राइट, मई 11 है आज की तारीख, और किस किस खास दिनों के नाम है आज का दिन ये आपको बता दें. आज का दिन है फन हेल्थ अवेयरनेस का परफेक्ट कॉम्बो. आपको बताते हैं आज के दिन में क्या खास हो रहा है. पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनसे कि क्या कहना है उनका. गुड आफ्टरनून जी, हु इज दिस? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला है और हम सभी को टिंग टोंग सुनाई दे रहा है. जी वेलकम, हु इज दिस?
1: हाँ जी, मैं अख्तर बात कर रहा हूँ जी. देखिए, मेहमान जो होते हैं ना वो काबिले एहतराम होते हैं, उन्हें वेलकम करना चाहिए, अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब ऑल ऑफ सडन एक कॉल आती है आपको और आप कहती हैं, आप एकदम वो कहते हैं मेहमान के जी हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो अपना हम मिलना चाहते हैं आपको, तो उस वक्त ये तकलीफ दे मरला होता है कि मेहमानों को ये नहीं पता होता कि क्या वो घर पे हैं, क्या वो अपना बिजी हैं इस वक्त, या कोई उनकी और मसरूफियत है. बस ये चीज मैंने शेयर करनी थी आपसे.
0: क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे ना वो अमिताभ बच्चन की फिल्म याद आ रही है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और बीच में आपका घर आ गया. राइट, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि भाई आप किसी के घर जा रहे हैं तो पूछ के जाएं, उसकी भी मसरूफियत हो सकती है. दैट पर्सन कुड बी बिजी डूइंग समथिंग, और वो पर्सन भी आपको अच्छे से एंटरटेन करना चाहता है. यू नो वी ऑल लव टू वेलकम द गेस्ट, लेकिन हम एक प्रॉपर माइंड सेट पे होने चाहिए, इजंट इट? वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग. अख्तर साहब थैंक यू सो मच आपके कॉल का, शुक्रिया. जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए देखते हैं और कौन है हमारे साथ. गुड आफ्टरनून.
2: हेलो
0: जी, वेलकम, हु इज दिस?
2: या माय नेम इज विशाल।
0: जी विशाल जी, बताइए क्या कहना है आपका हमारे टॉपिक के बारे में?
2: गेस्ट, काफी गेस्ट है ना, उसको स्मोकिंग हैबिट्स है, तो कभी वो साथ में बैठते हैं तो बड़ी मतलब स्मेल आती है, वो चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि और कभी कभी कार में भी जाते हैं ना, तो मेरे काफी फ्रेंड, मैं नहीं करता स्मोक और मेरी वाइफ भी नहीं, बट काफी ऐसे फ्रेंड्स है उसको मतलब बड़ी स्मोकिंग की हैबिट्स है, उसको कभी मिलने आए घर पे, और कभी घर पे भी रुकना है तो बार बार हर दो घंटे के एक घंटे के बाद स्मोक कर ले जाते हैं और पूरा घर बेड स्मेल कर देते हैं, तो वो चीज पसंद नहीं आती।
0: बिल्कुल अच्छा। और जब बाहर जाते हैं, जैसे सर्दी का वक्त है तो बाहर जाते हैं अपनी जैकेट्स लेकर जाते हैं, तो एक्चुअली जो

0: भी मेरे घर आ जाता है, फिर हम साथ में घूमने जाते हैं, बट वो गाड़ी में बैठा है मतलब पूरी पैसे स्मोक हम कर रहे हैं, मतलब होता है।
1: That's right. I understand. बिल्कुल बहुत अनोइंग हो जाता है, बट थैंक यू सो मच विशाल जी, आई रियली अप्रिशिएट। एंड यू नो आई नो स्मोकिंग बहुत लोग छोड़ने की भी कोशिश करते हैं, हमारे साथ भी एक कॉलर आए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने भी कहा कि छोड़ने की कोशिश करें। आई नो ये कैसी चीज़ है, आपको खुद को तो नुकसान होता है बट अनफॉर्चुनेटली सामने वाले को भी सेकेंड हैंड स्मोकिंग से नुकसान पड़ सकता है, और छोटे बच्चे भी होते हैं घर में तो उनको भी नुकसान हो सकता है। सो बस आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट इट सो वी गेट मोर मोटिवेटेड टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप इन आवर लाइफ टू मेक इट बेटर। सो थैंक यू सो मच मिशाल जी, अप्रिशिएट योर कॉल, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे हम शो के दौरान, 4 बजे तक आप लोग कॉल कर सकते हैं स्टूडियो वेन एवर यू कैन, एंड हम आपसे बात करेंगे और आपकी राय जानेंगे कौन सी एक चीज़ है आपकी मेहमानों के बारे में जब वो आपके घर आते हैं जो आपको अनॉय करती है। टॉक टू अस 416-593-0055। तो हम बात कर रहे थे आज के दिन के बारे में कि आज के दिन में क्या खास होने जा रहा है। सबसे पहले नेशनल ईट वॉट यू वॉन्ट डे, और मुझे लगता है शायद फ्राइडे को भी ऐसा ही कुछ दिन था कि बर्गर खा लो, पैटीज खा लो, यू नो फ्रेंच फ्राइज खा लो, जस्ट ईट वट एवर यू वॉन्ट, समटाइम्स यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ। सो टूडे इज नेशनल ईट वॉट यू वॉन्ट डे, तो गिल्ट फ्री खाने का दिन है। थोड़ा सा अपनी डाइट को ब्रेक दीजिए और अपने फेवरेट फूड का मजा लीजिए, बिकॉज समटाइम्स हैप्पीनेस कम्स ऑन अ प्लेट। क्यों, खुशी का रास्ता पेट से होकर गुजरता है ना, तो पेट हो चाहे प्लेट हो अच्छी होनी चाहिए। वेल, दूसरी बात, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है आज, तो टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया है दोस्तों, स्मार्टफोन से लेकर AI तक, वी स्टे अपडेटेड, वी स्टे कनेक्टेड विद मिलियंस ऑफ पीपल एवरी सिंगल डे। तो टेक्नोलॉजी को सल्यूट करने का दिन है, और आज अभी मदर्स डे निकला है तो आज जो है नेशनल वुमेन्स चेकअप डे है। दोस्तों अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, रेगुलर चेकअप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, हमें लगता है कि हम सेल्फ केयर करते हैं तो हम सेल्फिश हो रहे हैं, नो दिस इज नेसेसरी। इसके अलावा वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे है, यानी अपने ईगो को पहचानने का और अपने ईगो को कंट्रोल करने का दिन है। कभी कभी सॉरी बोल देना या ईगो छोड़कर यू नो किसी को थैंक यू कर देना बड़े से बड़े रिश्तों को बिगड़ने से बचा सकता है, या मैं ये कहूँ कि बड़े बड़े रिश्तों को बना सकता है। सो लेस ईगो मोर पीस, ये आज के दिन का मोटो है। सो फूड, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और सेल्फ अवेयरनेस का परफेक्ट कॉन्डो है आज का दिन। सेलिब्रेट करते हैं साथ मिलकर मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। आप हैं मेरे यानी शालिनी के साथ। चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ, शिफाली हमारे साथ जुड़ने लगी हैं दुनिया भर की खबरें लेकर। और आपको बता दें कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अगर आपको ज़रूरत है अगेंस्ट द पेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, तो वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल का नंबर आप जरूर नोट कर लें, लाइसेंस्ड एंड इंश्योर्ड है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है, अपने घर और बिजनेस को रख सकते हैं आप सेफ एंड पेस्ट फ्री। आयान काशिफ जी से आज ही बात करें, 6479664355 6479664355। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ शॉन एक्सप्रेस पर।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय विन लाइफटाइम। क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो विन लाइफटाइम लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना, फ्री सेमिनार एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा, लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। कॉल 905-206-1008 और विजिट winlifetime.com। मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वैग और साउथ का तड़का, फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26। एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड

0: entrance, residential and commercial asphalt paving, resurfacing, concrete, interlocking, and much more. Call 647-766-4335. 647-766-4335.
1: जाने क्यों चांद ठहर जाता है चलते चलते और उस घर पे जो एक उम्र से आबाद नहीं। इन्हीं अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। हंता वायरस के संपर्क में आए 17 अमेरिकी यात्रियों को अमेरिका के नेब्रास्का मेडिकल सेंटर लाया गया है। यहाँ उन्हें 42 दिनों तक निगरानी और क्वारंटीन में रखा जाएगा। अमरीकी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन सभी यात्रियों को अमरीकी सरकार के स्पेशल विमान से वापस लाया गया। ये सभी यात्री MV हॉन्डियस नाम की उस क्रूज शिप से लौटे हैं जहां वायरस के मामले सामने आए थे। ये जहाज स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में रुका था। इसके बाद एक यात्री में हंता वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई जबकि दूसरे में हल्के लक्षण पाए गए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन उनकी सत्ता पर पकड़ उनके पिता अली खामेनेई जैसी मजबूत नहीं है। CBS न्यूज के शो 60 मिनट्स को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि मुज्तबा किसी बंकर या गुप्त जगह पर छिपे हुए हैं और वहीं से सत्ता संभालने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान इस समय 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे कमजोर दौर में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान पर खेल खेलने का आरोप लगाया था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी खबरें।
0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजा हट .com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, विन लाइफ टाइम का सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे विन लाइफ टाइम से बहुत ही रेनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी। राफी जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच राफी जी, और हमारे तमाम लिसनर्स पहुंचे आपके सेमिनार में दिस सैटरडे एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड आफ्टर मीटिंग यू। उन्हें लगता है जितने सवाल पूछे उससे ज्यादा सवालों के जवाब मिले उनको, और काफी लंबा चला आपका सेमिनार इस वीकेंड, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से?
2: जी एब्सोल्युटली, बोथ ऑफिसेज वर फिल्ड, काफी स्टूडेंट्स आए, काफी न्यू थे जिनके ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता था। तो ऑफकोर्स हमारे ये इंफॉर्मेशन सेशन होता है, हम ऑफकोर्स नो ऑब्लिगेशन है, नो कॉस्ट है। अगर किसी ने कुछ हासिल ना किया हो तो एटलीस्ट कुछ टेक्निकल नॉलेज या कुछ एटलीस्ट फाइनेंस का नॉलेज जरूर लेके गए होंगे।
1: क्या बात है। तो राफी जी, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारे लिसनर्स जिनको बिल्कुल नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, उन्हें ज़रूर बताएं कि ये डे ट्रेडिंग क्या होती है, कितना वक्त देना पड़ता है, कितना इसके लिए नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, फंड्स चाहिए, एंड हाउ इज विन लाइफ टाइम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स?
2: सबसे बैकवर्ड चलते हैं, विन लाइफ टाइम 2008 से है, दो ऑफिसेज हैं, 30 से ज्यादा का स्टाफ है, 4 एनालिस्ट हैं, 12,000 से स्टूडेंट्स 2008 से 18 सालों में। हम इसको एज ए हॉबी नहीं कर रहे, हम इसको एज ए प्रोफेशन करते हैं। तो ये एक डिस्टिंक्शन है विन लाइफ टाइम पे। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, पूरी दुनिया के हर किनारे पे हमारे मेंटर्स एवरी डे बैठे हैं। कोई भी कर सकता है, कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए फाइनेंस का, कोई बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड कंप्यूटिंग का नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड आपको फाइनेंस का ऑल टुगेदर नहीं चाहिए। उसके बाद कितने पैसे चाहिए, आपको अपने पैसे डे ट्रेडिंग में नहीं लगाने, हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं। एक दफा आप हमारा प्रोग्राम कंप्लीट कर लें, सॉफ्टवेयर सीख लें, तो कोई भी ये कर सकता है, अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने। और सबसे कौन इसको लाइक 23 hours a day मार्केट खुली है, आपको सिर्फ इसमें बैठना है, नो मोर देन 90 minutes a day, एंड देन यू कैन स्टार्ट पार्ट टाइम, मेक कपल $100 a day और इसको आप ग्रो कर सकते हैं।
1: जी, और तमाम लिसनर्स आपकी आवाज़ सुन रहे हैं राफी जी, और अभी मदर्स डे वीकेंड निकला है तो मैं चाहती हूँ ज़रूर हमारे लिसनर्स को एक बार फिर अपने वही अंदाज में बताएं कि आर मेन बेटर और यू नो फीमेल्स बेटर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग?
2: हूज मोर ट्रस्टवर्दी? स्टैटिस्टिकली फीमेल्स आर बेटर एट आवर इंस्टीट्यूट। रीजन इज मेन हैव दे हैव वेरी स्ट्रांग इमोशनल कंट्रोल। लेकिन मैं भी खुद मेल हूँ, ट्रेडर हूँ, कई दफा आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हो या रिवेंज में हो जाते हो, तो फीमेल के अंदर हमने देखा है कि थोड़े से वो सुकून से बैठे रहते हैं, कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता, रिवेंज ग्रीड के मसले नहीं होते, तो दिस सेट ऑफ थिंग्स ही जरूरत होती है इसमें। तो जरा मेन टेंड टू बी अ लिटिल ओवर मोर एक्साइटेड, तो जरा खून जल्दी गर्म हो जाता है।
1: ऑलराइट, सो वेल, जितनी भी महिलाएं हमारा शो सुन रही हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी हैप्पी after hearing this. So yes, you can do it too. Even if you are a housewife, this would be an excellent, excellent work for you. So देर किस बात की है? Call कीजिएगा दोस्तों, pick up your phones and call to book your free seats for the upcoming Saturday's seminar. winlifetime.com is the website to visit. Number है 9052061008 9052061008. राफी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, फिर आपसे जुड़ेंगे। हैव अ ग्रेट
2: डे। थैंक यू, टेक केयर। यू मोस्ट वेलकम।
3: शॉन एक्सप्रेस न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।

0: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, आज का दिन एक और वजह से भी खास है। आज के ही दिन 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। तब दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतर गई थी। पीएम ने कहा, भारत के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन हम डरे नहीं, डटे रहे। भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ही हमारी परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान सोमनाथ के चरणों में नमन करते हुए ऑपरेशन शक्ति की बधाई देता हूं। राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया 7 अपीलों पर पलटवार किया। उन्होंने इसे नाकामी करार दिया। कहा कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री के बस में नहीं रह गया। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने लिखा, कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये विफलता है। उन्होंने कहा, 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या नहीं, कहां जाएं कहां नहीं। दरअसल सिकंदराबाद में एक जनसभा में पीएम मोदी ने आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर जोर दिया था, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरण की रक्षा हो सके। भीषण गर्मी का दौर भारत में जारी है। इस बीच कई इलाकों में बारिश भी देखी जा रही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हीट वेव जारी है। 4 राज्यों के 9 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा। राजस्थान का बाड़मेर जो है, वहां 46 डिग्री के पार चला गया पारा, और सबसे गर्म शहर दर्ज हुआ जैसलमेर। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी टेम्परेचर 45 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, और साथ साथ मौसम विभाग का ये कहना है कि मैदानी राज्यों में अभी गर्मी इसी तरह से पसीना पसीना करती रहेगी। 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आने के बाद बंगाल और तमिलनाडु में नए सीएम की शपथ हो चुकी है। पुडुचेरी और आसाम में सीएम का नाम और शपथ की तारीख तय हो गई, लेकिन केरलम में आज भी कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ ने अपने सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस आलाकमान ने केरलम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया है। पूर्व अध्यक्ष के सुधाकरन, आज के मुरलीधरन और मुल्लापल्ली रामचंद्रन आज रात दिल्ली पहुंचेंगे, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि नाम तय हो सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की केरलम सीएम के लिए पहली पसंद केसी वेणुगोपाल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उन्हें चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम नायब सैनी और पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने पार्टी ज्वाइन कराई। वे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपके कैंपेन इंचार्ज रहे हैं। संगरूर के गांव सतौज के रहने वाले ज्ञान सिंह मान ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव से अपना सफर शुरू किया था। आम आदमी पार्टी के गठन के समय भी संगठन की मजबूती के लिए काम किया, और सांसद कार्यालय के वो प्रभारी रहे, और अब उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। राजस्थान के जैसलमेर में दुर्लभ वन्य जीव कैरकल कैट यानी सिया गोश को बचाने के लिए वन विभाग पहली बार प्रदेश का पहला गोट बैंक शुरू करने जा रहा है। ये कदम मार्च 2026 में हुई उस दिल दहला देने वाली घटना के बाद उठाया गया, जिसमें ग्रामीणों को अपनी 50 बकरियों के शिकार के शक में एक दुर्लभ कैरकल को जिंदा ग्रामीणों ने जला दिया था। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तैयार इस प्रोजेक्ट का मकसद रिवेंज किलिंग यानी बदले की हत्या को रोकना है। अब अगर कैरकल किसी की बकरी का शिकार करेगा तो विभाग मुआवजे की कागजी कार्रवाई के बजाय सीधे बकरी बैंक से नई बकरी पशुपालक को सौंप देगा। तो ये थी आज की खबरें, और अब रुक कर लेते हैं बॉलीवुड का। जर्मन मॉडल लिजलाज ने हाल ही में दावा किया कि विराट कोहली द्वारा कथित तौर पर उनकी फोटो लाइक करने के बाद कुछ पत्रकारों ने उन्हें क्रिकेटर के खिलाफ गलत बयान देने के लिए पैसे ऑफर किए थे। फिल्मी मंत्रा को दिए इंटरव्यू में लिजलाज ने बताया कि कथित तौर पर पोस्ट लाइक किए जाने के बाद उन्हें लगातार लोगों के फोन आने लगे। सभी ये कह रहे थे कि विराट ने उनकी पोस्ट लाइक की है। अपने फेवरेट क्रिकेटर विराट द्वारा कथित तौर पर उनकी तस्वीर लाइक किए जाने पर लिज लाज ने कहा, मैं इससे बहुत खुश थी और थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कुछ मेरे साथ होगा और इस तरह के फ़ोन कॉल्स मेरे पास आएंगे। और इधर भारत में संडे को बीता मदर्स डे और बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के मां बनने के बाद उन्होंने अपना पहला मदर्स डे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनके पति विकी कौशल और बेटे विहान ने उन्हें खास सरप्राइज दिया। कैटरीना ने सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें नन्हे विहान की उनके बेटे की झलक भी देखने को मिल रही है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज़ जंक्शन का यह स्टॉपेज यहीं तक।
1: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
1: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: सारे मेजर कंपनीज के साथ ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
4: Welcome to Madras Restaurant. Swad Swag aur South ka tadka. Friday, Saturday aur Sunday enjoy kijiye authentic South Indian unlimited thali. Starting at sirf 20-26. 20 plus South Indian delicacies. Garma garam aur unlimited. Paratha, idli vada, spicy aromatic curries and more. Unlimited servings, amazing variety aur price jo pocket ko bhi khush kare. Don't forget to try their signature dosas, biryani and lot more. Madras Restaurant, 905-789-6600. That's 905-789-6600.
5: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
6: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
5: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
6: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन।
5: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते ओनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि एह सफर होण वाला है तूफानी
4: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना।

0: भी है।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
0: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर आपका शालिनी फिर से स्वागत करती है सीएमआर एफएम 101.3। और दोस्तों मई 11 आज की तारीख है और आज के दिन को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम क्या करें, क्या कर सकते हैं टू मेक रेस्ट ऑफ द डे वंडरफुल। हम एक काम कर सकते हैं कि अगर कुछ अब तक अच्छा नहीं हुआ आपकी दिन में, तो अब कुछ जरूर अच्छा होने वाला है। ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन। इफ़ वी थिंक लाइक दैट वी मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स। अगर हमने कहा कुछ नहीं अच्छा होगा तो कुछ नहीं अच्छा होता, तो हमें कुछ नहीं ना वर्ड अपनी डिक्शनरी में नहीं रखना है। वी जस्ट हैव टू हैव अ प्लस वर्ड की यस आई एम ग्रोइंग, आई एम फीलिंग ग्रेट। और हमारे साथ जो लिसनर्स जुड़े हैं उनका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, isn't it? आई एम श्योर आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। वेल, अब और अच्छा जाएगा क्योंकि अगर आप एंटरटेन करते हैं अपने घर में अपने गेस्ट्स को, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट जब आप गेस्ट बन के जाते हैं किसी के घर, तो आप ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आपके घर कोई गेस्ट आते हैं खाने पर पार्टी में, तो कौन सी वो एक ऐसी चीज करते हैं जो आपको अनॉय करती है। लेट्स ट्राई टू हियर इट फ्रॉम यू, कौन सी चीज आप नहीं चाहते आपके गेस्ट आपके साथ करें। तो टॉक टू अस 416-593-0055, हमारी लाइंस खुली रहेंगी 4 बजे तक। और इसके साथ साथ एक विनर निकालेंगे जिसको कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी की तरफ से $100 का गिफ्ट भी मिलेगा। बिफोर एंड ऑफ द शो हम विनर का नाम अनाउंस करेंगे। कुछ एंट्रीज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो बताइए कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपकी गेस्ट की आपको नहीं पसंद आती, वो एक आदत। आई वॉन्ट टू हियर दैट 416-593-0055। और अगर आप अपने घर को ब्यूटिफाई करना चाहते हैं, अपने ऑफिसेज को ब्यूटिफाई करना चाहते हैं विद वर्ल्ड क्लास विंडोज एंड डोर्स, तो यश विंडोज एंड डोर्स से जरूर बात करें। रीजनेबल प्राइस में आपको मिल सकती है एक्सेप्शनली गुड लुक्स, ग्रेट क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड मच मोर। तो यश विंडोज एंड डोर्स में आप जरूर बात कीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उनके पास फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस, तो आप उनकी टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन द fast growing company which is going to give you lots and lots of profits. 416-732-3600, 416-732-3600 hai number. और साथ साथ ऐड करते चलें दोस्तों, डेओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स, आज के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर्स आ चुके हैं। टोरंटो से दिल्ली या मुंबई, आप दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं इस महीने में, मई के महीने में, वन वे $820 में। नाउ टोरंटो से अमृतसर वन वे इन दिस मंथ 960 दो बैग्स के साथ। दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप लगा है लिमिटेड सीट्स के साथ $1,490। टोरंटो से बेंगलुरु सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप है $1,340 दो बैग्स के साथ। अब टोरंटो से अमृतसर या टोरंटो से दिल्ली सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप लगा है $1,590 दो बैग्स के साथ, लिमिटेड ऑफर है। ब्रैम्पटन एंड इटोबिको सर्विंग यू फ्रॉम टू लोकेशंस। देओल ट्रैवल नंबर्स आर 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200। एंड यस, वी हैव अ कॉलर विद अस एंड लेट्स हियर इट कि उनका क्या मानना है हमारे टॉपिक के बारे में। जी, कौन जुड़े हैं हमारे साथ? गुड आफ्टरनून
2: गौतम दवे।
0: गौतम जी वेलकम।
2: थैंक यू वेरी मच।
0: जी तो गौतम जी, आपकी आवाज बहुत साफ तो नहीं आ रही, बट आई एम एबल टू हियर यू एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो बताइए क्या है आपका कमेंट हमारे टॉपिक के बारे में।
2: आपका टॉपिक है कि जब गेस्ट आते हैं तो कौन सी चीज एनॉय करती है। एक तो जो बिल्ली और कुत्ते साथ में लेके आते हैं वो एनॉय करता है।
0: अच्छा अच्छा, बिना पूछे, राइट? बिना पूछे ओ यस,
2: बिना बताए बिल्ली और कुत्ते लेके आ जाते हैं वो एनॉय करते हैं।
0: ओ माय गॉड, आई रिमेम्बर गौतम जी, इससे मुझे एक किस्सा याद आया है। वैसे आई एम एन एनिमल लवर, मुझे एनिमल्स पसंद है, लेकिन मुझे साथ एनिमल्स के रहने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे माइनस में एक्सपीरियंस है. सो वंस आई वेंट टू माई यू नो एक्सटेंडेड फैमिलीज हाउस एंड दे इन्वाइटेड अस फॉर डिनर. द मोमेंट दे ओपन द डोर देयर वर टू कैट्स एंड टू डॉग्स. तो मतलब मेरी जो पूरी शाम निकली वो चेयर के ऊपर, मैं आलती पालती मारकर बैठी हुई थी क्रॉस लेग्स चेयर के ऊपर. मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि चेयर से नीचे. अच्छा, और मेरी टेरिफाइड एक्सप्रेशंस के बाद भी वो अपने डॉग्स और कैट को अंदर नहीं लेके गए. मैंने कहा ओ माय गॉड, कैन देन आई हैड टू से इट, आई सेड कैन यू प्लीज टेक देम आउटसाइड बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इस तरह की चीजें हो जाती है.
2: ऐसे होता कि लेकिन जब किसी को मालूम के बिना बताए लोग लेके आ जाते हैं तो सबको परेशान कर देते हैं ये.
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग गौतम जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल.
2: थैंक
0: जी. Most welcome and many thanks to our social media friends as well. आप लोगों के हमें you know personal messages आ रहे हैं इस वक्त. और सबसे interesting message जो है मुकेश जी आपका है, और आपने बस मैंने जो कहा था उससे मिलता जुलता है. आपने कहा कि आपने अपने मेहमान की खातिरदारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, आपने खूब सारी candles लगाई, you know, पूरा घर अच्छा सा महक रहा था आपका वगैरह वगैरह. वो लोग आए, खाना खाए, चले गए, ना आपके घर की तारीफ की, ना आपकी कैंडल्स की तारीफ की जो आपने बड़ी मेहनत से कैंडल्स उनके लिए लगाई थी. Let's hear it. We have the next caller with us. Good afternoon.
3: Good afternoon.
0: जी, कौन बात कर रही
3: है? जी, मैं सोनिया.
0: सोनिया जी, सोनिया जी, बताइए.
3: सबसे जो बुरा लगता है कि जब गेस्ट के साथ जो बच्चे होते हैं दे आर वेरी इल मैनर्ड, और वो पूरे घर को यू नो दे थिंक इट्स अ प्ले ग्राउंड एंड दे आर रनिंग हियर एंड देयर एंड दे आर टचिंग डिफरेंट थिंग्स. वो होस्ट को बहुत अनकंफर्टेबल करता है. और होस्ट कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि लोग बुरा मान जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक?
0: या बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हो जाता है ऐसा. और यू नो ये एक ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन है कि जो आ रहा है बच्चों को लेकर उसी को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कितना शरारती है, कितना बड़ा गदर कर सकता है.
3: तो 100% agree.
0: तो यार
3: 100% agree. जहां तक घर की तारीफ है, बहुत कम लोगों का दिल इतना बड़ा होता है कि वो तारीफ करे. बाकी आपको पता है कि आपका घर बहुत खूबसूरत है, सो
0: क्या बात है,
3: आपको तारीफ की जरूरत नहीं है. लेकिन जो बच्चे आके यू नो दे स्टार्ट शोइंग ऑल द इल मैनरिज्म, वो बहुत बुरा लगता है.
0: ओके, इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच सोनिया जी, ट्रूली अप्रिशिएट योर कॉल. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है. जी, कौन जुड़े हमारे साथ? गुड आफ्टरनून.
4: Hello.
0: Hi.
4: Hi there. This is Lailu. The Lailu? Most annoying, yeah.
0: Yes.
4: The most annoying thing what I do feel is, you know, snooping or disrespecting the privacy, like wandering into your own private room, opening the closets and drawers, or opening the refrigerator without permission, and then, you know, talking about the decor of the house or the tidiness of the house as if they are in control of the place. So that is something which is very annoying as well.
0: इंटरेस्टिंग, बिल्कुल. यू नो मेहमान जब आपके घर आते हैं तो अगर वो अपने दायरे में रहते हैं तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है. जो कभी कभी बिल्कुल ही कैजुअल दोस्त हैं वो बात अलग है. लेकिन जब हम मेहमानों की बात करें तो वो थोड़े फॉर्मल होते हैं. तो यू आर राइट, यू नो सर्टेन एरियाज जो हमारे अपने प्राइवेसी होती है जहाँ पर, वहाँ उनको नहीं जाना चाहिए. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट थैंक यू सो मच लैलू, थैंक्स अ लॉट. और ये जो सारे मुद्दे हम बात कर रहे हैं ना, ये जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट टाइम इफ वी बिकम द गेस्ट वी ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि हमें किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है ताकि जो होस्ट है उसको तकलीफ ना हो. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं. जी, गुड आफ्टरनून, कौन है हमारे साथ?
5: हेलो.
0: हाँ जी वेलकम,
5: मैं आपके साथ हूँ।
0: आप बिल्कुल हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका?
5: आमिर अली।
0: आमिर जी बताइए, वेलकम।
5: जब गेस्टों को बुलाओ वो जब टाइम पे ना आए, लेट आए, खाना खा के बातचीत भी ना करें, फौरन चले जाएं, बड़ा दुख होता है। इतनी मेहनत की होती है, साफ सुथरा किया होता है खाने, जब बात करने होता है वो चले जाते हैं, ये एक आदत होती है। और दूसरे मैंने ये कहना था, एक दफा आपने क्विज में सवाल किया था सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो मैंने बताया था।
0: हाँ जी,
5: तो उसको आपने बताया नहीं, वो उसके इनाम का क्या हुआ?
0: इनाम डेफिनेटली मिल चुका होगा, इस वक्त मेरे सामने रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन आई विल डेफिनेटली चेक। आमिर जी अगर आप विनर होते तो आपके पास तक मैसेज पहुंच गया होता अब तक, बट चलिए, यू पार्टिसिपेटेड इट टुडे, यू ऑलवेज हैव अनदर चांस, थैंक यू।
5: आपने पूछा था सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो मैंने बताया था वेटिकन सिटी।
0: वेटिकन सिटी, दैट्स राइट, आई रिमेंबर दैट, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ बैक आई बिलीव सो।
5: ओके,
0: But thank you so much, Amir ji. I truly appreciate your, comments on our topic. Thank you so much. Kabhi-kabhi, you know, aisa bhi hota hai, khane ki baat rahi ki you make so much food and wo aate hi kehte hai ki maine to khaya hua hai khana bahut sara. I am like so full and you feel, oh my God, to phir maine itna sara cooking kiske liye kari hai? इस तरह की चीजें हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली कोई जानकर किसी का दिल नहीं दुखाता, लेकिन जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच वंस अगेन शकील जी, हुसैन जी, अरफान जी, अख्तर जी, विशाल जी, गौतम दवे जी, सोनिया जी, लैलू जी, आमिर अली जी, थैंक्स अ लॉट फॉर सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू आवर टुडेज टॉपिक। बहुत जल्दी हम विनर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, उनसे करते हैं एक मुलाकात, आइए उनके बारे में पहले सुनते हैं, फिर उनको लाते हैं आपके सामने मस्ती की रेलगाड़ी पर। स्टे ट्यून्ड,
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
6: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
0: 416-570-0157। जी दोस्तों, अंजुम कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं एक्सीडेंट क्लेम्स के बारे में, तो क्लेम तो आपको मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको राहत भी मिलती है, आपको सपोर्ट मिलता है, प्रोफेशनल्स की जो लॉयर्स की जो टीम है आपके साथ खड़ी रहती है शुरू से लेकर अंत तक। तो आपको जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, फिजिकल डिस्ट्रेस होता है, और मतलब पता नहीं क्या क्या होता है जब हम इस तरह से परेशानी में पड़ जाते हैं, तो वो जो टीम आपके साथ सॉलिड रहती है ना, दैट एक्ट्स एज योर बैकबोन। सो नंबर नोट कर लें अंजुम कुरैशी जी का, 416-570-0157। अंजुम जी आपका हम वेलकम करेंगे, कैसी हैं आप?
7: बिल्कुल ठीक, और तमाम सुनने वालों को भी आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और जब हम रेडियो पे आते हैं तो हम आपको कानून की बात बताते हैं, और जब कानून की बात आ जाती है तो इसका मकसद है कि कुछ नियम है और हमें उन नियम का पालन करना पड़ता है। अगर हम उन चीजों को नहीं देखते, हम नियम का पालन नहीं करते, अगर हम जो ना लापरवाही करते हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं, तो तुरंत हमको जो है ना टिकट मिल जाता है, उस टिकट को डील करने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर अगर हमारे पॉइंट चले जाते हैं, हमारा रिकॉर्ड खराब होता है और हमारी इंश्योरेंस बेइंतहा बढ़ जाती है। तो हर चीज का एक कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन हम अपने तौर को, हम अपने अपने तौर, अपने अपने आप को किस हद तक सुरक्षित रख सकते हैं, कितना हमें पता है कि हमने हर चीज में एहतियात करनी है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से या किसी की वजह से हमारी इंश्योरेंस जेपिटाइज हो और हमारी इंश्योरेंस बढ़ जाए। तो आप अपने इंश्योरेंस को जितना स्ट्रेट रख सकते हैं, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं उन कागजात को पढ़िए, आपने जो चीजें ली है जिसमें आपके पास रेंट अ कार होनी चाहिए, आपका कलिजन इंक्लूड होना चाहिए, और अगर आपको $2-4 पैसे ज्यादा भी देने पड़ते हैं तो आप इन चीजों को बिल्कुल भी मना नहीं करते, क्योंकि जब कार एक्सीडेंट होता है तो जो आपने $50-100 जो बचाए होते हैं महीने के, वो सब बराबर हो जाते हैं। तो ये चीजें लेना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कार एक्सीडेंट की। जब कार एक्सीडेंट होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो भी आपसे बातचीत कर रही होती है एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रही होती है। आप बातें भूल जाएंगे लेकिन वो बातें नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड की है। और अगर आप किसी बात पे इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग दे दें, तो वो आपको कभी अपनी आपकी रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अगर किसी बात में आपको कहना है कि आप गलत है तो वो रिकॉर्डिंग आपको क्यों देंगे। तो आप अपने तौर से भी अपने आप को सेव करने के लिए, अगर जब आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हैं, अगर आपकी बात रिकॉर्ड हो सकती है उसको कर लीजिए। हमारा काम ये होता है कि हर वो बात हम आपको बताएं जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। और अगर मिसाल के तौर पे कार एक्सीडेंट होता है तो अंटारियो में कम से कम आपको ये फायदा है कि आप एट फॉल्ट हो नॉट एट फॉल्ट हो, दोनों सूरतों में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है, आपको ट्रीटमेंट का पैसा देती है, आपको लमसम सेटलमेंट अमाउंट देती है। तो आपको ये सहूलत है, तो आपको उसके लिए रिकमेंडेड होता है कि एक लॉयर ले लें, क्योंकि जो चीजें आप नहीं जानते आप उसको बेहतर तौर से नहीं कर सकते। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं जो ना सिर्फ आपके क्लेम को दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी 416-570-0157 मेरा नंबर है। कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो ये नंबर बहुत संभाल के रखें, क्योंकि जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपकी बातें बैठ के करते हैं, आपको वो सुनना है जो आपके साथ गुजर रही है। आपको ये नहीं सुनना कि जी नदीम सलीम या शिल्पा के साथ क्या हुआ, आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे कार एक्सीडेंट में मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, या मैंने जो सारी जिंदगी इंश्योरेंस दी मैंने क्यों दी, मुझे उसका क्या फायदा है। तो ये बातें करने के लिए आपको हमें जब कॉल करते हैं तो आपको हर सवाल का जवाब मिलता है। 416-570-0157 जिंदगी रही तो फिर आएंगे, अपना ख्याल रखिएगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम जी, और नंबर फिर से नोट कर लें दोस्तों, ये नंबर आप कभी भी हमसे ले सकते हैं 416-570-0157 That's 416-570-0157 आप सुन रहे थे अंजुम कुरैशी जी को हमारे शो पर। और वेल दोस्तों, आपका एक बार फिर से शालिनी वेलकम बैक कहती है, और 3:40 हमारे इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में, और बात हो रही थी मेहमानों के बारे में, राइट। तो इससे मुझे एक गाना याद आया 80s का, जो पिक्चराइज्ड है रेखा के ऊपर, और इसमें डांस भी बहुत अच्छा किया है। गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं, और ये शायद लाइनें हैं मेहमानों पर भी फिट बैठती हैं, लेकिन हम चाहते हैं मेहमान हमारे घर बार बार आए, राइट। तो मेहमानों को हमने ये नज़र करते हैं चार लाइनें

0: कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
2: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
1: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
3: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam, Sanjeev Puri.
4: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain, jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walk-in clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai.
3: You will get full refund if super visa is declined.
4: Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
5: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600। दैट्स 905-789-6600।
6: एक लाइफ है जिसे लव है,
7: ये कहते मुझसे सब है,
8: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: one-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: जी दोस्तों, डोंट वरी, मुकेश चौहान है. अगर आपको चाहिए रीफाइनेंसिंग, आपको मसला है डेट कंसोलिडेशन का और आप चाहते हैं सारे डेट्स को मिलाकर छोटी सी मंथली पेमेंट आपकी बन जाए, डेट मैनेजमेंट हो जाए, फाइनेंशियल ट्रबल्स ख़त्म हो जाए, 55 एंड अबव हैं आप और यू नो अफोर्डेबिलिटी के बाहर हो रही है मॉर्गेज, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ रिवर्स मॉर्गेज. पावर ऑफ सेल में आप पड़े हुए हैं, मॉर्गेज पेमेंट्स मिस कर रहे हैं और आपको चाहिए होम इक्विटी, लाइन ऑफ क्रेडिट, डील कर रहे हैं लो इनकम लो क्रेडिट से, ये सारे मसले अगर आपके होते हैं, या इनफैक्ट इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, यू आर लुकिंग फॉर अ कंस्ट्रक्शन लोन, किसी भी तरह का बिजनेस लोन चाहिए तो अप टू $1 million की वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगी, देन योर बिजनेस विल हैव अ स्मूथ रनिंग. Right? So the number to call Mukesh ji, 647-512-7000. Hamare saath judenge mortgage broker from Mortgage Diligent, Mukesh Chauhan. Mukesh ji, good afternoon. Kaise hain aap?
3: Main very good afternoon, Shalini ji. Main bahut hi badhiya hoon. I hope you had a great weekend.
2: Aur
3: happy Mother's Day aapko bhi. Aur hamari sari jo hai, lots of respect to all the women.
2: Ji.
3: और क्या कहते हैं, बहुत ही स्पेशल डे था. मैंने तो सेलिब्रेट किया अपनी मॉम के साथ ऑनलाइन.
2: क्या बात है.
3: यस, सो आई एम श्योर इट वाज अ रियली इमोशनल एंड वेरी एक्साइटिंग डे फॉर ऑल ऑफ अस.
2: वेरी नाइस, वंस अगेन
3: वेरी वेरी, वी आर रियली प्राउड फॉर ऑल द वुमेन्स हु आर वर्किंग हार्ड. हमें बाल पोस के बड़ा भी किया, पढ़ाया लिखाया, सब इस काबिल किया, तो ये सारी मेहनत आपको जाती है.
2: Yes, thank you. और आप मुकेश चौहान से दी मुकेश चौहान हो गए, so credit goes to your mom.
3: Of course, yes, 100%. I am nothing without my mom. Like, I am
2: how sweet.
3: I am copy.
2: How sweet, amazing. तो wonderful मुकेश जी. और जब moms की बात आती है ना, तो अपनी family के बाद जो चीज उन्हें पसंद आती है वो होता है घर. तो इसीलिए हम घर से भी relate करते हैं अपनी moms को, because if she is living in the house stress free, so then you know the whole household हमारा जो है ना बिल्कुल straight line पर चलता है. उनका mental disbalance हुआ, फिर तो बस भगवान प्यारे हैं आप, तो फिर तो बस भगवान ही देखेंगे आपको. तो अच्छा, अब घर की बात रही मुकेश जी, तो अब मॉर्गेज सबसे यू नो पसंद तो हम कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक मॉर्गेज ही नहीं होगी तब तक हम कैसे जाएंगे घर में. सो दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कड़ी बिटवीन अ होम aspiring home owner, like aspiring owner of the house, ya ghar, uske beech ki kadi jo hai mortgage hai. So will mortgage refinancing ki baat kare agar, to mortgage refinancing ya home equity line of credit, in dono mein bada confusion kabhi kabhi logon ko ho jata hai, because the line sometimes is very thin. So if I ask you the opinion, so in your opinion, which of these products is good for the home owner, you know, home renovation ki jab hum baat karte hain to.
3: अच्छा, मॉम को पैसे चाहिए घर बनाने के लिए, सिंपल आपसे यही है ना. पैसे ये पूछ रहे हैं
2: रेनोवेट करने के लिए. रेनोवेट करने के लिए, पार्टीज करने के लिए, बेसमेंट बनवाना है, कोई भी रेनोवेट कराना है, किचन रेनोवेट कराना है फॉर दैट मैटर. सो हाउ कैन यू हेल्प द मॉम्स.
3: बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सारी मदर्स के लिए तो मैं एक थोड़ा सा गिफ्ट अनाउंस करूंगा इस आंसर के बाद. पहले तो हम पहले छोटा सा पहले आंसर कर देता हूँ. देखिए, मॉर्गेज रीफाइनेंस करने रीफाइनेंस भी कर सकते हैं, और रीफाइनेंस के अलावा अगर आपको नहीं करनी तो होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट भी ले सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर फर्स्ट मॉर्गेज. रीफाइनेंसिंग के अपने बेनिफिट है, आप रिन्यूअल का टाइम आया आपका, ठीक है, काफी लोगों का इस दफा रिन्यूअल आने वाले हैं. रिन्यूअल आप एनी टाइम फ्रॉम 3 to 6 months पहले आप शॉप अराउंड कर सकते हैं, सेम बैंक से भी कर सकते हैं और आपको दूसरे बैंक से भी कर सकते हैं, राइट. तो रीफाइनेंस के टाइम पे होम रेनोवेशन के लिए तो पैसे निकालोगे ही आप, साथ साथ आपने डेट्स पे करने हैं, क्रेडिट कार्ड्स पे करने हैं, सेकेंड मॉर्गेज ले रखी वो पे कर सकते हैं. तो रीफाइनेंसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये कि अलग से आपको पैसे नहीं लेने, आपको सेम मॉर्गेज अमाउंट से ही आपको घर अपना अपग्रेड करवा रहे हो, घर रेनोवेट करवा रहे हो. देखिए, मैंने तो मेरी वाइफ ने रेनोवेट करवाया घर, वो शुरू समर उनके लिए तो अभी से शुरू हो गया है, राइट. मॉम ने भी शुरू करवाया, राइट. तो मुझे अच्छा. पता है बड़ा एक्साइटिंग रहता है वुमेन्स के लिए. तो अब आप ये है कि रीफाइनेंसिंग नहीं करानी. हाँ, काफी लोग जो है ना शालिनी जी, मॉर्गेज क्लोज्ड हैं अगले 3 साल के लिए, है ना, 4 साल के लिए. तो अगर वो ब्रेक करेंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी. तो उस सूरत में फिर होम एक्वायरी लाइन ऑफ क्रेडिट वुड प्ले अ वेरी क्रूशल रोल. अच्छा काम करती है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप क्यों पेनल्टी में $20,000-30,000 पे करें, है ना.
4: बिल्कुल,
3: 20-30,000 की तो रेनोवेशन हो जाती है, आपका किचन बन जाएगा आपका, है ना. उस सूरत में आप होम एक्वायरी लाइन ऑफ क्रेडिट ले लें आप, वो बेस्ट रहती है. आप हीलॉक अपने बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं. अगर बैंक आपको लो इनकम या लो क्रेडिट की वजह से मना कर रहा है, तो अब मुझ जैसे किसी भी प्रोफेशनल को अप्रोच करें, ताकि आपको बेस्ड ऑन योर क्रेडिट, बेस्ड ऑन दी एक्विटी, आपके घर पे जो एक्विटी है उस बेस पे आपको 100-200,000 की जो भी लाइन है वो आपको मिल जाए. तो आई एम श्योर आई हैव क्लियर विद माय आंसर कि रीफाइनेंसिंग का तभी फायदा है जब रिन्यूअल आ रहा हो, और आप अगर आपको अगले 3 साल तक क्लोज है तो उस सूरत में होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट ले लें. लो क्रेडिट है, बैड क्रेडिट है, इनकम इश्यूज है, उसके लिए एक अलग से एक सोल्यूशन है. और ये है इस हफ्ते, इस पूरे वीक के लिए बता रहा हूँ, जो भी वुमेन मुझे कॉल करेगी और जो साइन अप करेंगे, क्लोजिंग करेंगे विद इन नेक्स्ट 4-5 to 6 वीक में, तो उनको $500 का उनको मैं स्पेशल वाउचर दूंगा, जहां का भी उनको स्पेशल वाउचर चाहिए. सो मेरे लिए अभी थॉट आई है, आई प्रॉमिस, मुझे पहले कोई माइंड में नहीं, ऐसी अचानक से है. आई फील लाइक शेयरिंग विद द कम्युनिटी, तो वाउचर मैं दूंगा और फील लाइक अ मदर्स टू मी, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा. और डेफिनेटली आप मुझे रीच कर सकते हैं 647-512-7000, 647-512-7000.
2: मुझे पता है मुकेश जी से कैसे गिफ्ट निकलवाना है, आप लोग बस बताइए कौन सा गिफ्ट चाहिए, मैं निकलवा दूंगी.
3: यस, शैली जी को मैसेज कर सकते हो आप. हमें अच्छा, आपको अगर गिफ्ट ना मिले तो इनको मैसेज कर सकते हो कि मम्मी गिफ्ट नहीं पहुंचा अभी तक.
2: That's right. अच्छा, अब मुकेश जी लो अप्रेजल की बात करें, तो दिस इज अ बिग हेडेक फॉर लाइक सो मेनी ऑफ अस, बिगेस्ट कंसर्न है आजकल. तो हाउ कैन यू हेल्प अस स्पेशली फॉर द मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग, अगर यू नो ये मसला आ गया बीच में लो अप्रेजल का.
3: देखिए, पहले तो बात है कि बहुत अच्छा आपके रेडियो के माध्यम जो काफी लिसनर्स हैं वो सुनते हैं, हम लो अप्रेजल की बात कर रहे हैं काफी टाइम से, 2-3 महीने से. उनके लिए एक रिस्पांस बहुत अच्छा है, अभी भी कॉल्स आ रही हैं, प्लीज मुझे शो के बाद कॉल करें आप. तो उनके लिए फ्री वैल्यूएशन, एक तो वैल्यू चेक करके दी जाएगी, मैं और मेरी टीम देखेगी कि आपके घर की वैल्यू क्या है, राइट, पहली बात है. और उसके बाद पेड अप्रेजल होगा, जो पेड अप्रेजल आपका होगा उसकी जो भी कॉस्ट होगी क्लोजिंग के टाइम पे रीइंबर्स की जाएगी, है ना. यू पे फर्स्ट, देन उसकी जो भी कॉस्ट है वो रीइंबर्स आएगी क्लोजिंग के टाइम पे. पर्पज ये है कि आपकी मॉर्गेज क्लोज होनी चाहिए आपकी, राइट, आपकी सक्सेसफुली. तो रीफ जो अप्रेजल के जो भी इश्यूज हैं, आपको घर की वैल्यू चेक करवानी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है. आपको घर की वैल्यू पता होनी चाहिए कि मेरे घर में 50,000 एक्विटी है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख, कितनी एक्विटी है. मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग करें या आपको होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, सेकेंड मॉर्गेज चाहिए, सारी चीजें निर्भर करती है आपके अप्रेजल के ऊपर. अप्रेजल अगर अच्छा आएगा आपका तो डेफिनेटली आपको क्लियर विजन होगा. मैं भी चाहता हूँ आपके पैसे वेस्ट ना हो, अननेसेसरी, है ना, जाया ना हो. तो वी बोथ विल वर्क, म्यूचुअली बेनिफिटेड होना बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल है. मॉर्गेज के फंड से आपको फायदा होगा तभी मुझे फायदा होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है. एक चीज और बताता चलूं शालिनी जी, कमर्शियल फाइनेंसिंग के अलावा जिनको वर्किंग कैपिटल के लिए जो काफी लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप किया विद इन लास्ट 8 मंथ्स 1 ईयर, अगर आपको किसी को 1 साल नहीं हुआ और आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, तो 1 साल से पहले पहले आप कॉल कर सकते हैं. आपको CSBFL कनाडा स्मॉल बिजनेस

0: मैं हूँ मिसेस सागा एंड मेडोवेल. तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस. सो बैक टू शालिनी जी, वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे आपको और हमारी सारी वुमेन्स को जो
1: जी
0: सुन रही हैं और जो नहीं भी सुन रही उनको भी जो है
1: थैंक
0: बहुत
1: यू,
0: बहुत शुभकामनाएं जी. थैंक यू सो मच.
1: मेनी थैंक्स टू यू. थैंक्स अ लॉट मुकेश जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आपका नंबर बता दूं 647-512-7000, 647-512-7000. फिर आपसे जुड़ेंगे बहुत जल्दी. ऑल द बेस्ट.
0: थैंक यू सो मच.
1: कहते हैं दोस्तों कि दिल की धड़कन जब तेज हो जाए, दिल की धड़कन जब तेज हो जाए तो समझ लो कोई आसपास है. मोहब्बत का असर ही कुछ ऐसा है जो हर पल को बना देता है खास. तो चलिए आपके अगले पल कुछ और खास बनाते हैं. ओ ओ जाने जाना इस गाने के साथ आपको छोड़े जाते हैं. वादा रहा कि कल 2 से 4 फिर चलेगी मस्ती की रेलगाड़ी. जितने भी बिजनेस ओनर हमारा शो सुन रहे हैं इस वक्त, अपने बिजनेसेस को, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं हमारे शो पर. कॉल कीजिएगा या मैसेज भेज सकते हैं 416-569-7812, 416-569-7812. और आज के विनर रहे हैं विशाल जी. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल जी, आप हैं आज के कॉन्टेस्ट के विनर. आप हमें मैसेज कर सकते हैं 416-569-7812 पर, 416-569-7812. कल तक के लिए शालिनी को दे इजाजत. नमस्कार.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम,
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented.

0: acted as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
1: हाँ जी मित्र भाइयों, ये द वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम। मित्र भाइयों, जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से संभल, जिंदगी में सबके सामने हमेशा रहे हम्बल। वीकेंड में जाना चाहता था जिम, उठाना चाहता था डंबल। वीकेंड में जाना चाहता था जिम, उठाना चाहता था डंबल, लेकिन क्या करे, सो जा बेटा सो जा, यही कह रहा था मेरे बिस्तर का कंबल। हाँ जी मित्र भाइयों, कंबल में रहना है या फिर जिम में जाकर डंबल उठाना है, अपनी सेहत को देखकर तय कीजिएगा। हाँ जी मित्र भाइयों, ये डो वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844 தட்ஸ் 6478648844
1: ஆர் விசிட் teamsabarwal.com
2: யுவர் சர்ச் எண்ட்ஸ் ஹியர்
3: இஸ்கே பீனே சே தபியத் மே ரவானி
4: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
5: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
4: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
6: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
7: प्रतिष्ठा परंपरा और अनुशासन इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545
8: हाँ जी मित्र भाई यूजेड वॉइस और हम में आपके दूस जतीन पील रीजन में हंटा वायरस का तीसरा मामला सामने आया मरीज को किया गया आइसोलेट प्रशासन अलर्ट चूहों और उनके अवशेषों से फैलने वाले इस वायरस ने बढ़ाई चिंता हाँ जी मित्र भाइयों ओंटारियो के पील रीजन में हंटा वायरस के एक और मामले की पुष्टि हुई है यह इस साल ओंटारियो में इस संक्रमण का तीसरा मामला है हेल्थ अधिकारियों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति फिलहाल आइसोलेशन में है और उनकी स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है हंटा वायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो मुख्य रूप से चूहों के मल मूत्र या लार के संपर्क में आने से फैलती है जब ये अवशेष सूख जाते हैं और हवा में धूल की कणों के साथ मिल जाते हैं तो सांस के जरिए इंसान इस वायरस की चपेट में आ जाता है पील पब्लिक हेल्थ ने जनता को चेतावनी जारी की है कि पुराने गैरेज शेड या ऐसी जगहों की सफाई करते समय सावधानी बरते जहां चूहों की मौजूदगी हो सकती है विशेषज्ञों का कहना है कि इसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं जैसे तेज बुखार मांसपेशियों में दर्द और थकान लेकिन यह आगे चलकर फेफड़ों की गंभीर बीमारी का रूप लेता है स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कुछ जरूरी सलाह दी है चूहों के बीलों या गंदगी को सीधे झाड़ू से साफ न करें, पहले उसे डिसइंफेक्ट करें ताकि आपको इससे कोई परेशानी न हो सफाई के समय रबर के दस्ताने और मास्क जरूर पहने घर के कोनों और बेसमेंट में चूहों के प्रवेश को रोके मित्र भाइयों प्रशासन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन सावधानी की बचाव है अगर आपको किसी संदिग्ध क्षेत्र के संपर्क में आने के बाद सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर का संपर्क कीजिए हाँ जी मित्र भाइयों पील रीजन में हंटा वायरस का तीसरा मामला सामने आया मरीज के किया गया आइसोलेट प्रशासन अलर्ट है चूहों और उनके अवशेषों से फैलने वाले इस वायरस ने प्रोविंस में बढ़ाई चिंता ये हिट वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन दुनिया भर की खबरें weeklyvoice.com पर
1: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545
9: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
10: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
11: हाँ जी विनर भाइयों, ये है रेडियो वॉइस जतिन के संग। आइए सीधे चलते हैं आयशा मुनव्वर जी के पास। बहनर भाइयों, उनका नंबर जरूर डायल करें 416-428-2165। कर्जा बढ़ता है, गार्निशिंग का नोटिस आ गया है, मैक्सिमम कर्जा माफ करवा देंगे आयशा मुनव्वर और मैनी हुसैन जी। 416-428-2165। आइए सीधे चलते हैं आयशा जी के पास। आयशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस।
12: थैंक यू वेरी मच जतिन जी, क्या हाल है? ठीक ठाक।
11: बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
12: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
11: वंडरफुल। प्लीज आपकी वंडरफुल सर्विसेज के बारे में पहले बताएं।
12: जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि कर्जे में आना यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने ना सुना हो। सो लॉट्स ऑफ टाइम लोग कर्जे के प्रॉब्लम के नीचे आ जाते हैं, तो हमारी मेन सर्विसेज में आ जाते हैं कर्जे को माफ करवाना, कंज्यूमर प्रपोजल्स, बैंकक्रप्सी की सर्विसेज में भी हम हेल्प आउट करते हैं, इसके अलावा इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग्स और क्रेडिट को दोबारा एस्टैब्लिश करके आपको दोबारा फाइनेंशियल ट्रैक पे हैप्पी हैप्पी लाइफ जो है गुजारने में मदद देते हैं।
11: वंडरफुल। बहन और भाइयों, कॉल करना है 416-428-2165। आयशा जी, ये बताएं कि अपॉइंटमेंट लेना क्यों जरूरी है?
12: बहुत जरूरी है जतिन जी। ऐसा है कि देखें, ये फाइनेंशियल हेल्थ है। आपने कभी किसी डॉक्टर को फोन करके कहा कि बस मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे कोई दवाई दे दो? वो कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि यू नेवर नो दर्द किस वजह से है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या इलाज है। तो सेम ये आपके फाइनेंसेस हैं। जब तक हम प्रॉपर तरीके से रिव्यू ना कर लें, कर्जा लिया कैसे गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, कौन से बैंक हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, क्या वापस आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एसेट्स कौन से हैं जिनको बचाना है, और आगे फ्यूचर में कैसे आपने चलना है, प्रोसेस क्या होगा, तो ये सब चीजें 5 मिनट में नहीं बताई जा सकती और ना डिस्कस की जा सकती हैं। हमारा काम है कि प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल एडवाइस देना, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
11: वंडरफुल। ये भी बताया कि कौन से डेट सेटल कर सकते हैं।
12: जी, ऑल काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स कैन बी सेटल्ड, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, स्टूडेंट लोन्स हो गए। स्टूडेंट लोन हैज टू बी 7 years आफ्टर डेट ऑफ फिनिशिंग ऑफ स्टडीज। रेवेन्यू कैनेडा के डेट्स हो गए। इसके अलावा अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह के ऊपर जो है गारंटीज दी हुई हैं और बिजनेस अब नहीं चल रहा, तो वो गारंटीज वगैरह भी जो है वो सेटल हो सकती हैं। तो बेसिकली ऑल काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स कैन बी सेटल्ड।
11: और आपने गारंटीज की बात की, तो कई बार हम सुनते हैं कि गारंटीड कर्जा माफ किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
12: इस गारंटी से मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना, मैं मुखालिफ हूँ इस गारंटी के।
11: अच्छा।
12: उसका रीजन ये है कि अक्सर मैं देखती हूँ कई रेडियो स्टेशन पे लोग बैठे हैं गारंटीज कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो ये अनएथिकल है, आप किसी तीसरी पार्टी के बिहाफ पे गारंटी नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि लेट्स सपोज जैसे आप किसी को प्रपोज करते हैं, तो जब तक अगला पर्सन हाँ या ना कर ले, आप कैसे मानेंगे कि जी काम हो गया? तो इसलिए वी हैव टू प्रपोज एन ऑफर कि जी ये अमाउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं, बैंक्स को हम प्रपोज करते हैं, एंड देन सब्जेक्ट टू क्रेडिटर अप्रूवल, बैंक्स ने हमें एक्सेप्टेंस देनी होती है कि जी हाँ हमने मान लिया या कोई और हम जो है वो ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए गारंटी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम कर्जा माफ हो जाएगा, वो हर पर्सन के लिए फर्क भी हो सकता है।
11: बहुत खूब, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दे प्लीज।
12: जी, कॉन्टेक्ट नंबर है 416-428-2165।
11: आयशा मुनव्वर और मैरनी हुसैन जी से आज ही करें बात और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाइए अपना एक और कदम। आयशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
12: थैंक यू वेरी मच जतिन।

0: It's time to cast your vote. Voting is now open for the 2026 Top 25 Canadian Immigrant Awards presented by Western Union. We invite all Canadians to meet the shortlist of 75 finalists from across the country, read their profiles, and vote for their three favorites. This is your chance to vote for someone who has become successful in their own right and has made a difference in their community. Don't forget to vote by June the 12th. For more information, visit canadianimmigrant.ca/top25.
1: Dr. Neil Gajer Associates and Specialists, Family Dentists, caring for all your dental needs, accept कर रहे हैं patients जिनके पास CDCP यानि कि Canadian Dental Care Plan है. अगर आपने ये plan receive नहीं किया है और आप eligible है, तो इस plan में enroll होने के लिए visit करें CDCP website. CDCP की website visit करके enroll हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स का. बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021. डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट्स.
2: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
3: Medical insurance for new immigrants, visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam.
4: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain, jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walk-in clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai. Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance ke liye bhi call kare Sanjeev Puri 416-890-3232.
5: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
6: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
5: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
7: वक्त जो है वो बदल चुका था. रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था. ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं. और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का तांता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया. एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545.
1: हाँ जी मित्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. आज क्वींस पार्क का बड़ा फैसला, अब फार्मासिस्ट कर सकेंगे और भी बीमारियों का इलाज. अस्पतालों की भीड़ होगी कम, मरीजों को सीधे फार्मेसी पर मिलेगी दवाइयाँ. वैक्सीन लगाने के दायरे में भी हुआ विस्तार. जानिए अब आपको क्या सुविधा मिलेगी. ऑन्टारियो सरकार ने राज्य के हेल्थ केयर मॉडल में एक क्रांतिकारी बदलाव का ऐलान किया है. अब आपको छोटी मोटी बीमारियों के लिए घंटों डॉक्टर के क्लिनिक या इमरजेंसी रूम में इंतजार नहीं करना होगा. आज क्वींस पार्क में हुई घोषणा के अनुसार ऑन्टारियो सरकार फार्मासिस्ट के अधिकारों का दायरा बढ़ा रही है. अब फार्मासिस्ट कई नई सामान्य बीमारियों के लिए सीधे दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकेंगे. इसमें गले की खराश यानी कि स्ट्रेप थ्रोट, कान का संक्रमण, ईयर इन्फेक्शन और कुछ स्किन के संबंधित बीमारियां शामिल है। इतना ही नहीं, अब फार्मेसी में दी जाने वाली वैक्सीन की लिस्ट भी लंबी कर दी गई है। अब लोग अपने पास की फार्मेसी पर जाकर और भी अधिक प्रकार के टीके लगवा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल मरीजों का समय बचेगा बल्कि ओंटारियो के अस्पतालों और फैमिली डॉक्टर्स पर बढ़ता बोझ भी कम होगा। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि फार्मासिस्टों के पास वो विशेषज्ञता है जिसका उपयोग हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को तेज और सुलभ बनाने के लिए कर सकते हैं। एक तरफ जहां जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है, वहां कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए फार्मेसी स्टाफ को अतिरिक्त ट्रेनिंग और संसाधनों की आवश्यकता होगी। विपक्ष ने भी सवाल उठाया कि क्या यह सरकार की तरफ से प्राइमरी केयर के फंड में कमी करने का एक तरीका तो नहीं है। वैसे बहरहाल ओंटारियो के लिए अब अपनी सेहत का ख्याल रखना थोड़ा और भी आसान होगा। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिखे तो सीधे अपने नजदीकी फार्मासिस्ट से सलाह ले सकते हैं। ये हिड वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन। दुनिया भर की खबरें weeklyvoice.com पर।

0: Meet Rohit Dayasman at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बार्बरा बुलेवार्ड, मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरुलक्ष्मी.com. गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
4: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। मदर्स डे दुनिया भर में बहुत ही उत्साह से मनाया गया। मित्र भाइयों, बॉलीवुड के रुपले पर्दे पर कई माता का रोल ऐसा रहा जिन्होंने गहरी छाप छोड़ी। अगर आपने फिल्म देखी हो जज्बा, ऐश्वर्या राय बच्चन, हाँ जी जज्बा में ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक वकील के साथ सिंगल मदर का किरदार निभाया जो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाती है। उनकी परफॉर्मेंस में एक माँ की मजबूरी, दर्द और ताकत का बेहतरीन संतुलन देखने मिला। जज्बा में ऐश्वर्या राय ने खूबसूरती से माँ का किरदार निभाया। एक और फिल्म याद हो तो मॉम। मॉम में श्रीदेवी ने अपने करियर की सबसे भावुक परफॉर्मेंस दी थी। बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती एक माँ के रूप में उन्होंने दर्द, गुस्सा और अपने निस्वार्थ प्यार को बेहद गहराई से निभाया था। दर्शकों ने खूब पसंद किया था। एक और फिल्म याद करते हैं मीमी। कृति सैनन ने किरदार निभाया था और सबको चौंका दिया था। एक महत्वाकांक्षी लड़की से लेकर अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने वाली मां तक का ये सफर उन्होंने बेहद खूबसूरती से निभाया था। एक और फिल्म याद आती है छोरी। छोरी फिल्म हॉरर ड्रामा फिल्म। नुसरत भरूचा ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए डर और सामाजिक बुराइयों से लड़ती है। उनकी परफॉर्मेंस में भावनात्मक गहराई और साहस दोनों साफ नजर आए। बिनर भाइयों, कौन भूल सकता है सलाम वेंकी की काजोल को। एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपने गंभीर रूप से बीमार बेटे की देखभाल करती है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने बेहद संवेदनशीलता और गरिमा के साथ माँ के अटूट प्रेम, उम्मीद और हिम्मत को पर्दे पे उतारा। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, रानी मुखर्जी, एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जिन्होंने नॉर्वे में केस लड़ा। सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म में रानी मुखर्जी के किरदार को बेहद पसंद किया गया। हाँ जी बंदर भाइयों, बॉलीवुड में निरूपा रॉय से लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन तक उन्होंने माँ के किरदार को गहराई से, ममता से और दिल को छू जाए ऐसे तरीके से निभाया। ये द वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन। दुनिया भर की खबरें weeklyvoice.com पर।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
8: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
9: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545.
10: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. आइए सीधे चलते हैं रॉजर्स एम्प्लॉई वकार खान जी के पास. रॉजर्स की बेहतरीन डील्स के लिए एक बार वकार जी से बात और मुलाकात जरूर करें. नंबर टू डायल इज 647-864-8000, 647-864-8000. आइए सीधे चलते हैं वकार जी के पास. वकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में. प्लीज हमारे श्रोताओं को आज किस प्रमोशंस के बारे में बताना चाहेंगे, प्लीज बताएं.
11: थैंक यू सो मच जतिन भाई, आपको और तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. जतिन भाई, रॉजर्स की बहुत अच्छी ऑफर आई हुई है, बहुत सारे प्रमोशन है, बंडल ऑफर्स हैं, बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ हैं. इसमें पैकेज है, टीवी मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, इंटरनेट है 2000 की स्पीड का, सुपर फास्ट फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 9-30 मिनट्स हर महीने इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के, आप डायरेक्ट बैक होम कॉल करें. बहुत ही स्पेशल ऑफर है. अगर आपको सिर्फ इंटरनेट लेना है तो 500 की स्पीड का इंटरनेट है, 1500 और 2000 की स्पीड के एक्सपेनिटी इंटरनेट लेटेस्ट मॉडर्न अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ बहुत ही चीप रेट में मिल जाएंगे. रॉजर्स के सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड यूएस कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है. और अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आईफोन है, सैमसंग है, बहुत अमेजिंग रेट पे ये डिवाइस और प्लान इस वक्त अवेलेबल है. प्लीज कॉल कीजिए, इस वक्त बहुत अच्छी ऑफर्स हैं, बहुत सारे प्रमोशन और डिस्काउंट.
12: It's time to cast your vote. Voting is now open for the 2026 Top 25 Canadian Immigrant Awards presented by Western Union. We invite all Canadians to meet the shortlist of 75 finalists from across the country, read their profiles and vote for their three favorites. This is your chance to vote for someone who has become successful in their own right and has made a difference in their community. Don't forget to vote by June the 12th. For more information, visit canadianimmigrant.ca/top25.
13: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना? यूनिट 44-50, 7070, सेंट बारबरा बुलेवार्ड, मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10. वेडनेसडे को बंद, मगर मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरुलक्ष्मी, साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।

0: रॉजर्स की बहुत स्पेशल ऑफर अभी इस वक्त अवेलेबल है, बहुत सारी प्रमोशन है, उसमें बंडल पैकेजेस अवेलेबल हैं, सिर्फ इंटरनेट आपने लेना हो तो बहुत ही स्पेशल प्राइस पे इंटरनेट आपको दिला देंगे, आपको 500, 1500 और 2000 की स्पीड के एक्सफिनिटी इंटरनेट बहुत ही चीप प्राइस पे इस वक्त अवेलेबल है। रॉजर्स सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड US कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है। सो प्लीज़ गिव मी अ कॉल, मेरा नंबर है 6478648000, 6478648000। मैं रॉजर्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, 18 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे रॉजर्स के सिस्टम में एक्सेस है, आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट ऑफर दूंगा। नंबर अगेन 6478648000, 6478648000।
1: वकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनर भाइयों जरूर कॉल करें, वकार जी से बात और मुलाकात करें रॉजर्स की बेस्ट डील्स के लिए 6478648000, 8648000। वकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: மீட் ரோஹித் தயஸ்மேன் அட் ரிட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் பிளானட், 5200 டிக்சி ரோட் மிசிசாகா, டெலிபோன் 905-232 ரிட்ஸ், தட் இஸ் 232-7489. விசிட் ரிட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் பிளானட்.ca.
1: சஸ்தா சமான் சஸ்தா நை, ஹை அண்ட் த சமான் மிலே சஸ்தா.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए. ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी.
5: वक्त जो है वो बदल चुका था. रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था. ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं. और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया. एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545.

हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। मित्र भाइयों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच देशवासियों से पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग ज्यादा करने, वर्क फ्रॉम होम करने के साथ एक साल तक सोना यानी कि गोल्ड नहीं खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश में सोने की मांग में काफी कमी आ सकती है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों कर रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि एक साल सोना न खरीदने से भारत की किस्मत कैसे बदल जाएगी। वैसे प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने को लेकर कहा कि जो भी रास्ते अपना सकते हैं उसे अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोने की खरीदी में विदेशी मुद्रा बहुत खर्च होती है। एक समय था जब संकट आता था तब लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमें ये तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें यह स्वीकार करके विदेशी मुद्रा बचानी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान युद्ध से पहले तक देश और दुनिया में सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल दिखाया था। 2022 से ही सोने में लोगों की दिलचस्पी कम हो रही थी। 2025 में ही सोने के दाम 60% बढ़ गए। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने को रिजर्व एसेट के रूप में बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व कम हो रहा है। हाँ जी बिंदर भाइयों, सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ सकता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री पर संकट आ सकता है। भारत में करोड़ों लोग इस उद्योग

निवेश पारंपरिक तरीकों से उठ जाएगा विश्वास। लोग डर के मारे अन्य संपत्तियों जैसे जमीन की ओर भागेंगे, जिसमें वहां महंगाई बढ़ सकती है। देखते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जी के सजेशंस का पालन किया जाता है और इसकी लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होती है। ये हिडन वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

है यहाँ टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, क्योंकि $3 बिलियन का ओवरहाउल वहां स्टार्ट हो गया है। वजह कैपेसिटी एक्सपेंशन, कह रहे हैं 2030 तक सालाना 65 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स का इनफ्लो होने वाला है वहाँ। इट इंक्लूड्स मॉडर्नाइज्ड रिटेल, टर्मिनल एक्सपेंशंस, ऑन टाइम एंड बेटर ट्रैफिक परफॉर्मेंसेस एंड बैगेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स भी। तो सोचा तो अच्छा ही है और शायद होगा भी अच्छा ही, पर इस अच्छे होने के सफर में ना प्रॉब्लम्स भी आएंगी। वो होता है ना कि कंस्ट्रक्शन जब होता है होता भले के लिए, या पर उस वक्त जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है और हम उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। बस वैसे ही अभी होने वाला है इफ यू आर गोइंग टू ट्रेवल, क्योंकि काम चालू होगा तो समस्याएं तो होंगी उस दौरान। ऑल्सो चर्चा में है वो रिसेंट मोदी जी का एड्रेस वहां भारत में जो उन्होंने नेशन के लिए किया, इट वॉज लाइक एन एडवाइजरी, क्योंकि उन्होंने कहा ये प्रोलॉन्ग शटडाउन जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, उसकी वजह से छोटे छोटे स्टेप्स अगर जनता ले लेगी वहां की तो कलेक्टिवली मिलके बहुत सारी समस्या से वो लोग पार पा सकते हैं, भारत का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे इन डिफिकल्ट टाइम्स। जैसे कि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, घर से काम कर सकते हैं, घर से पढ़ाई अगर जो हो सकती है तो वाई नॉट, कार पुलिंग करें, मुझे लगता है तो वैसे भी कर लेना चाहिए नहीं। ओवरसीज वेकेशन को अवॉइड करने की बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा थोड़ा सा डोमेस्टिक टूरिज्म भी इस बार बढ़ जाएगा भाई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सोना खरीदना अगर जरूरी नहीं है फिलहाल तो पोस्टपोन कर देना, और ये भी कहा कि कम तेल में खाना बनाओ भाई, सेहत में भी इजाफा होगा। ये बात तो सही है। एंड देन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को तवज्जो देना, ऐसा भी कहा, वो तो मुझे लगता है हर देश को देने चाहिए अपनी मेड इन दैट कंट्री को तवज्जो देना, जैसे कि हम यहाँ की बात करते हैं मेड इन कनाडा की, है ना। तो वेल आइडिया इज कि मिल मिलकर लेट्स कंजर्व आज फॉर अ स्ट्रॉन्गर कल। और चर्चा में है वेदर अगेन हियर, जहां फ्रॉस्ट एडवाइजरी हो चुकी है जारी ऑफ दैट येलो कलर। सो ऑन दिस क्विक अपडेट भरी नोट, दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कर सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि वैसे कल परसों पड़ सकती है हल्की फुल्की फुहार बरसात भी, पर वार्मर टेम्परेचर्स लौट आएंगे राइट ऑन फ्राइडे को ही, एंड यू भी मंडे से ही वीकेंड पर होती है अपनी नजर। और अब मौसम दे गया हम सबको एक और कारण।

0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
1: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी,
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
1: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्टो। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट वैल्यूएशन एट 416-843-7600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract. अच्छा, इस बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट अ डिजायर्ड प्राइस, तो माई रियल्टो के ब्रोकर ऑफ रेकर्ड संजीव मनोचा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत। बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यूं भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना, एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा। विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%, उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें। घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ हिज कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू thousands of dollars. Free consultation hai. Call kare 416-843-7600. Sanjeev Manocha from My Real Co. 416-843-7600 or visit myrealco.com.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: बिजनेस में ग्रोथ रुक गई है, हो सकता है आपका बिजनेस नेम या वास्तु सही सपोर्ट ना कर रहा हो। पन्ना शाह के साथ पाइए बिजनेस नेम करेक्शन, शॉप एंड ऑफिस वास्तु और बिजनेस ग्रोथ न्यूमरोलॉजी। सही नाम और सही दिशा दोनों बनाते हैं बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। आज ही व्हाट्सएप करें 4376733125, 4376733125 और पाइए 10 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
5: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
0: On your feet with Peppy Nukkad Beats.

Fresh Breeze New Release on CMR at 5 p.m. जवानी तो इश्क होना है. अभी ने कौन बताया कि जवानी हो ना हो, इश्क जब होना होता है हो ही जाता है ना. इट साउंड्स लाइक यू नो कंपल्सिव स्टेटमेंट जैसे होते हैं, पर ये गाना जब मैं सुन रही थी ना तो मुझे सलमान खान का वो गाना डेफिनेटली याद आया, है जवानी तो इश्क होना है. हाँ, तो यू आर राइट, वहीं से टाइटल उठा लिया इन्होंने फिल्म का. और सिर्फ टाइटल ही नहीं, गाना भी रिक्रिएट करके फिल्म में डाल दिया है. ये जब मैं टीजर ट्रेलर देख रही थी इसका फर्स्ट लुक वाला तो मुझे पता चला. हालांकि जो मैं गाना सुनवाने वाली हूँ वो अलग है. कमिंग बैक टू द टीजर ट्रेलर जो मैंने देखा, तो डेविड धवन की स्टाइल की जो सिनेमा होती है आपको वो पूरी वही फील आने वाली है. कभी बीवी नंबर वन याद आएगी, कभी साजन चले ससुराल याद आएगी, कभी जुड़वा फिल्म याद आएगी, मतलब डबल ट्रबल तो इसमें है ही. वरुण धवन डूइंग टू टाइमिंग करते दिखेंगे. अब वो जुड़वा है पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या वो है तो एक ही पर दे रहे हैं जुड़वा वाली मिसअंडरस्टैंडिंग, वो तो फिल्म देख के पता चलेगा. टोटल केओस है और केओस में आपको शायद मजा आएगा. एंड गाना जो मैंने चुना है, इट्स अ फुल ऑन रोमांटिक पेपी ट्रैक विद दैट अच्छी सी डांस वाली फील एंड बीट्स. अगर आपको मजा आता है थोड़ा सा अच्छे अच्छे म्यूजिक पे हिलने डुलने में, यू नो मूव एंड ग्रूव, स्टेबन बिन और जुनीता गांधी के वोकल्स हैं, वाइट नॉइस कलेक्टिव्स का सुना सुना सा म्यूजिक है बट विद यूथफुल एंड फ्रेश एनर्जी. वायु के ओके ओके लिरिक्स हैं. ओवरऑल गाना सुनने में अच्छा लगेगा, नाइस हुक, बट डेफिनेटली इट्स नॉट वन ऑफ दोज एवर लास्टिंग टाइप वाली धुन्स. तेरा हो जाओ इज द टाइटल ऑफ द गाना फ्रॉम है जवानी, इश्क होना है. लाइन अप नेक्स्ट.

0: breaking through the midfield.
1: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paaye double entries.
0: This is dangerous. Into the box.
1: Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paaye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: Quick reminder, आज भी है हमारा हर मंडे की तरह Unwind Your Mind segment with the therapist, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे registered social worker and psychotherapist प्रशांत शोरी जी. आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सवाल लोगों के लिए ही ये सेगमेंट बना है. इट्स अ कम्युनिटी सेगमेंट. स्टूडियो का नंबर रहेगा ड्यूरिंग द सेगमेंट 416-593-0055. आप अपना सवाल मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं at 647-830-5042. और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी डीएम कर सकते हैं अपना सवाल. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोनों पे मेरा हैंडल रहता है आरजे स्वाति टोरंटो. बहुत आसानी से मिल जाऊंगी. पर्सनल मैसेज में अपना सवाल भेज सकते हैं. अपना नाम बताने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप नहीं चाहे तो यू कैन कीप योर नेम एज अनोनिमस और सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं. नोबडी नीड्स यू नो कि आप कौन हैं पूछने वाले. बस आप सवाल पूछें और जवाब आपको मिल जाएगा. स्टूडियो में जब आप कॉल करते हैं ड्यूरिंग द सेगमेंट, तो हमारा टाइम इस सेगमेंट का रहेगा हर मंडे की तरह आज भी अराउंड 5:45 टू 5:50. जिन जिन को ये सेगमेंट आपको लगता है सुनना चाहिए, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा. तो मिलते हैं अनवाइंड योर माइंड सेगमेंट में टुडे एट 5:45, 5:50. स्टूडियो का नंबर अगेन 4-416-593-0055 एंड माई नंबर इज 647-830-5042.
3: अरे वही तो है.

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.
0: फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना. 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1500. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. कॉल अमित 6473412785, 6473412785 or visit amitkurana.com.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Winters में हमारे vehicles थोड़ी extra care और maintenance मांगते हैं और उसके लिए go to My Mechanic Auto and Tire. सभी तरह की mechanical repairs और tire services के लिए आप वहाँ किसी भी oil change और services के साथ get a complimentary winter maintenance inspection. Get a $20 off on all synthetic oil change services. Michelin tires के authorized dealer हैं ये. And you can get up to $150 rebate जब आप 4 नए tires खरीदते हैं. Insurance से ये direct deal करते हैं. Visit their Markham store at Midland and Steels और Scarborough store Midland and Elsmere. For details, visit mymechanicauto.ca. Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

कल ही निकला है मदर्स डे एंड आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी अपनी प्यारी प्यारी माँ के साथ मना ही लिया होगा, या जो यहाँ पर माँ जैसी लगती है, जिनको देखते लगता है अरे ये तो बिल्कुल मम्मी है ना, कई लोगों को देख के फीलिंग आती है, तो सेलिब्रेट कर लिया होगा। बट मैं ये भी देख रही थी कि कितने ही लोगों को ना मैं कहते सुनते देखती हूँ, सुनती हूँ कि ये सब कमर्शियल सियापा होता है, अंग्रेजों के चोचले हैं, हमारे में तो रोज मदर्स डे होता है। इनफैक्ट हम भारत के लोग तो सबसे पहले माँ भारती की बात करते हैं, और ये तो ही पूरे देश की बात जहाँ पे हम माँ भारती की बात करते हैं। कल्चरली बहुत सारे लोग हम में से गाय को भी माँ कहते हैं, है ना। तो एक दिन क्या ऐसे ना ऐसे लोगों का सकते हैं ये क्या चल रहा है, पर मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि रोजमर्रा की लाइफ में अगर माँ को अलग से एक्स्ट्रा तुमने टाइम दे भी दिया और उनके स्पेशल फील करा भी दिया इस बहाने ही सही, तो अच्छा ही है ना, फिर तो वाई नॉट, एक बहाना और सही। तो आप अपना टेक जरूर बताएं इस पर, क्या है आप भी ये सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं, या आप सोचते हैं कि नहीं नहीं अच्छा है इस बहाने हम भी एक बार माँ से और मिल लें, एक बार और बात कर लें, उनके फेस पे एक बार और स्माइल दे दें, उन्हें कुछ और गिफ्ट दे दें, है ना, कुछ और उनके साथ समय बिता लें, उनके लिए कुछ कर लें। शेयर योर थॉट्स विद मी, स्टूडियो का नंबर 416-593-0055।

एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.

0: ऑल राइट, आप सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कर सीएमआर 101.3 एफएम पर विद स्वाति एंड पायस्विनी, एंड एज प्रॉमिस्ड एंड दिस इज मंडे. हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रजिस्टर्ड सोशल वर्कर एंड साइकोथेरेपिस्ट प्रशांत शोरी जी इज विद अस. आपके कुछ सवाल भी हम तक पहुंच चुके हैं, उन्हें धीरे धीरे करके जरूर लेंगे. और अगर आपके सवाल हैं जो आपने अब तक नहीं भेजे हैं पर आप डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो बिना अपना नाम बताए आप सवाल पूछ सकते हैं. स्टूडियो का नंबर रहेगा 4165930055. नाम बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहें तो यू डोंट हैव टू रिवील योर आइडेंटिटी एट ऑल. सीधे सवाल पूछें, आपको जवाब या कुछ छोटा सा एक डायरेक्शन सजेशन ज़रूर मिलेगा ताकि आप अपनी उस प्रॉब्लम से जो कि टेम्परेरी हो सकती है, छोटी सी हो सकती है, डील कर पाएं प्रॉपरली. तो स्टूडियो का नंबर 4165930055. एंड क्विक रिमाइंडर कि आप प्रशांत जी से सेगमेंट के बाद डायरेक्ट बात कर सकते हैं इधर थ्रू हिज वेबसाइट विच इज iwantpeace.org. शांति हम सबको चाहिए. और या फिर उनके क्लिनिक का नंबर रहता है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं. क्लिनिक में कॉल करके आप प्रशांत जी के लिए पूछ के बात कर सकते हैं. फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ इनिशियल कंसल्टेशन जो होती है फ़ोन पर वो बिल्कुल फ्री होती है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं. नंबर टू कॉल इन द क्लिनिक इज 905-405-8224. वेलकम प्रशांत जी.
1: थैंक यू सो मच स्वाति जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन दिस शो.
0: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे फीडबैक मिलते हैं मुझे. मुझे कई बार एक चीज़ की बड़ी तसल्ली होती है कि जिस इंटेंट से हमने ये सेगमेंट स्टार्ट किया था उसमें हम कहीं ना कहीं सफल होते जा रहे हैं.
1: बिल्कुल.
0: नीयत सिर्फ ये थी कि बहुत सारे लोग हिचकते हैं अपने सवाल पूछने में या अपनी दुविधाओं के साथ जीते रहते हैं. उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कहाँ से मदद ली जा सकती है, कोई मदद एग्जिस्ट करती भी है या नहीं.
1: बिल्कुल.
0: और बहुत सारे लोग एक सोशल टैबू में जी रहे होते हैं
1: जी.
0: तो बहुत सारी चीज़ हमने पास्ट कुछ साल महीने में मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल हुए हैं जिस तरीके के मेरे पास फीडबैक्स आते हैं इस रिगार्ड में. और लोग सवाल पूछने के लिए जो कॉल कर रहे हैं मैं उनसे एक रिमाइंडर ज़रूर दूंगी, प्लीज़ बी पेशेंट विद अस. आप हमारे साथ होल्ड पे ज़रूर रहें, आपका सवाल मैं ज़रूर लूँगी. तो पहले प्रशांत जी मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, क्लिनिक पर जब कोई कॉल करे
1: जी
0: तो किस तरीके से आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है
1: जी? तो जो नंबर आपने बताया 905-405-8224, तो उस पे कॉल करके वो पूछें कि यहाँ पे काउंसलर सोशल वर्कर अगर है, मतलब प्रशांत शौरी जी से मुझे बात करनी है.
0: अच्छा.
1: और ज़रूरी नहीं कि उसी दिन उसी वक्त बात हो पाए, तो लेकिन वो आपका नंबर और आपको जो एक दो सूटेबल टाइमिंग्स हैं आप बता दें, तो उस पे फिर मैं आपको कॉल करूँगा. फर्स्ट 15 मिनट्स एज यू मेंशनड आर ऑलवेज फ्री, क्योंकि दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द क्लाइंट एज वेल एज फॉर द काउंसलर टू सी इफ इट इज़ अ परफेक्ट फिट. क्योंकि हर काउंसलर किसी चीज में काउंसलिंग देता है, किसी में नहीं भी देता.
0: जैसे डॉक्टर्स होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल, हैं बिल्कुल, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जी.
1: तो इसलिए और इसी तरह काउंसलर को भी पता लग जाता है कि क्या ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट क्लाइंट है, और क्लाइंट को भी पता लग जाता है. तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप 15 मिनट बात कर सकते हैं. और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई बार बात 10 मिनट में भी खत्म हो जाती है, कई बार 2-3 मिनट ओवर भी हो जाते हैं.
0: हाँ,
1: लेकिन
0: इट इज
1: अमूनन या सो इट इज़ अ नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज टू गेट to know each other better.
0: To know each other better and to know what suits them for future.
1: Yeah, और कई बार तो ये process ही नहीं पता होता. बहुत सारे caller तो इसलिए भी

0: कॉल करते हैं उनको, उनके लिए नई चीज़ है. जैसे हमने कई बार डिस्कस किया, इट इज़ स्टिग्मा इन अवर कम्युनिटी टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. ठीक है, तो कई बार तो आपको हेल्प चाहिए, आपको यही नहीं पता होता कि मुझे हेल्प चाहिए. ठीक है, और कई बार आप हेल्प के लिए बहुत गलत एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं.
1: अच्छा.
0: ठीक है, तो कई लोगों को लगता है कि ये मिरेकल है या कोई जादू है. ठीक है,
1: ऐसा
0: जादू
1: नहीं है,
0: टोना है.
1: हाँ. कि किसी ने आपको कोई मंत्र बता दिया या तो, कोई सोल्यूशन बता दिया कि ये कर लो जी वास्तु टाइप में, जैसे
0: बिल्कुल,
1: बता देते
0: बिल्कुल. डॉक्टर्स भी अगर मेंटल हेल्थ की दवाई देते हैं तो वो भी ये बोलते हैं कि 6 हफ्ते बाद असर शुरू होगा.
1: अच्छा.
0: ठीक है ना, तो इसलिए काउंसलिंग की क्या प्रोसेस है, उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, तो ये भी चीज़ें हैं जो हम उन 15 मिनट में कई बार डिस्कस करते हैं क्लाइंट्स के साथ.
1: वेरी नाइस. तो फ्री कंसल्टेशन का फ़ायदा मुझे लगता है सबको उठाना चाहिए. और फिलहाल मैं एक बिफोर आई हैव माय क्वेश्चंस रेडी फ्रॉम यू नो जो भी लोगों ने मुझे भेजे हैं, एक कॉलर है, हम ले लेते हैं व्हाट ही वांट्स टू आस्क.
0: जरूर.
1: हेलो जी. हेलो सर.
2: हेलो.
1: हेलो, डू यू वांट टू, व्हाट क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क?
2: Okay, I want to ask about something about the grief.
1: Grief?
2: If someone who lost his partner and he just going for through a grief period, so uska usko kis tarike se process kiya jaye, especially jab wo partner jo ho wo aapke bahut kareeb ho emotionally.
1: बिल्कुल ठीक. बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है सर. और मेरे ख्याल से इफ आई रिमेम्बर करेक्टली प्रशांत जी, हमने इस पे बात भी करी थी. हमारे पास सेम सवाल एक यू नो एक फीमेल पार्टनर का आया था किसी का बहुत पहले, एंड वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी प्रिवेलेंट क्वेश्चन जब सभी के साथ. थैंक यू फॉर आस्किंग. देखते हैं प्रशांत जी क्या बताते हैं आज. थैंक यू.
0: हाँ जी सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन. ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले तो जो ग्रीफ है उस ग्रीफ का ग्रीफ मत लें, उस ग्रीफ का एक स्ट्रेस मत बनाएं अपने लिए. ग्रीफ एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है और हमेशा ये याद रखें, ये कभी भी एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो लीनियर है, कि मान लीजिए किसी ने किसी लव्ड वन को लूज़ किया तो वो 2 महीने हो गए हैं तो अब कम हो जाना चाहिए ग्रीफ, या 6 महीने हो गए अब तक तो भूल जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो ग्रीफ की भी कभी भी किसी टाइमलाइन के साथ अटैच नहीं होता. तो इट डिपेंड्स हाउ यू प्रोसेस इट, उसके बेसिस पे आपको टाइम लगता है. और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रीफ भी होती हैं, खैर वो हम इतना डिटेल में अभी यहाँ बात नहीं कर पाएंगे. तो आप किस स्टेज ऑफ ग्रीफ पे हैं उस हिसाब से भी उसको ट्रीट किया जाता है. क्या आप बार्गेनिंग स्टेज में हैं, नेगोशिएशन स्टेज में हैं, एक्सेप्टेंस स्टेज में हैं, या अभी डिनाइल स्टेज में हैं, किस तरह की स्टेज में हैं आप ग्रीफ की, उस हिसाब से भी हम हेल्प करते हैं. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी क्विकली आपको जो एक दो टिप्स देना चाहूँगा वो यही है कि एक तो जैसे बहुत पुरानी कहावत है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल. ठीक है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अदर ह्यूमन बींग्स. तो आप ज़रूर अपने दोस्तों से, अपने परिवार में, अपने जानने वालों के साथ इन टच रहें, उनके साथ कम्युनिकेशन बंद या कम ना करें, और उससे और ज़्यादा आइसोलेशन और लोनलीनेस आती है और ज़्यादा नुकसान होता है. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, बिल्कुल भी अपने आप को खाली ना बैठने दें, क्योंकि उससे ग्रीफ आपको और ज़्यादा काबू कर लेता है. तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक केस, एंड इट डिपेंड्स अपॉन
1: इंटेंसिटी
0: ऑफ द ग्रीफ एंड स्टेज ऑफ द ग्रीफ. तो वो भी हम बाद में कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं.
1: तो 905-405-8224 इज द नंबर. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन.
0: और एक सॉरी वेरी क्विकली एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसमें, कि अगर आप ग्रीफ कर रहे हैं या किसी को मिस कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके जाने के बाद, ना रहने के बाद, बिछड़ने के बाद, तो वो साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, वो साइन ऑफ लव है. ठीक है ना, तो उसको आप, उस चीज़ को आप एक अपने आप में अपनी वीकनेस मत माने, उसको सेलिब्रेट करें एक ढंग से कि हाँ मैं उन को प्यार करता था, ठीक है, तो उस लिए मैं दुखी हूँ, तो ये एक अच्छी चीज है,
1: इसको मिस कर रहा,
0: हाँ, इसको एक नेगेटिव चीज मत बनाए,
1: क्योंकि हम कई बार ये इसको स्ट्रेंथ से भी रोल कर लेते हैं, एसोसिएट लोग कहते हैं नहीं हम नहीं रोएंगे या नहीं हम ये नहीं करेंगे, तो इट इज ओके टू लेट गो ऑफ योर इमोशंस, यू नो, लेट गो ऑफ योर टीयर्स, सॉरी, इमोशंस तो ठीक है रहेंगे, पर अगर जो कभी भी आप फील करते हैं तो खुल के बात करें, खुल के महसूस करें और उस पे उसको स्ट्रेंथ और वीकनेस के दायरे से बाहर रखें।
0: बिल्कुल।
1: चलें एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 एंड विल बी टॉकिंग अबाउट मोर टॉपिक्स टुडे।

0: लाइफ सही है, टेंशन नहीं है। अनवाइंड योर माइंड वाले सेगमेंट में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत शौरी जी। हर सोमवार की तरह सवाल आपके चल रहे हैं, जवाब उनके चल रहे हैं। स्टूडियो का नंबर है 4165930055। तो प्रशांत जी, अभी जो एक सवाल आया है वो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार में कोई है जो कि अल्कोहल प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी हम गाना भी सुन रहे थे कि हर बोतल पे बोलता है लाश होगी आज की, है ना?
1: ठीक ठीक।
0: तो वो कहते हैं कि अल्कोहल की बहुत प्रॉब्लम है उनके साथ, एंड वो ये बात स्वीकार नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम भी है, क्योंकि पीने वाले को प्रॉब्लम नहीं लगती है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब ये समस्या बन चुकी है। तो कहते हैं कि मैं मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मेरे परिवार के हैं, मेरे अपने हैं,
1: ठीक ठीक।
0: तो क्या किया जाए, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ उनको? पहली बात तो एक्सेप्ट शायद कराना, रियलाइज कराना कि नाउ इट इज अ प्रॉब्लम।
1: बिल्कुल ठीक,
0: यू नो, एंड देन फर्दर।
1: बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बहुत एक वास्ट टॉपिक है।
0: अच्छा।
1: और बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है इसमें। तो इसमें सबसे पहले तो खैर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, खैर ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, बेसिकली इट इज़ अबाउट डिनायल, ठीक है। ये क्वेश्चन,
0: अच्छा मुझे लगा ये एडिक्शन का है।
1: नहीं, एडिक्शन की डिनायल का,
0: एडिक्शन की डिनायल,
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो एडिक्शन की डिनायल स्टेज का है।
0: तो ये इट कैन बी, यहाँ पे केस अल्कोहल का बता रहे हैं
1: जी,
0: बट इट कैन बी एनी एडिक्शन की डिनायल,
1: एनी एडिक्शन की डिनायल। हाँ हाँ बिल्कुल। तो डिनाइल स्टेज को समझने से पहले, डिनाइल भी कई तरह का होता है, वो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले हमें ये भी अगेन एज आई मेंशन्ड अर्लियर के काउंसलिंग में हम यूनिक केस को लेते हैं।
0: अच्छा।
1: तो उनकी यूनिक नीड्स के हिसाब से उनको आंसर्स देते हैं, और
0: राइट।
1: तो इसलिए ये एक बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है, तो इसका बहुत जेनेरिक आंसर मैं दूंगा यहाँ पे। और अल्कोहल जो ऐसी चीज़ है, उसको अगर जो कोई कंज्यूम करता है, तो उसके पीछे हमेशा ही ये नहीं होता कि इट इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। कई बार आप बारीकी में जाएं तो इट कुड बी समथिंग विच द पर्सन स्टार्टेड ड्यू टू सम पास्ट ट्रॉमा, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्ट्रगल और द चैलेंजेस दैट द पर्सन इज फेसिंग बट इज अनएबल टू कोप अप विद, ठीक है। इट कुड बी अ रिलेशनशिप टर्मोइल, इट कुड बी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। और सबसे बुरी चीज़ क्या है कि बहुत बार जो लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, उनके लिए इसमें फंसना और आसान हो जाता है।
0: अच्छा।
1: तो उसको हम हमारी लैंग्वेज में कंकरेंट डिसऑर्डर्स बोलते हैं।
0: कंकरेंट
1: डिसऑर्डर्स, पीपल हु आर आल्सो गोइंग थ्रू सम एडिक्शन प्रॉब्लम्स एंड हु आल्सो हैव सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है। इट कुड बी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एनी अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज।
0: हम लोग तो वैसे ऐसे बोलते थे पहले, किसी का हमें पता चलता था कि वो उन्होंने स्मोकिंग या अल्कोहल स्टार्ट कर दिया बहुत ज्यादा अप टू दैट लेवल, तो हम लोग ये हंसते थे कि अच्छा आज कुछ आज खुश है तो चलो करते हैं, आज बहुत गम है तो चलो करते हैं, और आज करने को कुछ नहीं है तो चलो यही करते हैं।
1: मैं जब अपने अंडरग्रेड में था तो उसमें बहुत कॉमन चीज थी कि अगर जब रिजल्ट आता है जो फेल हो गया
0: वो भी
1: पीने जा रहा है, और जो फर्स्ट आया वो भी पी तो पीना कॉमन था।
0: हाँ, मतलब,
1: कारण कोई भी हो,
0: कारण कोई, तो अपने हम वजह ढूंढ लेते हैं जो हमें करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली जो डिनायल है इसमें, ये इन्होंने क्वेश्चन में जैसे कहा कि जो अल्कोहल प्रॉब्लम है तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली एक्सेप्ट आप तभी करने के लिए तैयार नहीं होते जब आप इसको प्रॉब्लम ही नहीं मानते,
0: right.
1: या आप डिनायल स्टेज में होते हैं। और कोई ना कोई और रीजन है, वो आप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिनायल 6 टाइप्स का है, हम क्विकली फटाफट उनके नाम तो बता ही देता हूँ। सबसे पहला होता है ब्लेम, ठीक है। वो कहता इधर द सर्कमस्टेंसेस और अदर्स, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जब अपने फला दोस्त को मिलता हूँ वो पिला देता है, हाँ, या हालात ही ऐसे चल जाए, पिलाई गई है, हाँ। और हाइडिंग में भी, डिनाइल में हाइडिंग में भी पीते हैं। अभी मेरी एक क्लाइंट थी, वो बता रही थी अपने अंकल के बारे में, वो कहती वो इतने डिनाइल में थे, जब उनके घर वाले बार बार उनको बोलने लगे आपको तो आदत पड़ गई, तो वो जॉब से आके जैसे गैराज में गाड़ी लगाते थे तो फटाफट 5 मिनट में, हाँ, इतनी ज्यादा पी लेते थे कि ही लॉस्ट हिज लिवर एंड इवेंचुअली ही लॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है ना। तो लेकिन वो मानते नहीं थे कि मुझे आदत है, ठीक है। और बींग डिसमिसिव, ये भी एक तीसरा सबसे बड़ा कारण है. उसमें यही है कि आप बार बार जो अपने पीने की आदत था उसको डाउन प्ले करते हैं. आप कहते हैं मैं तो ओकेजनली पीता हूँ, रोज थोड़ा पीता हूँ.
0: अच्छा.
1: ठीक है ना, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा गुड टाइम, गुड फील करने के लिए पी लेता हूँ, या वेकेशन पे पीता हूँ, या वीकेंड पे पीता हूँ, या थोड़ी तो पीता हूँ.
0: जैसे मुझे एक बार मिले थे, कोई कह रहा था कि हम लोग कभी ओकेजनली लेते हैं.
1: ओकेजनली.
0: एंड व्हेन वी से ओकेजन, आपका ओकेजन कितनी फ्रीक्वेंटली आता है?
1: बिल्कुल आया ही रहता है. ठीक है ना. और जो चौथा है इसमें वो है कि बीइंग डिफेंसिव. तो जो जब आप डिफेंसिव हैं, इसका मतलब आप डिनायल में हैं. जब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, आप बोल रहे हैं कि हाँ ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसका ये रीज़न है, आप जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं. और इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम जो अगली है वो है कंपेयरिंग विद अदर्स. हाँ, तो आप कहते हैं मैं उसके जितनी तो नहीं पीता हूँ, मैं सुबह ही थोड़ा शुरू हो जाता हूँ.
0: ठीक है ना,
1: हाँ उसको देखो
0: तो better.
1: हाँ तो आई एम बेटर. तो जब खुद को बेटर ही फील कर रहे हैं तो आप क्यों हेल्प के लिए जाएंगे. ठीक है. और इसमें लास्ट जो डिनायल का पार्ट है वो है मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस. तो आपने ये जो लास्ट पॉइंट है इसको प्रूव करने के लिए अभी गाना चलाया था.
0: अच्छा,
1: वो यही था. क्या था,
0: हर बोतल पे बोलता है लास्ट होगी आज की,
1: लास्ट होगी आज की. हाँ, तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं मैं तो बस छोड़ देनी है, मैं तो छोड़ने लगा हूँ. हाँ, और ये तो छुट्टी समझो, इसमें मुझे आदत तो है ही नहीं है, ये तो वैसे ही शौकिया पीता हूँ, कभी भी छोड़ सकता हूँ, लोग आप समझ लो अगले मंडे से छोड़ दूंगा. ठीक है, तो इसका मतलब भी डिनायल है. तो ये
0: कुछ टाइप्स आपने बताया कि किस किस, मुझे डिनायल्स उनके वाकई लग रहा था कि ये डिनायल्स डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आर लाइफ में ये हम सभी में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे चीनी खाना मनाए तो हम चीनी के लिए कर रहे होते हैं, हम सारे शौक होता है
1: चीनी के लिए, तो ऐसे
0: फैटी लीवर है तला हुआ मना करते हैं, तो भी सोचते हैं कि नहीं इतना नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं
1: चीनी के लिए. तो लोग गूगल से ढूंढ के ले आते हैं कि शुगर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन, अदरवाइज योर ब्रेन विल डाई. पर उनको ये याद नहीं रहता कि जो रोटी खा रहे हो उसमें आपके ब्रेन के लिए इनफ शुगर है,
0: इनफ रोटी में हो जाता है कार्ब्स.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: या तो हमें जो चीज करनी होती है ना बेसिकली, हम उसके लिए कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं.
1: और वही एक्सक्यूज डिनायल का दूसरा नाम है. और वही एक्सक्यूज आपको हेल्प लेने नहीं देता और उसी दलदल में और ज़्यादा धसाता जाता है. और मैं आई हैव अ डिस्क्लोजर हियर कि मैं बहुत ज़्यादा एडिक्शंस के साथ काम नहीं करता. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, सो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर दिस क्वेश्चन. बट आई इन माई प्लेसमेंट आई डिड सम वर्क इन एडिक्शंस. तो उसमें जैसे मैंडेटोरी या इनवॉलेंटियर मेम्बर्स आते हैं ग्रुप डिस्कशंस के लिए, तो जिनको छोड़नी होती है
0: जी.
1: तो उनमें से जैसे 10 लोग होते थे तो मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ खड़ा होता था, प्रेजेंटर कोई और होते थे. तो मुझे प्रेजेंटर ने एक बार कहा इन 10 से एक एक से जाके पूछो कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें आदत हो गई है. तो 10 में से 8 ने कहा नहीं नहीं मुझे तो ज़बरदस्ती भेजा, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मेरा ठीक चल रहा है. तो दैट इज डिनायल.
0: 10 में से 8
1: हाँ ऐसा बोलते थे कि हाँ मैं तो मजबूरी में आना पड़ा है. हाँ,
0: तो आना हाँ,
1: मेरे पे तो कोर्ट ने या कुछ भी कोई टिकट मिल गई है या कुछ भी, सो आई हैव टू डू दिस कोर्स टू शो द सर्टिफिकेट दैट आई हैव डन दिस कोर्स, अदरवाइज आई एम फाइन,
0: दे आर फाइन,
1: आई डोंट नीड हेल्प.
0: बेमन से आए हैं.
1: बिल्कुल.
0: चलें एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं. स्टूडियो का नंबर 4165930055.

0: வெல்கம் பேக். ஆப் சுன் ரே சிஎம்ஆர் 101.3 எஃப்எம் ஃபில்மி நுக்கர் ஒரு செக்மெண்ட் ஹே அண்ட் வைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் தெரபிஸ்ட். ஹமாரே சாத் ஹமாரே தெரபிஸ்ட் ஜுடே ஹுவே ஹே பிரஷாந்த் ஷோரி ஜி, ஹர் மண்டே கி தரஹ. அச்சா பிரஷாந்த் ஜி, ஹம் பாத் கர் ரஹே தே அடிக்ஷன் கி, அடிக்ஷன் பி நீ, ராதர் ஹம் பாத் கர்தே டினாயல் கி.
1: பில்குல் தே.
0: ஜப் ஆப் டினாயல் மூட் மே ஆ ஜாதே ஹே, ஆப்னே கயி தரீகே கே டினாயல்ஸ் பதாயே தே கி கேசே ஆப் பகட் சக்தே ஹே, கியா கியா ஹோதா ஹே, தோ இஸ்கோ வோ கஹ ரஹே தே மே ஹெல்ப் கேசே கர் சக்தா ஹூன்.
1: ஹான், தோ பேசிகலி டினாயல் को एक लाइन में अगर समराइज करें तो वो यही है कि जब आपको समस्या है पर आप मानने के लिए तैयार नहीं है.
0: हाँ.
1: और जब तक आप मानने के लिए तैयार नहीं है तब तक तो आपको उसका कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता,
0: क्योंकि कोई भी मदद नहीं कर सकता,
1: कोई नहीं मदद कर सकता. तो इसमें इनका यही क्वेश्चन था कि मेरे फैमिली मेंबर या जो भी फ्रेंड है जो मानने के लिए तैयार नहीं है,
0: तो आपका शॉर्ट में आंसर है कि जब वो खुद ही नहीं मानने को तैयार तो तुम कुछ नहीं कर सकते.
1: कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उस एक तो ये समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस हमारे सेगमेंट को शायद कोई वो भी सुन रहा हो जो डिनायल में हो. ठीक है ना,
0: मुझे तो मैं सुन रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैं सुनते सुनते कई बार अपने आप से कोरिलेट करने लगती हूँ, तो मुझे लगता है अच्छा मैं शायद इस चीज के डिनायल में तो नहीं हूँ, यू नो.
1: हाँ बिल्कुल,
0: इफ नॉट दिस एडिक्शन मे बी समथिंग एल्स.
1: तो डिनायल का रीजन जो है वो है शेम और स्टिग्मा, बेसिकली. सबसे सिंपल डिनायल में ये लगता है कि लोग समझेंगे कि मैं शराबी हो गया हूँ. ठीक है. अच्छा. ना, लोगों को कैसा लगेगा, फैमिली को कैसा लगेगा, अब तक तो मैं उनको कहता रहा कि मेरे कंट्रोल में, अब तो फिर वो भी मुझे ताने देने लगेंगे कि भाई अगर कंट्रोल में ही थी तो अब तुम्हें हेल्प लेने के लिए क्यों जाना पड़ रहा है. ठीक है ना, तो ये जो स्टिग्मा है, ये जो शेम है, ये इस एडिक्शन से भी बड़ी प्रॉब्लम है.
0: हम कहते हैं हिंदी में, अपनी मम्मी पापा की भाषा में, तुम ढीठ बन जाते हो.
1: हाँ, ढीठ बन जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि अब
0: हाँ, इससे मेरी हम गड़बड़ है, लेकिन हम तो उनके सामने टिके रहेंगे अपनी बात पे और यही करते रहेंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. और थोड़ा सा जो अल्कोहल है ये कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू अदर एडिक्शंस इट इज सोशली एक्सेप्टेबल कंपैरेटिवली. ठीक है ना, तो इसलिए ये भी एक वो है कि इसका बिहेवियर कब आपकी एडिक्शन बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता.
0: right.
1: ये भी एक कारण है स्टिग्मा का, मतलब डिनायल का, कि आप मानने को तैयार ही नहीं होते,
0: आपको पता ही नहीं है, खुद ही नहीं पता,
1: खुद ही नहीं पता है. ठीक है ना.
0: अच्छा, ये भी तो हो सकता होगा कि हमें पसंद है, कुछ लोग इंजॉय इतना करते हैं उस चीज को कि उन्हें लगता है कि यार एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ सकता है, तो और वो जो इच्छा है जो उसे पसंद करता है तो वो कैसे उसको
1: छोड़ेगा,
0: कैसे छोड़ेगा.
1: तो इसमें उनके दोस्त के लिए मेरी यही एक राय है, उनके लिए जो अपने दोस्त की हेल्प करना चाहते
0: जी,
1: हैं
0: जी.
1: कि सबसे पहले तो खुद को एजुकेट करें थोड़ा सा इसके बारे में कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर होता क्या है.
0: अच्छा.
1: किसी चीज के यूज और अब्यूज में क्या फर्क है. ठीक है ना, किसी चीज के यूज और एडिक्शन में क्या फर्क है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करें. ठीक है, और क्योंकि आप तभी जितना ज़्यादा समझेंगे तभी आप उतनी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे.
0: right.
1: और दूसरा ये है कि आप जब भी अपने दोस्त से बात करें तो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें इसके बारे में. उनसे पूछें हाउ डू यू फील आफ्टर यू ड्रिंक, है ना, एंड हाउ डू यू फील नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड व्हाट डू यू थिंक दैट योर फैमिली मेंबर्स कुड हैव फेल्ट. ठीक है ना, एंड हाउ डू यू थिंक योर वाइफ और हस्बैंड जो भी है इज टेकिंग दिस. ठीक है ना, व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पैक्ट ऑन योर फैमिली. तो इस तरह की चीजें उनसे
0: नहीं होता तो कैसे बेटर और होता.
1: हाँ
0: हाँ, उसको
1: तो यस नो वाले क्वेश्चंस ना पूछें, इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दें कि तुम बहुत पीते हो, तुम्हें प्रॉब्लम है. ठीक है ना, उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछें कि यार तुम पीते हो तो उससे तुम्हारी नींद तो नहीं इफेक्ट होती. ठीक है, तो नींद पे क्या असर करती है ये. ठीक है ना, तुम्हारे रिलेशनशिप्स पे क्या असर कर रही है. हाँ. ये तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है.
0: हाँ.
1: तुम्हारी ड्राइविंग कैसे चल रही है, तुम्हारी हेल्थ कैसी चल रही है.
0: right.
1: तो इस तरह के क्वेश्चंस आप उनसे पूछें,
0: तो उनको रियलाइज भी हो जाता है व्हाइल दे आर आंसरिंग कि या देयर इज अ प्रॉब्लम.
1: इट विल गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू डिग लिटिल डीपर विद इन देमसेल्व्स एंड टू अंडरस्टैंड इफ इट इज समथिंग रियली वर्थ, है ना,
0: टेकिंग
1: केयर ऑफ. तो उसमें एक और भी चीज़ है कि आप उनको, अगर आपके इतने क्लोज हैं, आप उनसे कॉन्वर्सेशंस में ये भी बताएं कि हाउ डू यू फील अबाउट इट, अबाउट योर फ्रेंड्स दिस हैबिट. उसमें अपने पे लें, उस पर ना कहें वही कि तुम पीते हो की बजाय, कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुख होता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी हेल्थ ना कहीं ख़राब हो जाए, मुझे स्ट्रेस होता है तुम्हारी हेल्थ के बारे में सोच के, और मैं तुम्हें और ज़्यादा सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कहीं तुम्हें ख़राब ना कर रही हो, ठीक है ना, अपने पे लेके बात करें,
0: ठीक है।
1: तो उससे एक तो बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम बहुत जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, तो इससे वो डिफेंसिव होने का मौका नहीं देंगे आप,
0: डिफेंसिव होके डाल के कहीं नहीं रहे,
1: हाँ डिफेंसिव होके तो आप गलत को भी ठीक, हाँ आई स्टेटमेंट है ना,
0: हाँ आपने बोला,
1: आई एम वरीड, आई वांट टू सी यू सक्सीड, सो इस तरह की लैंग्वेज यूज करें। और एक डेफिनेटली आप उनको ये कहें, अगर आप उनको कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हें आदत तो नहीं हो गई है, वो कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं हुई है बिल्कुल भी, तो आप उनको थोड़ा बातों बातों में ऑफर करें या एनकरेज करें कि कुछ सपोर्टिव रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्यों ना हम
0: जस्ट एक्सप्लोर कर लें,
1: एक्सप्लोर कर लें या तुम कर लो, ठीक है, एक्सप्लोर करने में क्या हर्ज है,
0: हाँ।
1: कुछ इन्फॉर्मेशन ही पढ़ लो इसके बारे में,
0: हाँ।
1: क्या पता कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि एडिक्शन नहीं है पर तुम उस कैटेगरी में हो जिसमें एडिक्शन होती हो,
0: हाँ।
1: तो किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके कुछ देखने की कोशिश करते
0: राइट,
1: हैं
0: राइट।
1: तो आप जब रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो मैं एक ही तो मैं एक ही बताऊंगा जिसमें सारी लिस्ट है, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक वेबसाइट है CONNEX, मुझे लगता है कनेक्ट से इन्होंने कनेक्ट इस तरह से बनाया, CONNEX Ontario,
0: ओके,
1: तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ये डायरेक्टरी है, ये मुझे देखना पड़ेगा अभी,
0: okay,
1: देख लेते
0: हैं। तो कॉनेक्स ऑन्टारियो करके
1: .ca जी,
0: कॉनेक्स ऑन्टारियो .ca इज द वेबसाइट, इस पे जाएंगे तो इसमें बहुत सारी अदर रिसोर्सेज
1: मिल जाएगी, सारे ये बेसिकली डायरेक्टरी है एडिक्शंस के लिए, इसमें अल्कोहल एडिक्शंस के साथ और एडिक्शंस के बारे में भी है इन्फॉर्मेशन, तो और इनका टोल फ्री फोन नंबर जो 24 hours 7 days a week
0: है
1: वो भी है 1-866-531-2600 1-866-531-2600 तो कनेक्ट ऑन्टारियो पे जाके आप, बहुत कैमेज हैं यहाँ पे, बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं जिनमें प्रोग्राम्स हैं, बहुत प्रोग्राम्स हैं अल्कोहल पे,
0: और
1: तो
0: इस आधे पेड और फ्री बाय गवर्नमेंट,
1: हाँ जी मोस्टली फ्री होते हैं,
0: ये
1: मोस्टली फ्री होते हैं, हाँ बिल्कुल। और जो लोग अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं वो हमेशा दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो अपनी इच्छा से आए हैं, एक जिनको जबरदस्ती भेजा
0: है।
1: गया है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि या तो उन्होंने कोई एक्सीडेंट किया है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व है, कुछ भी उनको लीगली एक तरह से फोर्स किया जा रहा है आने के लिए। तो मैं तो हमेशा सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा वॉलंटियरली जाएं,
0: हाँ, जाना पड़ेगा तो वॉलंटियरली चले जाएं,
1: हाँ जब मतलब वॉलंटियरली ही जाएं,
0: हाँ,
1: ताकि फिर इनवॉलंटियरली ना जाना पड़े,
0: राइट,
1: ठीक है ना, हाँ, नहीं तो इनवॉलंटियरली जाना पड़ सकता है,
0: हाँ,
1: तो कोई भी चीज अपनी इच्छा से हम करते हैं तो
0: बेटर है
1: और एक
0: रिजल्ट्स बेटर मिल जाते हैं,
1: हाँ बिल्कुल। और एक लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि आपके दोस्त आपको कहते हैं कि ठीक है मुझे 2 दिन हो गए, मुझे 3 दिन हो गए आज, देखो पहले तो मैं रोज लेता था, तो उस समय उनके साथ उन छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट कीजिए, ना कि उनको डिस्करेज कीजिए कि
0: मैंने,
1: हाँ और नहीं और ये मत करिए कि मैंने तो 3-3 महीने बाद दोबारा शुरू करते हुए देखे हैं,
0: अच्छा,
1: तुम्हें तो 3 दिन ही हुए हैं,
0: अभी देखते हैं,
1: हाँ देखते हैं, ऐसा मत करिए उनको, आप बल्कि उसके लिए एनकरेज करिए और उनके बिहेवियर को और ज्यादा वैलिडेट कीजिए, ठीक है, और उनको ताकि उनको लगे कि उन्होंने कुछ अचीव किया है उन 3 दिनों
0: में, देयर इज मोर टू, दे कैन डू मोर,
1: बिल्कुल। सो इस तरह का बिहेवियर जो है उनको उनकी रिकवरी में और उनकी सपोर्ट में और ज्यादा एनकरेज करेगा,
0: जर्नी में हेल्प करेगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: वेरी नाइस, तो आज हमने एडिक्शन एंड डिनाइल्स की बात करी है, बात बेशक क्वेश्चन जिनका आया था वो अल्कोहल से रिलेटेड था, आई होप आपको अपने कुछ टिप्स जरूर मिल गई होंगी, पर मैं ये यहाँ पे फिर याद दिलाना चाहूंगी प्रशांत जी की तरह कि जो हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन लेके जो भी आंसर्स देते हैं दे आर नॉट फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल, क्योंकि वो तो मिलके ही पता चलता है उनसे बात करके, उनकी कंडीशंस देख के, उनकी सिचुएशंस देख के, ये बहुत जेनरिक आंसर्स होते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं. अगर आप घर में सिर्फ इन्हीं बातों के बेसिस पे ट्राई करना चाहते हैं, इट वर्क्स फॉर यू, कोशिश यही है कि आपकी हेल्प यहाँ पे भी की जाए. बट अगर आपको ज़रा भी लगता है कि इट इज़ नॉट ब्रिंगिंग मच ऑफ ए चेंज एंड यू नीड रियल हेल्प, तो आप किसी भी साइकोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं. यहाँ पे तो हम प्रशांत जी का ही नंबर देंगे आपको, 9054058224. आप जो भी सवाल हैं आपके, उनकी वेबसाइट पे जाके भी पूछ सकते हैं. यू कैन कीप योर नेम एनोनिमस. वेबसाइट इज iwantpeace.org. थैंक यू प्रशांत जी, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं.
1: थैंक यू स्वाति जी.
0: थैंक यू.

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 PM, your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
1: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com
2: ਮੱਜਾ ਮਾਲਵਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੋਰ
3: ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੋਰ
4: ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੋ ਠਾਕਾ ਚੁੰਨੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਾਗੋ ਮਿਲਨੀ ਔਰ ਬਾਰਾਤ ਸੇ ਡੋਲੀ ਤੱਕ ਕਾ ਸਾਰਾ ਸਜਾਵਟ ਕਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ 30 ਮੈਲੇਨੀ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ 9 & 10 ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੈਲੀਫੋਨ 905-799-9400
2: ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸਟੋਰ
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353 दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353 647-453-5353
6: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
7: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
8: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
7: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
9: He's breaking through the midfield.
10: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री आज ड्राइव करें कल जीते Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
11: FIFA के टिकट चाहिए घर तो जाए Don Valley North Hyundai पर अब पूछो वहाँ क्यों उन्होंने खूब समझाया हम सबका मन अब देखो ना FIFA के टिकट लेना कोई छोटी बात थोड़ी है मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग फॉर अ साधारण इंसान है ना पर Don Valley North Hyundai के साथ ये हो सकता है आसान अब पूछो कैसे एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st दैट्स अ डेडलाइन और फिर ड्रॉ होगा जून में जिनके नाम निकल आए उनको मिल जाएंगे टिकट्स FIFA के अगर आप मुझसे कोई भी Hyundai कार लेते हैं ना तो दो टिकट जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे देखिए ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको FIFA टिकट्स मिल पाते हैं और Don Valley North Hyundai ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए अब आपको करने अपने प्रयास जल्दी जाए एट Don Valley North Hyundai Woodbine Avenue Markham फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम
12: Let's turn it up.
13: Let's kick it up.
14: Let's shake it up.

देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com। फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 ईयर्स फिक्स 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट अमित खुराना.com।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: आपकी दुकान या बिजनेस का सही नाम और सही वास्तु ला सकता है सक्सेस, क्लैरिटी एंड ग्रोथ, क्योंकि सही नाम और सही दिशा बनाते हैं किसी भी बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। तो बिजनेस का नाम करेक्ट करना हो या शॉप ऑफिस का सही वास्तु या बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी का यूज, कॉल पन्ना शाह एट 4376733125। 10 मिनट की कंसल्टेशन एकदम फ्री है। कॉल टुडे एट 4376733125।
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: घर कहीं भी लेना हो

0: yes, yes. Say it again.
1: ये खुद का खुद के लिए मान लेना कि आई एम द बेस्ट, क्या ये ईगो है, अहंकार है, सेल्फ लव है, या अपनी खुद के लिए एक यथार्थपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है? बोलो तो. पर मुझे तो नहीं पता, क्योंकि इन सभी में ना एक बहुत ही फाइन लाइन होती है. कब यहां से वहां, वहां से यहां ये क्रॉस कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है ना. टुडेज वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे मैं देख रही थी, और यही बताते हुए कि भाई मैं आई इन सब से बाहर निकलो जनाब, तभी तो खिलेगा ना रिश्तों का गुलाब. देखो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, इनमें भी मुझे लगता है कई बार पता ही नहीं चलता कब सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते करते हम ईगो की तरफ चले जाते हैं, और कब ईगोइस्टिक ना हो जाएं हम ये सोचते सोचते अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी लूज कर जाते हैं, होता है ना. Well, the key is, I guess, कि एक पतली सी लाइन है दोनों में, सेल्फ रिस्पेक्ट को खोने नहीं देना और ईगो को हावी होने नहीं देना. और कभी कभी अगर माफी मांगने से, पहल करने से, अपनों से रिश्ते मधुर बन सकते हो ना, तो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचने का, बस इतनी सी बात है.
2: On this musical note, this is Swati signing off for now. Milte hain jaldi hi.
3: Ararararara, todo na dil beqarar ka. Maan jao ji, chodo ye dil lagi. Maan jao ji, chodo ye dil.

0: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका की तजावीज पर तेहरान के जवाब को कचरे से तशबीह देते हुए कहा है कि जंगबंदी इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है। उनका कहना था कि ईरानी क़यादत बेईमान है और बार बार अपना जहन बदलती है। उधर ईरान की वजारत खारजे के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए ईरान की जानिब से पेश की गई तजवीज़ एक जिम्मेदाराना पेशकश थी। उनका कहना था कि हमारी मुसल्ह अफवाज किसी भी तरह की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि हम कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे। बातचीत या मुजाकरात का मतलब शिकस्त तस्लीम करना या पसपाई नहीं है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान आर्जी तौर पर यूरेनियम अफजूदगी रोकने पर आमादा है मगर अमरीकी पाबंदी मानने से इनकार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी जंगबंदी तजावीज मुस्तरद करने पर आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया। पाकिस्तान ने बन्नू में दहशतगर्द हमले के मामले पर अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है जिसके नतीजे में 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए। मौलाना फजलुर्रहमान ने कहा है कि दो सूबे बद अमनी का गढ़ बन चुके हैं, क्या हम सिर्फ मारका हक का जश्न मनाते रहेंगे और लोगों को मरते रहने के लिए छोड़ देंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकजई ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक हफ्ते में इमरान खान का दुरुस्त इलाज न हुआ और मुलाकातें ना कराई गईं तो पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। ढाका टेस्ट के चौथे दिन खेल के अख्तिताम पर बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बना लिए हैं और पाकिस्तान पर 179 रन की सबकत हासिल कर ली है। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें जुबैरुद्दीन साहब के लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबते के नंबर 4165930003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 202.45 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान में एमसीबी की 1100 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट कर लीजिए, वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondalbrothers.com पर आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 202.45 रुपये। कॉल कर लीजिए 9053060000 9053060000। मंडे अंजुम कुरेश साहब हमारे साथ हुआ करते हैं, इसलिए गेम के वाले से गुफ्तगू करते हैं। मॉर्गेज की मालूमात शेराज हुसैन साहब तक पहुंचाएंगे। डेट कंसल्टेशन के वाले से अहमद मलिक साहब हमारे साथ होंगे। शैला जाफरी साहब से भी आप मुलाकात करेंगे, ईद फेस्टिवल के वाले से गुफ्तगू करेंगे। कनेडियन इंग्लिश एयरलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें होंगी, लेकिन इस सबको सुनने के लिए आप हमारे साथ रहना है। अब से 9 बजे तक मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे शर पर सामने तारीफ सुनने की तमन्ना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन इस कमजोरी के अंदर बाज़ुकात इंसान की ताकत भी पिनहा होती है। तारीफ सुनने की आरजू में इंसान के अंदर का खाबीदा फनकार बेदार होता है। फनकार अपने फन का मुजाहरा करता है, खराज तहसीन वसूल करता है। फन की वफा ही तारीफ के दम से है। तारीफ ना हो तो फिर फन अफसरदा हो जाता है। इंसान की सिफात तारीफ की मतकाजी हैं, खुशामद नहीं तारीफ। खुशामद बगैर सिफत के तारीफ है। खुशामद उस बयान को कहते हैं कि जिसके देने वाला जानता है कि वो झूठ है और सुनने वाला समझता है कि वो सच है। खुशामद सुनने का तालिब मरीज है और खुशामदी इस मर्ज़ में मज़ीद इजाफा करता है। तारीफ ना हो तो शायद दुनिया में इतना हंगामा भी ना हो। लोग नाजायज़ दौलत जायज़ नाजायज़ दौलत कमाकर घरों को सजाते हैं, कमकमें लगाते हैं, रोशनियाँ करते हैं, फिर दूसरों को और दोस्तों को दावत देते हैं। तारीफ होती है, फिर होती रहती है, घरों में चरागा रहता है, दिल अंदर से भुज जाते हैं। माल की तारीफ, माल की नुमाइश की तारीफ इंसानों को अंधा कर देती है। जिस इंसान में ज़ाती सिफात ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक हर शय की तारीफ चाहता है। तारीफ की तमन्ना इंसान को बड़े कुर्ब में भी मुबतला कर देती है। वतन में तारीफ सुनने की तमन्ना में इंसान परदेश तक जा पहुँचता है। माल कमाता है, परदेश की अजियत बर्दाश्त करता है, उसके घर वाले दौलत का इजहार करते हैं, तारीफ सुनते हैं, वो परदेश में तन्हाई की भट्टी में चलता है। साल में एक दफ़ा वतन आता है, दोस्तों को जमा करता है, माल खर्च करता है, तारीफ सुनता है, फिर आज़ुर्दा खातिर परदेश की अजनबियत के हवाले हो जाता है। तारीफ़ सुनने वाले इंसान की इस्लाह उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक तारीफ करने वाले की इस्लाह ना हो। बहरहाल तारीफ़ हद से नहीं बढ़नी चाहिए। तारीफ के बाब में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो मकाम है जब कोई कम ज़र्फ़ अपनी ज़ुबान से अपनी तारीफ़ कर रहा हो। यह अजाब है, कोई आईना उसे अजाब से नहीं बचा सकता। तारीफ़ जहाँ इनाम है वहाँ सज़ा भी है। تعریف صفت ساز بھی ہے اور صفت شکن بھی، لیکن اپنے منہ سے اپنی تعریف اپنی انسانیت کی تذلیل ہے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کو ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
4: हाँ जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी वाकई रब्ते का नंबर। खुदा न खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, कॉल कर लीजिए 416-570-0157। मैक्सिमम कंपनसेशन आपको मिल जाएगी जब फीस आपका केस सेटल हो जाता है, एक्सीडेंट क्लेम की फीस उसके बाद आपको देनी होती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है, वेरी रिनाउंड लॉ फर्म, जिसके साथ बहुत अरसे से अंजुम कुरैशी साहब काम कर रहे हैं इसी प्रोफेशन में, फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। और एक्सीडेंट क्लेम के हवाले से कोई भी मामला है, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, नंबर अपने पास महफूज करें 416-570-0157। हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदेद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जब भी आते हैं आपको अवेयरनेस देते हैं, बताते हैं कि एक्सीडेंट हो जाना, हादसा हो जाना कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारा, एक इंसान जब एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है तो ना सिर्फ वो पर्सन खुद इन्वॉल्व होता है बल्कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो सफर करती है। लेकिन हम जो गलतियां करते हैं उसकी वजह से पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है कि अगर आपका कार एक्सीडेंट हुआ और आपको कहा जा रहा है कि आप कलिजन सेंटर चले जाओ, आपने उस वक्त अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ सही तरीके से शेयर नहीं की, आपने डॉक्यूमेंट नहीं देखे, और फिर जाके आपको पता चलता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें कोई जरा सी भी गलती है, तो एक एक नुक्ते की गलती से जुदा से खुदा बन जाता है। और इंश्योरेंस कंपनी किसी भी गलती को इग्नोर नहीं करती, और अगर आपके पास तमाम तरह चीजें नहीं है तो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी आपको बेनिफिट देने के लिए तैयार नहीं होती। इसी तरीके से जब आप एक लॉयर के पास आते हैं और लॉयर को जाके जब आप बताते हैं कि कार एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो एविडेंस है जिसके बिहाफ पे एक लॉयर काम कर रहा है, लेकिन जब आपके एविडेंस ही पूरे कंप्लीट नहीं होंगे और आप नहीं बता सकेंगे सब कुछ, तो फिर इस वजह से एक लॉयर को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और यहाँ तक भी होता है कि हो सकता है कि हम आपको मना कर दें कि हमें एविडेंस पूरे तरीके से नहीं मिल रहे तो हम आपके कार एक्सीडेंट में आपकी मदद नहीं कर सकते। जबकि मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि हर शख्स जो यहाँ पर रहता है वो बहुत मेहनत से अपना पैसा कमाता है और बहुत मेहनत से अपनी इंश्योरेंस पे करता है, और जब आप अपनी इंश्योरेंस पे करते हैं तो एक वादा इंश्योरेंस कंपनी आपसे लेती है कि आप हर महीने अपना प्रीमियम वक्त पे करोगे, ताकि अगर कोई कार एक्सीडेंट होता है तो आपको बेनिफिट दिए जाए, आपको जहनी सुकून के साथ आपको जो आपका हक बनता है वो आपको पैसे दिए जाए, या आपकी वो तमाम तक टेक केयर की जाए जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे वादा किया था। लेकिन आपकी गलतियों की वजह से बहुत कुछ आप अपने हाथ से ही खो देते हैं, और जब वक्त आता है उस इंश्योरेंस को इस्तेमाल करने का तो आपकी गलतियां आपके आगे आती हैं, और फिर आपको वो बेनिफिट जिसके लिए तमाम जिंदगी जो है ना आपने अपने आप को समझा कि मुझे ये प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और इंश्योरेंस पे की, वो तमाम तरह चीजें आपको नहीं मिलती। मेरा काम आपको अवेयरनेस देना, आपका काम इन बातों को याद रखना। जब भी रेडियो पर आते हैं आपको बताते हैं कि जब भी कार एक्सीडेंट का जिक्र होता है तो लोगों को ये फिक्र होती है कि हम लॉयर की फीस कहां से देंगे, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी फीस अपफ्रंट नहीं देनी पड़ती, बल्कि हम आपसे अपनी फीस उस वक्त लेते हैं जब एक लॉयर आपका केस सेटल करता है, और जब आपका केस सेटल होता है तब जाकर एक लॉयर अपनी मेहनत की फीस वहां जाकर लेता है। तो यानी कि आपको कोई भी चीज अपफ्रंट नहीं देनी पड़ी और कानूनी मदद भी पूरी भरपूर मिल रही है। किसी भी कार एक्सीडेंट में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी। अरशद, आप एक दफा इंग्लिश में, उर्दू में मेरा नंबर बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।
4: बहुत शुक्रिया आपका, फ्राइडे आपसे फिर बात करते हैं। 416-570-0157, 416-570-0157, 416-570-0157 पे आप अंजुम कुरैशी साहब से रब्ता कर सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। सदर ट्रंप ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है, और उनका यह भी कहना है कि ईरान का मसला हल होने के बाद आर्मी मार्केट में تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ گر جائیں گی. آج قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لک ایسا رہا ہے کہ شاید کوئی چھوٹا سا آپریشن شاید امریکہ سوچ رہا ہے. اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی شاعری.

अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने ही जाबों में मिले। अब न वो मैं हूं न तू है, ना वो माजी है फराज, अब न वो मैं हूं न तू है, ना वो माजी है फराज, जैसे दो साए तमन्ना के सराबों में मिले। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले।

0: सिर्फ मॉर्गेजेस. दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार. मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार. मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा. तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं. कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट 9058191001 9058191001. License number 12374.
1: Bride of Miss Saga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में. Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर. चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ. खूबसूरत कुशादा पैटियो. Barbecue Tonight Restaurant, 9052680088. It's 9052680088. Highway 10 or Dundas intersection, Mississauga.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough Main, 2155 Lawrence Avenue East, Lawrence or Bridgemount ka intersection, 416-757-9999. Daanton ki koi bhi bimari ho, aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye. Tamam insurance plan accept karte hain. Insurance na rakhne walon ke liye special discount. Root canal treatment aur retreatment ke specialist hain. Mississauga location 1110 Bloor Street East, Bloor or Dixie ke intersection, 905-232-5678.
4: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं. इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं. साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा. डेडलाइन इज कमिंग सून. अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं. मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 9057831922. It's 9057831922.
5: जी हाँ, 9057831922. अहमद मलिक करसमाफ. जी अहमद मलिक साहब, इस हवाले से दो दहाइयों से ज़्यादा अरसे का इनका तजर्बा है. हज़ारों की तादाद में लोगों के कर्ज़ माफ़ करवा चुके हैं. खुदा न खास्ता आप कर्ज़ के बोझ तले आ गए हैं. अपनी गलती से, किसी की गलती से बिल्कुल परेशान हो. हुकूमत आपको ये मौका फराहम कर रही है कि आप अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अपने कर्ज़ को मैक्सिमम माफ़ करवा सकते हैं. अगर ऐसा कोई मामला है, सीबा लोन का मामला है, कोई कॉरपोरेशन के कर्ज़ हैं, किसी किस्म का भी मामला हो, आप अहमद मलिक साहब को 9057831922 पर रब्ता कर लीजिए. हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे. मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम.
6: जी वालेकुम सलाम अशरफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. और बिल्कुल जिस तरह आपने बताया है, हमारे ये ऐसे कोई लिसनर हैं, अगर आपने किसी तरह के क्रेडिट कार्ड आपने यूज कर लिए हैं, कोई आपने लाइन ऑफ क्रेडिट कंज्यूम किए हैं जो अब आपसे पे नहीं कर पा रहे, आपने किसी तरह का कोई बिजनेस लोन लिया है, कोविड के टाइम पे आपने कर्जे लिए हुए हैं, या सबसे बड़ी परेशानी का जो इस टाइम बाइस बन रहा है हमारे जो ओनर ऑपरेटर भाई हैं अर्शद भाई, उनको इस टाइम सीआरए की तरफ से बहुत ज्यादा ऑडिट मौसूल हो रहे हैं पिछले गुज़िश्ता सालों के. तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप पे कोई ऐसा कर्जा आपके जिम्मे निकल रहा है जो आप पे नहीं कर सकते, तो फिर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं. हमारी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है और हर चीज को, इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने की मैं गारंटी करता हूँ. आपका कर्जा 75% तक माफ करवाया जा सकता है और बाकी के रहते कर्जे पर एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट लगवा के आपको एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू करने में आपकी हेल्प की जा सकती है. इसके साथ साथ अशरफ, तमाम वो दोस्त जिन्होंने कोविड के टाइम पे सीबा का लोन लिया हुआ है और अभी तक पे नहीं किया और खाली आप इंस्टॉलमेंट दे के पे कर रहे हैं, तो याद रखें जी, गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिवली सीबा लोन की कलेक्शन के लिए अब उन्होंने काम शुरू कर दिया है. तो अगर आपने सीबा लोन अभी तक नहीं अदा किया, कॉरपोरेशन पे लिया हुआ है, तो फिर आप फौरी तौर पर मेरे साथ रब्ता कर लें. आपके क्रेडिट को अफेक्ट किए बगैर आपको सीबा लोन से निकलने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. 905 783 1922 میرا کانٹیکٹ نمبر ہے ارشد بھائی, ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ.
5: تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب, اور فرائیڈے انشاءاللہ آپ سے پھر بات کرتے ہیں. نمبر نوٹ کیجیے, بہت شکریہ. 905-783-1922 جناب رابطے کے نمبر ہے احمد ملک صاحب کے. تھوڑا سا وقت ہے کمرشل نیوز میں, تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, کمرشل بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد نیوز کی طرف لے چلیں گے. اسٹے ٹیون.
3: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Mortimer. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائر بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782. ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پیپ ایونیو. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال

0: Unit 30, Ridgeway Plaza, Mississauga. For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat, aur wohi mehmandari. Chai khana, Pakistani Chinese cuisine.
1: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: Global Travel and Tours Mississauga mein community ko duniya bhar ke liye saste tarin ticket offer kar rahe hain. IATA approved agent tamam major airlines se deal karte hain. PIA ke consolidator hain aur PIA tickets ke special low fare available hain. Book in advance and get special discount. Umrah aur ziyarat ki special package deal ke liye call kare 905-275-3555 905-275-3555
0: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga.
3: Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Inam Ghar Eid Shopping Festival 23, 24, 25 aur 26 May ko Capital Banquet Hall Mississauga mein hone ja rahe hain aur every day sone ka gift wahan po diya jayega. Charo din bahut zabardast programs honge. Aap stall book karke wahan apne business ko promote kar sakte hain, sponsor bhi kar sakte hain. Kuch stalls baki hain, aap call kar lijiye Shams Rehman sahab ko 416-710-6777 निशात रेडियो पाकिस्तान डॉट एफ एम पर सुन सकते हैं. हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी. रियल स्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए. कॉल तलाब भट्टी 647-295-7861. घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नया प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो कॉल कर लीजिए. अपना ईमेल रेसिपी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में सेट कर लेंगे. जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपको मिलती रहेगी. कॉल कीजिए, अपना ईमेल रेसिपी टेस्ट कर दीजिए. तलाब भट्टी 647-295-7861. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम आपको लिए चलेंगे न्यूज की तरफ. जो आपके लिए पेश करते हैं जनाब जुबैर उद्दीन साहब.
4: यू आर लिसनिंग टू सीएमआर एफएम 101.3.
0: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने.
5: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें. आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157.
0: न्यूज के निमताओं देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन. तीन खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग. अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ. मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 437-425-2500. इट्स 437-425-2500. आइकॉन इवेंट स्पेस. न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861.
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है. अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए. अमरीका और ईरान के दरमियान जंग मंदी और अमन मुजाकरात एक बार फिर तातुल का शिकार हो गए हैं. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका की तजावीज पर तेहरान के जवाब को कचरे से तशबीह देते हुए कहा है कि जंगबंदी इस वक्त इंतहाई कमजोर है और लाइफ सपोर्ट पर है. सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास कुछ फौजी कुव्वत बाकी है जो शायद उन्होंने जंगबंदी के दौरान दोबारा हासिल की है, लेकिन हम उसे एक दिन में खत्म कर सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि ईरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है और उसके पास मौजूद अफजूदा यूरेनियम का जखीरा जब चाहें छीन सकते हैं. उन्होंने ईरानी क़यादत को बेईमान करार देते हुए कहा कि वो बार बार अपना जहन तब्दील कर लेते हैं. उनका कहना था कि ईरान की मरकजी क़यादत इंतहा